0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई लकी ना।
5: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
4: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
6: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
7: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
8: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
9: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
10: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
2: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9439456 या 9707-06-575।
11: श्रोता लोग, सुबह सवेरे भक्ति गीत के बाद स्वागत बा रउआ सब के राउर आपन प्रोग्राम आपन दे आपन देखभाल में। सप्ता ये भी जानता नहीं कि ये कार्यक्रम में हम बतावे नहीं ढेर सारा हेल्थ टिप्स और ब्यूटी टिप्स, जैसे रोवा अपना स्वास्थ्य के बहुत ही आसानी से देखभाल कर सकता नहीं। तो चलिए अब बिना देरी कहले आगाज कर जाओ आज के कार्यक्रम के, जिसमें हम बतावे जात बानी सबसे पहले गैस के शिकायत के समाधान। गैस के शिकायत दूर करे खातिर कब्ज और अपच दूर कई जरूरी है, काहे कि यही से गैस बनेला और गैस से ही सारा बीमारी होला। तो इसे निजात पावे खातिर सौंठ, पीपल, काली मिर्च, अजमोद या अंजवाइन, सेंधा नमक, सफेद जीरा, काला जीरा और भुनल होकल हींग, इस सब के समान मात्रा में कूट पीस के महीन चूर्ण कर ली। आ इस चूर्ण के आधा चम्मच मात्रा में लेके संभाग घी मिला के भोजन के साथ खाए से मंदाग्नि, अपच दूर होला, वात प्रकोप शांत होला। एक 8 दिन लगातार लेवे से इस समस्या से निजात मिलेला। और एकर दूसर नुस्खा इस प्रकार है, अजवाइन और काला नमक पीस के समान मात्रा में मिला ली। आ ये चूर्ण के एक चम्मच मात्रा में गर्म पानी से लेवे से अधोवायु निकल जाला और ये गैस के प्रकोप शांत हो जाला। पेट पर सेक करे से भी ऐसे लाभ होला। तो दोस्त लोग चली अब जानल जाओ जी मिचलाए के घरेलू नुस्खा। फूड प्वाइजनिंग से और ये गलत खान पान से उल्टी होके लागेला। पित्त कुपित होके पाचन क्रिया में बाधा पड़े, दूषित पदार्थ के सेवन करे आदि कारण से पेट के आहार वेग पूर्वक मुख मार्ग से बाहर निकलेला। एके वमन या उल्टी होकल कहल जाला। सौंठ, पीपल, काली मिर्च, सेंधा नमक, बीट नमक और इस सज्जी खार। सब 10-10 ग्राम लेके कूट पीस ली और ये सबके मिला के शीशी में भर ली। आ ये चूर्ण के दो रत्ती मात्रा में शहद में मिला के 3-3 घंटा पर चाटे के चाहिए। एक ग्लास पानी में थोड़ा सा नींबू के रस और शक्कर घोल ली। एक नींबू के शिकंजी कहल जाला। ये शिकंजी पिए से उल्टी बंद हो जाला। मोर पंख के नीला रंग के चांद के काट के जला ली और ये राख हो जाए तब पीस के शीशी में भर ली। ई राख दूरती और छोटी इलायची के पीसल होकल दाना दूरती लेके शहद में मिला के चाटे से उल्टी होकल बंद हो जाला। तो श्रोता दोस्त अब हम बताएं चेहरा से दाग धब्बा हटावे के कुछ घरेलू नुस्खा। सूखल हल्दी के गांठ के नींबू के रस में मिला के लगावे से भी दाग धब्बा तेजी से मिटे लगेला। सूखल त्वचा के दाग धब्बा मिटावे खातिर दूध में चंदन के लकड़ी घिस के लगाई। तैलीय त्वचा के दाग धब्बा मिटावे खातिर चंदन के बूरा गुलाब जल में मिला के लगाई। ये प्रयोग विशेष रूप से गर्मी खातिर लाभकारी है। चोट के निशान पर लाल चंदन रोज पानी में घिस के लगाई। ये कैला से 20 दिन में फायदा नजर आवे लगी। टमाटर में नींबू के 10-12 बूंद मिलाई। आ ई मिश्रण के चेहरा पर

0: ककड़ी, सूखा लंबा या गोल लौकी या तुम्बी जौन पाके के बाद अपने आप सूख चुकल होके। लेके एक डंठल के तरफ से काट दी ताकि अंदर के पोला दिखाई दे। एकरा अंदर बीज या सूखल गुद्दा होके त हिला हिला के गिरा दी। एमे ऊपर तक पानी भर के 12 घंटा तक रखी। फिर हिला के पानी निकाल के साफ कपड़ा से दो बार छान दी। पानी के ऐसन बर्तन में भरी जेमे राउर नाक डूब सके। नाक डुबा के खूब जोर से सांस खींची ताकि पानी नाक से अंदर चढ़ जाए। इकैला से दिन भर नाक से पानी टपकत रही। पानी खींचे के बाद नाक नीचे करके आराम करी। ई उपाय से ई व्याधि सदा खातिर नष्ट हो जाई। तो दोस्त लोग, अब हम बताएं सांस में ताजगी लावे के घरेलू नुस्खा। खान पान में परहेज ना कईल, सोते समय दांत साफ ना कईल, पेट साफ ना रहे व कब्ज रहे से मुंह से बदबू आवेला। कई बार भरपूर पानी ना पिए से भी मुंह से बदबू आवेला। कुछ लोग के मुंह से बदबू आवल प्राकृतिक भी रहेला। राउर मुंह से बदबू आवे पर रउआ साथ बात करे वाला हीन नजर से देखेला और ई रउआ से दूर रहे के प्रयास करेला। अगर वह ई परिस्थिति से गुजरतानी तो यहाँ हम कुछ टिप्स बतावे जातानी। जैसे रउआ अपना मुंह से आवे वाला बदबू से छुटकारा पा सकता नहीं, नीम या बबूल के नरम डाली के ब्रश बना के दांत साफ करे से दुर्गंध दूर हुई। पांच ग्राम सौंफ या धनिया या इलायची चबावे से मुंह शुद्धि होला। इलायची और पुदीना डाल के पान चबाई लाभ कर। दालचीनी और ई सूखल पुदीना पत्ती डाल के बनावल गईल घोल से गरारा कईल दुर्गंध मिटावेला। इलायची चबावल भी दुर्गंध रोकेला। एक कप पानी में जीरा के तेल के 2 से 3 बूंद डाल के गरारा करे से लाभ होला। और ई सबसे महत्वपूर्ण ई है कि सूते से पहले मंजन करी। पानी भरपूर पी, दोनों समय शौच जाई, जल्द हजम करे वाला भोजन करी और केहू से भी बात करी तो 2 फीट के दूरी से बात करी। तो दोस्त लोग, अब ई कार्यक्रम से हमरा के दी जाए के इजाजत। फिर होई हमार मुलाकात काल कुछ डिफरेंट नुस्खा के साथ। नमस्कार।
1: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
2: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
3: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
4: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
5: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
3: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
2: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
3: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
6: कॉल करें 87-894-18744।
7: ठक ठक।
8: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
9: अच्छा मिला ही नहीं।
8: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
10: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।

0: आप भी आए कमल श्री कमल श्री कमल श्री बारी मार्केट गोपालगंज।
1: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
2: नमस्कार, मैं हूँ जैकी श्रॉफ और आप सुन रहे हैं शिवा।
3: रुको रुको, अरे कोई तो रुक जाओ यार।
4: सुनिए, मैं आपको कहीं छोड़ दूँ?
3: हाँ जी प्लीज, मुझे यहीं पास में एक गांव आएगा, वहाँ छोड़ दीजिएगा।
4: ओके, लेकिन आप ठीक तो है ना? ऐसे यहाँ रास्ते के बीच में आप कैसे?
3: पहले चले, रास्ते में बताती हूँ।
4: अच्छा ठीक है, ध्यान से बैठिएगा।
3: हाँ शुक्रिया। आपका नाम? मैं शारदा।
4: मैं नील हूँ।
3: दरअसल मैं एक म्यूजिशियन हूँ, यहाँ सिक्किम में एक फेस्ट है, मेरे गुरुजी ने मुझे वहाँ रेकमेंड किया था, तो वहाँ एक परफॉर्मेंस है, वहीं जा रही थी।
4: ओह दैट्स ग्रेट, एनी एल्बम्स दैट आई माइट नो ऑफ?
3: फिलहाल तो नहीं, लेकिन किसी दिन जरूर।
4: वाओ ओके। अच्छा वैसे आप रास्ता कैसे भटक गई?
3: वो एक्चुअली मैंने बस ली थी, लेकिन जानबूझ के गलत जगह उतर गई, ताकि सर को पता ना चले कि मुझे वहाँ परफॉर्म नहीं करना। इंडिया के कोने का छोटा सा शहर है, मेरा क्या होगा वहाँ परफॉर्म करके, किसी को इंग्लिश समझ में भी आएगी वहाँ पे?
4: अरे ऐसे सोचोगी तो आगे कैसे बढ़ोगी? और तुम्हें कोई आइडिया नहीं है सिक्किम का लोकल म्यूजिक सीन कितना हैपनिंग है?
3: अच्छा, अरे अरे मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना वहाँ पे, रोको अब भी रोको।
4: अरे तुम चलो तो सही, वहाँ परफॉर्म मत करना, एटलीस्ट देख लो ना, ना पसंद आया तो वहाँ से दिल्ली के लिए ट्रेन या फ्लाइट ले लेना।
3: हाँ ये भी सही है, फाइन चलो। एक मिनट, तुम्हें कैसे पता मैं दिल्ली से हूँ?
4: मैंने बस ऐसे ही तुक्का मारा।
3: ठीक है, और कितना दूर है? दो गांव चले गए, इससे अच्छा तो वापस ही चली जाती।
4: अच्छा चलो, यहाँ आगे एक चाय वाला है, वहीं रुक जाते हैं थोड़ी देर।
3: क्या टाइम पास हो रहा है और कितनी ठंड है, इससे अच्छा मैं घर पे आराम से स्मूदी पी रही होती।
4: अच्छा चलो मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ, ये कहानी है हनुमान की।
3: ओ गॉड, बस यही बाकी था।
4: अरे सुनो तो, हनुमान बहुत शरारती था, अगर तुमने सुना होगा वो तो एक बार सूरज भी निकल गया था। अंजनी उसकी माँ बहुत परेशान थी, जिद्दी नटखट, किसी की ना सुनने वाला था हनुमान। एक बार पार्वती जी बहुत हंस रही थी हनुमान जी की शरारतों को देखकर।
5: पार्वती क्या हुआ इतनी हंसी, ऐसा क्या देख लिया तुमने?
6: देखिए ना प्रभु, नन्हा हनुमान कितना नटखट है, सभी ऋषियों की नाक में दम कर रखा है इसने।
5: हाँ, हनुमान की शरारतों के चर्चे पूरे ब्रह्मांड में हैं।
6: बहुत प्यारा है, किंतु देवी अंजना को उसकी चिंता सताती रहती है प्रभु।
5: हनुमान बहुत बलशाली है, उसका जन्म भी धर्म की स्थापना में सहायता के लिए हुआ है। सोचता हूँ इसकी शरारतों को नियंत्रण में रखने के लिए और इसकी शक्ति बल का सही उपयोग करने के लिए इसकी कथा भी आरंभ कर दूं।
6: क्या? मैं समझी नहीं प्रभु।
5: समझ जाओगी।
4: हो गई चाय, अब चले?
3: हाँ जी चलो।
4: हाँ तो मैं कह रहा था कि शिवजी उसे श्रीराम के पास ले जाना चाहते थे, तो वो गए हनुमान के पास।
7: शंभू दादा, हम अयोध्या क्यों जा रहे हैं?
5: एक कथा का आरंभ करने।
7: कथा तो मेरी माँ सुनाती है, यहाँ नगर में क्या मिलेगी कथा?
5: इस नगरी में तेरी कथा का नायक रहता है, श्री राम नाम है उसका, ऐसा सुंदर और भोला भाला कि लोग उसकी एक झलक पाने को व्रत करते हैं, तू भी देखता रह जाएगा उसे।
7: अच्छा शंभू दादा, ऐसा है वो? पर फिर तुम क्यों आ रहे हो मेरे साथ, मैं अकेला चला आता।
5: अच्छा बड़ा चंट है तू तो, केवल तू ही देखेगा उसे, मैं नहीं देखूंगा उसकी बाल लीला।
4: तुम सुन रही हो ना?
3: हाँ हाँ, और कोई चारा भी तो नहीं है मेरे पास।
4: बढ़िया। हाँ तो मैं कह रहा था कि शिवजी मदारी बन गए और हनुमान जी के साथ अयोध्या पहुँचे।
3: अरे अरे ये कैसा रास्ता है, जरा ध्यान से चलाना, मुझे बहुत डर लग रहा है।
4: अरे कुछ नहीं होगा, नंदू संभाल लेगा। तुम मेरी कहानी सुनो और ज्यादा डर लगे तो हनुमान चालीसा बोल देना। तो मदारी का खेल देखने सब इकट्ठा हो गए।
8: अरे ये कैसी आवाज है?
9: माँ चलो मेरे साथ।
10: कहाँ बेटा?
9: जहाँ से ये आवाज आ रही है ना, वही चलो। माँ चलो,
11: लगता है कोई मदारी है।
10: चलो चलते हैं।
12: ये कौन ओगड़ साधु है, इसे तो पहले कभी नहीं देखा।
13: इसका बेस तो देखो, सिर पर बड़ी बड़ी जटाएं, माथे पर त्रिपुण और कमर में मृगशाला।
9: माता ये देखो, मदारी बाबा के साथ कौन है, एक छोटा सा वानर, कितना प्यारा है ना।
2: खिलाड़ी
9: बोल मदारी,
2: जो पूछूंगा बताएगा,
9: सब बताएगा,
2: जो करूंगा करके दिखाएगा,
9: हंस के दिखाएगा,
2: ससुराल जाएगा,
9: मटक के जाएगा,
2: पत्नी को लाएगा,
9: चहक के लाएगा,
2: और पत्नी नखरे दिखाएगी तो कैसे गुर्राएगा।
14: माता माता हम बजरंगी को अपने साथ रख ले।
15: अरे ऐसा कहीं होता है पुत्र राम, कोई वानर को भी साथ रखता है क्या?
14: नहीं नहीं नहीं, मुझे चाहिए माता, मुझे चुटकू वानर चाहिए।
15: हे ईश्वर, ऐसा क्या दिख गया इसको इस वानर में?
5: ये तुम्हारा ही है मेरे श्री राम। देवी ले लीजिए, अब बाल राम को ये वानर इतना प्रिय लग रहा है तो रख लीजिए ना इस वानर को।
15: महादेव ये आपने क्या किया, एक छोटे से वानर को उसकी माँ से दूर भेज दिया।
5: प्रिये मैंने उसे उसकी माँ से दूर नहीं किया, मैंने बस उसे उसके प्रभु के निकट किया है। और वैसे भी हनुमान का उसके प्रभु राम से मिलन धर्म की स्थापना के लिए आवश्यक है।
15: धर्म की स्थापना?
5: बुराई के विरुद्ध अच्छाई की विजय के लिए, रावण के अंत के लिए।
4: देखा, कुछ चीजें अच्छी ना भी हो जरूरी होती हैं। इट्स द ग्रेटर गुड दैट इज इन्वॉल्व्ड, सब्र करना पड़ता है।
3: जैसे ये रास्ता डरावना था लेकिन फिर भी इतनी सुंदर जगह पे ले आया है, सिक्किम।
4: अरे वाह, तुम तो फिलोसोफर निकली, वाह वाह।
3: सो तो हूँ। अच्छा यहाँ किसी MG रोड जाना है?
4: हाँ वहीं पे होते हैं सारे फेस्टिवल्स।
3: तुम्हें सब पता है नहीं? But thanks यार।
4: No problem madam, mention not। जाओ जाओ, तुम्हारी परफॉर्मेंस है।
3: क्या मैंने मना किया था ना?
4: हाँ लेकिन तुम्हारा नाम तो है लिस्ट में, और कुछ चीजें जरूरी होती हैं। क्या पता यहाँ कोई तुम्हारी सिंगिंग पसंद कर ले और कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। अरे जाओ बाबा, गुड लक।
3: ये क्या बात हुई यार। अच्छा चलो ठीक है, सी यू
4: बाय।
16: सो गाइज, आज का शो यहीं खत्म होता है और अब से थोड़ी ही देर बाद जजेस अनाउंस करेंगे कि आज का विनर कौन है। लेकिन तब तक मैं आपको बता दूं कि विनर को मिलेगा सिक्किम गवर्नमेंट की तरफ से फ्री टूर और म्यूजिक वीडियो में फीचर होने का मौका, जिसे खुद प्रोड्यूस करेंगे हमारे अपने विनीत त्रिवेदी।
3: ओह माय गॉड, ये मुझे नहीं पता था।
4: मैंने कहा था ना।
16: एंड द विनर इज मिस श्रद्धा शेखर।
3: नील देखो ना। अरे नील, ये नील कहाँ चला गया? लगता है शिवजी और नील दोनों को मिलने के लिए मुझे अमरनाथ जाना पड़ेगा। हर हर महादेव।
17: बिड़ू, तू रोज सुबह उठता है, नहाता है, धोता है, स्कूल कॉलेज या दफ्तर जाता है, खाता है, पीता है, फिर सो जाता है, फिर अगले दिन उठता है और सेम चीज करता है। सोच के देख, क्या तेरा लाइफ सिर्फ यही करने के लिए? बिड़ू, हर किसी के लाइफ में कभी ना कभी कोई मौका नॉक करता है, लेकिन अपने दिमाग को ब्लॉक कर देता है उस वक्त, जब तक समझ में आता है कि वो मौका था कुछ बड़ा करने का, कोई स्पेशल करने का, तब तक काफी देर हो चुकी होती है। इसलिए बॉस ध्यान दे, अपनों की बात सुन, और जैसे ही तेरी किस्मत का दरवाजा पर मौका आया तू घूम के चौका मार दे। क्यों? क्योंकि तभी तेरे को लाइफ में असली कामयाबी मिलेगी। शिव कामयाबी का रास्ता दिखाते हैं। शिव अपने भक्तों को जीवन में कामयाब होते देखना चाहते हैं। हर हर में महादेव, हर दिल में महादेव, हर हर महादेव। तो ये थे आज के शिव वचन मेरे यानी जैकी श्रॉफ के साथ। याद रखिएगा और हो सके तो इस पर अमल कीजिएगा। मैं फिर लौटूंगा, तब तक के लिए सुनते रहिए शिवा शिवा।
18: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
19: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
20: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
18: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
20: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
18: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष शग्यो द्वारा।
20: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
18: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
20: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
18: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
21: नन्ना मुन्ना लाही हूँ देश का सिपाही हूँ।
22: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
21: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
22: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
21: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
23: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
24: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
23: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
24: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डिरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
23: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
24: जानकारी है तो कॉल करें 6252 62 112 पे।

उसके मंजिल तवाफे हरम बन गया, उसके मंजिल।

0: मोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399 66999।
2: खुद

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।

0: आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
2: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
3: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
4: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
3: आज ही संपर्क करें 7388 89470 या 9198 88 6973।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
2: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
1: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मौनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
3: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
3: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
3: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
3: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।
0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
0: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
3: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल, पहले मुख्य हालचाल। नेपाल से आने वाले बाढ़ का खतरा फिलहाल टला, रक्षाबंधन पर पूरे दिन बांधी जाएगी राखी, शिक्षा व्यवस्था में सुधार पर जिला पदाधिकारी सख्त, संत रविदास विकास शिविर का हुआ आयोजन और ट्रक से पकड़ी गई 1327 लीटर शराब। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। गंडक नदी में नेपाल के रास्ते आने वाली बाढ़ की तबाही फिलहाल टल गई और लोगों ने राहत की सांस ली। गंडक नदी के जलस्तर में हो रहे वृद्धि को लेकर जिला प्रशासन हालांकि अलर्ट मोड पर है। वाल्मीकि नगर बराज से करीब 1.5 लाख क्यूसेक पानी कल देर रात डिस्चार्ज किया गया, जो नदी से गुजर गया है। पानी के गुजरने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। पूरी रात जिला प्रशासन के लोग तटबंधों का निरीक्षण करते रहे और नदी में जलस्तर के बहाव की मॉनिटरिंग करते रहे। खतरे के निशान से ऊपर बह रही गंडक नदी में फिलहाल स्थिति सामान्य हो गई है। जिला प्रशासन ने कहा कि तिब्बत से आई इस भारी तबाही को लेकर लोगों में काफी परेशानी देखी जा रही थी, हालांकि जिला प्रशासन के सूझबूझ और पानी के नियंत्रण से संबंधित व्यवस्था को लेकर किसी भी तरीके की समस्या नहीं आई और सभी डिस्चार्ज पानी पूरी तरह से जिले से निकल गया। एहतियात के तौर पर जिले के 6 प्रखंडों के 43 गांवों में अधिकारियों की अभी भी तैनाती है और तटबंध तथा निचले इलाकों की लगातार निगरानी की जा रही है। रक्षाबंधन का त्योहार पूरे धूमधाम और उल्लास के साथ 28 अगस्त को मनाया जा रहा है। इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी की गई हैं। सभी बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए राखियों के दुकान पर देर शाम तक राखी खरीदती हुई देखी गई। हालांकि इस बार रक्षाबंधन का त्योहार पूरे दिन विधि विधान से मनाया जाएगा। 28 अगस्त को इस बार बहनों के लिए त्योहार की एक खास बात यह है कि राखी बांधने के दिन भद्रा का साया नहीं रहेगा, जिसको लेकर पूरे दिन रक्षाबंधन मनाने और भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने की राह खुली हुई है। इसी दिन खंड चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, लेकिन ज्योतिषाचार्यों के अनुसार भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसलिए भारत में इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा और धार्मिक तथा मांगलिक कार्यों पर भी कोई रोक नहीं रहेगी। ज्योतिषाचार्य के अनुसार इस बार रक्षाबंधन भद्रा से मुक्त रहेगा। आज जिलाधिकारी समीर सौरभ की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में जिले में संचालित विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता, विद्यार्थियों की सुविधा, आधारभूत संरचना, नामांकन, डिजिटल शिक्षा, आदर्श विद्यालयों के संचालन तथा कस्तूरबा गांधी विद्यालयों की व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा हुई। जिलाधिकारी ने शिक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी, गुणवत्तापूर्ण एवं विद्यार्थी केंद्रित बनाने के लिए संबंधित अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण और सख्त निर्देश दिया। इस दौरान सभी आदर्श विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को अपने अपने विद्यालयों में ICT लैब एवं स्मार्ट क्लास सुचारू रूप से एवं नियमित संचालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि वर्तमान समय में डिजिटल शिक्षा विद्यार्थियों के सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। साथ ही सभी प्रधानाध्यापकों को कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान प्राप्त करना भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। आज बसडीला पंचायत के वार्ड नंबर 9 में श्री संत रविदास विकास शिविर का आयोजन किया गया। सदर प्रखंड के पंचायत में हुए इस आयोजन शिविर का शुभारंभ जिला पदाधिकारी समीर सौरभ ने किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य समाज के प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाना है। विकास शिविर के माध्यम से लोगों को एक ही स्थान पर विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं की जानकारी तथा उनका लाभ भी उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। डीएम ने कहा कि आम लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अनावश्यक रूप से कार्यालयों का चक्कर न लगाना पड़े, इसके लिए शिविर के माध्यम से विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों और कर्मियों को उपस्थित रहकर लोगों की समस्याओं का समाधान करने का निर्देश दिया गया है। जिलाधिकारी ने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी सरल भाषा में उपलब्ध कराएं, आवेदन की प्रक्रिया में आवश्यक सहयोग करें, पात्र लाभुकों के आवेदनों की जांच कर नियमानुसार त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें। शिविर में स्थानीय ग्रामीणों ने पहुंचकर विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों पर अपनी समस्याओं एवं आवश्यकताओं से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए। इस दौरान बसडीला पंचायत के बहुत सारे लोगों ने इस शिविर का लाभ उठाया। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर शराब तस्करों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में मीरगंज पुलिस ने विशेष छापेमारी करते हुए उत्तर प्रदेश की ओर से आ रही एक DCM ट्रक में भारी मात्रा में रखी हुई विदेशी शराब को पकड़ा। बताया जा रहा है कि इस मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी भी हुई है। इस दौरान पुलिस ने बताया कि वाहन चलाते हुए जिस व्यक्ति को शराब के साथ पकड़ा गया है, यह आरोपी जलालुद्दीन अंसारी, पिता एयाज अंसारी, यह उत्तर प्रदेश कुशी नगर के कुबेर स्थान का रहने वाला है। इसके पास से गाड़ी और शराब को जब्त किया गया है, साथ ही मोबाइल फोन को भी जब्त कर इस शराब के साथ पकड़े गए आरोपी के मोबाइल फोन के संदर्भ में जब आवश्यक अनुसंधान किया गया तो आरोपी ने बताया कि उसके पास से पकड़ी गई गाड़ी और शराब राजन भाई का है। राजन भाई उत्तर प्रदेश के पथरदेवा का रहने वाला है। उससे भी संपर्क किया गया तो उसका मोबाइल फोन संपर्क में नहीं था। पुलिस अब इस मामले में आवश्यक प्राथमिकी दर्ज करने के बाद कार्रवाई कर रही है और इस शराब के कंसाइनमेंट के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज को भी खंगाला जा रहा है। गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने नदी के बढ़ते हुए जलस्तर को देखते हुए कई घाटों और संवेदनशील इलाकों का आज निरीक्षण किया। जिला प्रशासन और गंडक विभाग के अधिकारियों को पूरी तरह अलर्ट और स्थिति पर लगातार नजर रखने का निर्देश दिया गया। उनके द्वारा तटबंध से सटे गांव के लोगों से भी अपील की गई कि वे घबराए नहीं, क्योंकि फिलहाल गंडक नदी के जलस्तर की स्थिति नियंत्रण में है। आज समृद्ध महिला समृद्ध बिहार अभियान की शुरुआत हुई। जिले की 5,920 महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपए की पहली किस्त भेजी गई है, तो वहीं 523 महिलाओं को व्यवसाय बढ़ाने के लिए 20,000 रुपए की दूसरी किस्त और जीविका निधि के तहत 25 लाभुकों को कुल 1,10,00,000 रुपए का ऋण भी वितरित किया गया है। गोपालगंज में महावीरी जुलूस और झंडा का आयोजन हो रहा है। इसको लेकर बताया जा रहा है कि आज बुधवार की रात विद्युत की आपूर्ति रात 11:30 से सुबह 6:30 बजे तक बंद रहेगी। इस दौरान टाउन फीडर के आसपास के इलाकों में विद्युत की समस्या रहेगी। लोगों से आवश्यक कार्य समय से पूरा कर लेने का निवेदन भी किया गया। गैर संचारी रोगों की समय रहते पहचान और बेहतर उपचार सुनिश्चित करने के लिए राज्य के सभी जिलों में जांच एवं उपचार चिकित्सा आपके द्वार अभियान शुरू किया जाएगा। यह अभियान 1 सितंबर से 30 नवंबर 2028 तक संचालित होगा। अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीमें सामुदायिक स्तर पर घर घर पहुंचकर लोगों की स्क्रीनिंग करेंगी। संदिग्ध एवं रोग से ग्रसित मरीजों को आवश्यक परामर्श, दवा तथा आगे की जाँच और उपचार के लिए नजदीकी स्वास्थ्य संस्थान से जोड़ा जाएगा। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के बंगरा पंचायत से 14 वर्षीय युवक सुमित कुमार लापता हो गया है। बताया जा रहा है कि इसकी तलाश की जा रही है। पुलिस और लोगों से भी सहायता की गुहार लगाई गई है। परिजनों ने इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी की है। बताया जा रहा है कि यह 14 वर्षीय सुमित कुमार देहाती खबर न्यूज सोशल मीडिया के पत्रकार शंभू यादव का भतीजा है और एकनाथ यादव का पुत्र बताया जा रहा है। घर से टहलने के लिए निकला था और यह लापता हो गया है। परिजन अब इसकी तलाश में जुटे हुए हैं। माझा थाना क्षेत्र के बिरती टोला गांव में पोखरा में नहाने के दौरान डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई है। बताया जा रहा है घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंपा है और मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। नगर थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास में फरार चल रहे एक प्राथमिकी आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी बेलाल अहमद उर्फ बेलाल हजरत है। यह आरोपी तिरबिरवा थाना नगर का रहने वाला है। इस पर पहले से मामला दर्ज था और यह फरार चल रहा था। आज पुलिस ने इसे गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। महावीरी अखाड़ा को लेकर जिलाधिकारी समीर सौरभ ने सभी लोगों से स्पष्ट निर्देश दिया है कि महावीरी अखाड़ा में हर हाल में लाइसेंस लेना होगा। अगर जुलूस का आयोजन करना है तो बिना प्रशासन के अनुमति के जुलूस का आयोजन नहीं होगा। डीजे पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। अनुमति के अनुसार लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जा सकेगा। हथियारों के प्रदर्शन, अश्लील गाने और नृत्य पर भी रोक रहेगी। अफवाह और भ्रामक सूचना फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, इसकी भी चेतावनी दी गई है। सोशल मीडिया पर पुलिस की टीम लगातार निगरानी रख रही है। नगर थाना क्षेत्र के हरपुर रजोखर गांव में एक महिला से चेन छीनने का विरोध करने पर उस पर चाकू से हमला किया गया और उसके पति को भी जख्मी किया गया है। इस मामले में नगर थाना की पुलिस आवश्यक जांच पड़ताल कर रही है। बताया जा रहा है कि हरपुर रजोखर गांव में घर के बाहर खड़ी गायत्री देवी से बदमाशों ने चेन छीनने का प्रयास किया। विरोध करने पर बदमाशों ने महिला पर चाकू से हमला किया। बीच बचाव करने पहुंचे उसके पति हरकेश महतो पर भी जानलेवा हमला किया गया। फिलहाल दोनों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है और पुलिस पीड़ित के आवेदन पर मामले की जांच कर रही है।

0: में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। नेपाल से आने वाले बाढ़ का खतरा फिलहाल टला। रक्षाबंधन पर पूरे दिन बांधी जाएगी राखी। शिक्षा व्यवस्था में सुधार पर जिला पदाधिकारी सख्त। संत रविदास विकास शिविर का हुआ आयोजन। और ट्रक से पकड़ी गई 1327 लीटर शराब। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
2: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
3: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
4: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
3: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
5: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
6: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
5: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-89693।
7: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
8: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
9: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
10: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
11: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
12: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
11: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रूपए और एक्सट्री 125R 110,836 रूपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
12: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
11: या अभी कॉल कीजिए 92-899-22567 या 97-714-86-164।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: सुनिए,
4: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
3: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
4: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
3: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
5: ठक ठक।
6: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
7: अच्छा, मिला ही नहीं
6: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
6: आप भी आए कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
4: ओ माई गॉड, आज फिर से भूल गई।
3: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
4: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
5: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
4: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
5: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
4: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
5: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं। तो रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
6: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
5: अरे, ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
6: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
5: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
6: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा?
7: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
5: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
8: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
9: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
8: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
10: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
11: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
1: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
2: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व, भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
1: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष विशेषज्ञों द्वारा।
1: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
1: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
2: कॉल करें 7070-7563-100 या 7070-7542-400 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।

0: मोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
3: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
2: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554 97644।

0: आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034-48652 पे।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी। लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
0: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
1: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
0: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
1: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HFD लक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
0: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
1: या अभी कॉल कीजिए 92-899-22567 या 97-714-86-164।
2: जागिए श्रीमती जी, आंखें खोलिए।
3: क्या चाहिए?
2: अरे भाई देर हो गई,
3: तो मैं क्या करूं?
2: कॉफी, कॉफी चाहिए।
3: कॉफी, कॉफी और मैं।

0: UPI ने बनाया है गांव और कस्बों में पेमेंट को आसान। करीब 60% UPI पेमेंट हो रहे हैं 500 रुपए से नीचे और हर दो में से एक ग्लोबल डिजिटल पेमेंट हो रहा भारत में।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: UPI के 10 साल डिजिटल, आत्मनिर्भर, बेफिक्र।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हुई, 1468 लोग अब भी लापता। भारत ने नेपाल में फंसे भारतीयों को निकालने के प्रयास तेज किए। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशी पहल प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे। रक्षाबंधन का पर्व देश भर में मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक अमरनाथ यात्रा आज संपन्न होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका की 6 दिन की यात्रा पर। और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदन ने इतिहास रचा, ग्रैंड शतरंज टूर जीतने वाले पहले भारतीय बने। और अब समाचार विस्तार से। नेपाल तिब्बत में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हो गई है। नेपाल में 389 और तिब्बत में 3 व्यक्तियों की मौत हुई। सीमा के दोनों तरफ 1468 व्यक्ति लापता हैं।
3: नेपाल के अधिकारियों ने 910 व्यक्तियों के लापता होने की जानकारी दी है। तिब्बत के अधिकारियों ने बताया कि 558 व्यक्तियों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। बचाव कर्मी लोगों की तलाश कर रहे हैं। अभी क्षेत्र में संकट टला नहीं है। भोटो कोशी नदी स्रोत के पास कई झील बन गई हैं। डर यह है कि इनके टूटने से पानी का एक तेज बहाव आ सकता है, इससे आपदा और गंभीर हो सकती है। नेपाल के सुरक्षा कर्मियों ने बाढ़ प्रभावित जिलों से 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। इधर भारत ने बड़े पैमाने पर बचाव अभियान शुरू कर दिया है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि नेपाल में 290 भारतीयों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे भारतीयों की स्थिति का पता लगाने के लिए तत्काल प्रयास किए जा रहे हैं। अब तक भारत ने 84 नागरिकों को सुरक्षित निकाल लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री वालेन्द्र शाह के साथ बातचीत की और उन्हें भारत की ओर से पूरी मानवीय सहायता का आश्वासन दिया। समाचार कक्ष से शेदाम शर्मा।
2: वहीं नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
4: दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहां से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयां, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें कि 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयां और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
2: चीन के जल संसाधन मंत्रालय के अनुसार नेपाल में छोचेन खोला और पुरेपू सांगपो नदियों के संगम के पास बनी झील के टूटने का खतरा बढ़ गया है। झील में अगले कुछ दिनों में 30 लाख घन मीटर अतिरिक्त पानी पहुंच सकता है। विदेश मंत्रालय ने बाढ़ के मद्देनजर लोगों की सहायता के लिए नई दिल्ली में 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। नियंत्रण कक्ष है 9111-2308-8718 और 9111-2308-8719 पर आप संपर्क कर सकते हैं। वहीं काठमांडू में भारतीय दूतावास ने सहायता के लिए नंबर जारी किए हैं। नंबर है 9779851316807 और 9779813261। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
5: अपडेट रहे, आगे रहे, @AIRNewsHindi और इंस्टाग्राम पर AIR News अलर्ट्स को फॉलो करें।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में एक प्रमुख पड़ाव है। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में आज ही के दिन की थी। एक रिपोर्ट।
6: प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें कुल 3,17,000 करोड़ रुपए की जमा राशि है। दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहल के रूप में यह योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच को लगातार नए आयाम दे रही है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए 78% खाते ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों में है, जबकि लगभग 56% खाताधारक महिलाएं हैं। जनधन खाताधारकों को 41 करोड़ से अधिक रुपए कार्ड जारी किए जा चुके हैं। प्रति खाते औसत जमा राशि 5,356 रुपए है। इस योजना ने लाखों लोगों, विशेष रूप से वंचित वर्गों को बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान करके उनके सामाजिक आर्थिक हालात को बेहतर बनाया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना जैसी पहलों के कारण भारत का वित्तीय समावेशन सूचकांक इस साल 67 हो गया है, जो 2018 में 53.9 था। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान वे शिकागो, एशविले और न्यूयॉर्क जाएंगी। वे शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र के अग्रणी सीईओ, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत और अमरीका के बीच व्यापार और निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। श्रीलंका के नौसेना कमांडर वाइस एडमिरल डेमियन फर्नांडो भारत के आधिकारिक दौरे पर हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस दौरे का उद्देश्य द्विपक्षीय समुद्री सहयोग को और मजबूत करने के साथ साथ भारत और श्रीलंका के बीच नौसेना संबंधों को आगे बढ़ाना है। वाइस एडमिरल फर्नांडो ने नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन के साथ संयुक्त अभियानों, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और समुद्री सुरक्षा सहित द्विपक्षीय समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के उपायों पर चर्चा की। रक्षाबंधन का त्यौहार आज पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने इस अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि रक्षाबंधन का त्यौहार प्राचीन काल से ही देश की संस्कृति और परंपरा का अहम हिस्सा रहा है। श्री अमरनाथ यात्रा आज रक्षाबंधन के त्यौहार के साथ सम्पन्न होगी।
7: शिव शंकरा। 57 दिनों तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा आज औपचारिक रूप से समाप्त हो जाएगी। इस साल जुलाई 3 को शुरू हुई इस यात्रा के दौरान तकरीबन 4,80,000 यात्रियों ने पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन किए। अगरचे 9 अगस्त को इस यात्रा को मौसम की खराबी की वजह से रोका गया, लेकिन छड़ी मुबारक का सफर परम्परा के अनुसार जारी रहा। इधर आज महंत दीपेंद्र गिरी के नेतृत्व में छड़ी मुबारक पंचतरणी से निकलकर पवित्र गुफा पहुँचाई जाएगी, जहाँ विशेष पूजा और पारंपरिक रस्मों के बाद इस साल की यात्रा संपन्न हो जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
8: महादेव महान भोले सदा शिव शिव शंकरा।
2: इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर में सालाना बुद्ध अमरनाथ यात्रा भी आज संपन्न होगी। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में रक्षाबंधन का पर्व आज विशेष धार्मिक परंपराओं के साथ मनाया जा रहा है।
9: श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर आज तड़के भस्म आरती के दौरान भगवान महाकाल को करीब 2 फीट की विशेष राखी चढ़ाई गई। ये राखी पुजारी परिवार की महिलाओं ने कई दिनों की मेहनत से तैयार की थी। रेशमी कपड़े और धागों से बनी इस राखी में रुद्राक्ष, मोर पंख, ओम, त्रिनेत्र और त्रिपुंड को शामिल किया गया है। राखी तैयार करते समय महिलाओं ने जय महाकाल और ओम नमः शिवाय का जाप किया। धार्मिक परंपरा के अनुसार भगवान महाकाल को राखी अर्पित करने के बाद ही पुजारी परिवार की महिलाएं अपने भाइयों को राखी बांधती हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
2: केरलम में सबरीमला मंदिर ओणम पूजा के बाद आज रात 10 बजे बंद हो जाएगा। इस वर्ष त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड ने तिरुओणम के दिन मंदिर में ओणम भोज का आयोजन किया। मंदिर 16 तारीख सितंबर को पुनः खुलेगा। आज समाज सुधारक श्री नारायण गुरु की 172वीं जयंती मनाई जा रही है। केरलम में सुबह से ही विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। श्री नारायण गुरु की जन्मभूमि चेम्पा छंती में भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। एक रिपोर्ट।
10: ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान की 4थी यात्रा होगी। इससे पहले प्रधानमंत्री 2015, 2016 और 2022 में इस मध्य एशियाई देश का दौरा कर चुके हैं। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव भी 2018 और 2019 में

0: पांचवां स्थान हासिल किया। पिछले 52 वर्षों में यह भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले 1994 में हुए पहले माफ कीजिएगा इससे पहले 1994 में हुए पहले विश्व कप में टीम चौथे स्थान पर रही थी। इस प्रदर्शन से अगले महीने जापान में होने वाले एशियाई खेलों से पहले टीम का आत्मविश्वास चरम पर है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। नेपाल में आए भीषण सैलाब की तस्वीरें सभी समाचार पत्रों ने सचित्र दी हैं। अमर उजाला लिखता है नई झील से फिर सैलाब का खतरा, बिहार और उत्तर प्रदेश में अलर्ट। दैनिक भास्कर के शब्द हैं 290 भारतीयों का अब तक सुराग नहीं, समय के साथ उम्मीदें भी घटती जा रही। हिंदुस्तान की सुर्खी है तिब्बत से फिर आ सकती है तबाही, नियंत्रण कक्ष स्थापित। नहीं थम रहा स्वाइन फ्लू, 24 घंटे में 166 नए मामले, नवभारत टाइम्स की खबर है। पत्र लिखता है बिना डॉक्टर की सलाह ना लें कोई दवा। खेलो इंडिया संवाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिया गया संदेश जनसत्ता ने सचित्र दिया है। पत्र लिखता है प्रधानमंत्री ने जताई चिंता, कहा 2036 ओलंपिक खेलों के लिए आज से ही तैयारी करें खिलाड़ी। आईपीओ में लौटी तेजी, नए शेयरों का एक साल में 18% रिटर्न पर निफ्टी 7% टूटा। दैनिक भास्कर के बिजनेस पन्ने की खबर है गिरते नजर आने लगे चीनी के दाम, खुदरा बाजार में भाव करीब 63 रुपए प्रति किलो, लोकसत्य की सुर्खी है। ब्रेन सर्जरी में पहला एआई सफल उपयोग, ट्यूमर निकालकर बचा ली आंखों की रोशनी, राजस्थान पत्रिका की खबर है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हुई, 1468 लोग अब भी लापता। भारत ने नेपाल में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए प्रयास तेज किए। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशी पहल प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे। रक्षाबंधन का पर्व देश भर में मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक अमरनाथ यात्रा आज सम्पन्न होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमरीका की 6 दिन की यात्रा पर। और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदन ने इतिहास रचा, ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर जीतने वाले पहले भारतीय बने। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: President Draupadi Murmu has extended greetings to people on the occasion of Raksha Bandhan. The President also urged every citizen to take a pledge to strengthen the bonds amongst families and communities, marching forward with this spirit towards a Viksit Bharat. Prime Minister Narendra Modi has greeted people on the occasion of Raksha Bandhan today. In a social media post, Mr. Modi expressed hope that the festival of Raksha Bandhan brings happiness, prosperity and success to everyone's lives. Raksha Bandhan is being celebrated today at the world-famous Mahakaleshwar temple in Ujjain with special religious traditions. During the Bhasma Arati, a specially prepared Rakhi was offered to Lord Mahakal. We have a report.
1: Early this morning, during the Bhasma Arati on the occasion of Shravan Purnima, a special Rakhi of about 2 feet was offered to Lord Mahakal. Women from the priest's family prepared this Rakhi after working on it for several days. It was made with silk cloth and silk threads. Rudraksh, peacock feathers, the Om symbol, the third eye and Tripun were also used in the Rakhi. While preparing it, the women chanted Jai Mahakal and Om Namah Shivaya. According to the religious tradition, the women of the priest's family tie Rakhi to their brothers only after offering Rakhi to Lord Mahakal. Abhinav Goyal, Akashwani News, Bhopal.
0: In Jammu and Kashmir, the annual Shri Amarnath Ji Yatra will officially culminate today with the traditional Chhade Mubarak ceremony at the Holy Cave Shrine. We have more from our correspondent.
2: The 57-day pilgrimage began on July 3 through Pahalgam and Baltar routes. More than 480,000 devotees performed darshan at the Holy Cave Shrine before the regular Yatra was suspended from August 9 due to adverse weather conditions and damage to the tracks. Despite the suspension of regular Yatra, the sacred journey of Chhade Mubarak continued as per tradition. Led by its custodian Mahant Dipendra Giri, the holy mace reached Panchtarni yesterday after following traditional route from Srinagar. It will proceed to the holy cave today where special prayers and traditional rituals will be performed. With the tradition
3: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 41 51 51 पे।
4: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS MS एक्स रेसिडेंट KGMU लखनऊ।
4: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS MS ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
5: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
5: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
4: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
6: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
7: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
6: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक किया है।
7: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलता पूर्वक किया जा रहा है।
6: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
4: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
5: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
4: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में दो नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
8: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
9: अरे तो उसे डांटते क्यों हो? उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
10: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
11: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
10: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
8: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91 626 64 498 पे।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9056 59536 या 9056 57902।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आएं कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
1: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
0: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
1: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
0: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512 11001।

0: कर लेना।
1: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
2: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
3: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
4: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
5: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
3: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
2: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
3: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
5: कॉल करें 87-894-18744।
6: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
7: मैं बनूंगा।
6: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-029-94-921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 अमर जेड पर।

0: आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 8604348652 पे।
2: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9478434068 पे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने TRE-4 के लिए एक ही चरण में परीक्षा आयोजित करने की घोषणा की। छात्रों ने समाप्त किया आंदोलन। गंडक नदी के जलस्तर में आई कमी। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा, राज्य में बाढ़ का खतरा फिलहाल टला। राज्य सरकार ने नगर निकायों द्वारा भारी वाहनों से मार्ग कर, प्रवेश सेवा शुल्क और चुंगे की वसूली पर रोक लगाई। और भाई बहन के स्नेह का त्योहार रक्षाबंधन आज प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। बिहार लोक सेवा आयोग की शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE-4 के लिए एक ही चरण में परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा अलग अलग नहीं होगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना में छात्र प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक के बाद ये घोषणा की। सरकार और अभ्यर्थियों के बीच 10 प्रमुख बिंदुओं पर सहमति बनी है। ब्यौरे के साथ हैं हमारे संवाददाता।
1: समझौते के अनुसार BPSC की सभी परीक्षाएं निर्धारित समय पर कराने, पुस्तकालय अध्यक्ष की बहाली जल्द शुरू करने और सभी भर्ती प्रक्रियाओं में अधिकतम डोमिसाइल नीति लागू करने पर सहमति बनी है। भर्ती परीक्षाओं की अधिकतम उम्र सीमा के मुद्दे को परीक्षा सुधार समिति के समक्ष रखा जाएगा। सरकार भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर उसका सख्ती से पालन करेगी। प्रश्न पत्र, OMR सीट और उत्तर पुस्तिका की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भी परीक्षा सुधार समिति के समक्ष प्रस्ताव रखा जाएगा। संविदा कर्मियों की भर्ती में अंक और वेटेज देने की स्थिति में अलग कोटा निर्धारित करने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। BPSC की सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी सहित अन्य परीक्षाओं में पेपर लीक के आरोपों के निष्पक्ष जांच आर्थिक अपराध इकाई करेगी। वहीं 70वीं BPSC दरोगा भर्ती परीक्षा की जाँच और सहायक प्राध्यापक भर्ती से पहले बिहार पात्रता परीक्षा कराने जैसे मुद्दों पर परीक्षा सुधार समिति की अनुशंसा के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री की घोषणाओं के बाद पटना के गर्दनी बाग में आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों ने 15 दिनों बाद आंदोलन समाप्त कर दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन।
0: नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद राज्य में बाढ़ का खतरा फिलहाल टल गया है। बुधवार रात गंडक नदी के जल प्रवाह में बढ़ोतरी के बाद कल से इसमें कमी दर्ज की गई है। वाल्मीकिनगर बराज से आज सुबह 6 बजे गंडक नदी का जलस्रोत 99,800 क्यूसेक दर्ज किया गया। उप मुख्यमंत्री सह जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि फिलहाल गंडक नदी में जल प्रवाह की स्थिति सामान्य है। उन्होंने बताया कि भोते, कोशी, त्रिशूली और नारायणी नदी से होते हुए गंडक तक पहुंचने के दौरान जल प्रवाह की गति कम होने से इसका प्रभाव भी कम हो गया है।
2: जिस ढंग से ग्लेशियर फटने से नेपाल में बाढ़ की तबाही हुई है, क्योंकि वो जगह जहाँ पे मुख्य बिंदु था, हम लोगों के बिहार में जो बराज है गंडक बराज, वहाँ से लगभग 250-300 किलोमीटर ऊपर है, तो एक तो उसका प्रभाव नीचे आते आते जो कम होता है उसका भी फायदा मिला, और दूसरी बात थी कि गंडक नदी के पूरे प्रवाह अभी जल स्तर भी ऊंचा नहीं था, बल्कि सामान्य से भी थोड़ा कम था, इसलिए जो भी पानी संभावित था या जो आया उससे बहुत ज्यादा भयावह स्थिति नहीं बनी।
0: श्री चौधरी ने बताया कि एहतियात के तौर पर गंडक के तटवर्ती सभी 8 जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। विभाग की टीम तटबंधों की 24 घंटे पेट्रोलिंग और निगरानी कर रही है। नेपाल तिब्बत में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हो गई है। नेपाल में 389 और तिब्बत में 3 व्यक्तियों की मौत हुई। सीमा के दोनों तरफ 1,468 व्यक्ति लापता हैं। इधर भारत ने बड़े पैमाने पर बचाव अभियान शुरू कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल में मौजूद 290 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। सरकार उनका पता लगाने और उनके बचाव के लिए प्रयास कर रही है। लापता भारतीयों में अलग अलग राज्यों की पनबिजली परियोजनाओं के कर्मचारी और पर्यटक समूह शामिल हैं। नगर विकास एवं आवास विभाग ने नगर निकायों द्वारा भारी वाहनों से मार्ग कर प्रवेश सेवा शुल्क और चुंगी की वसूली पर रोक लगा दी है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि मार्ग कर की वसूली के लिए अभी तक कोई नियमावली नहीं बनाई गई है। विभागीय मंत्री नीतीश मिश्रा ने सभी नगर निकायों को निर्देश दिया है कि संबंधित नियमावली के गठन तक भारी वाहनों से किसी भी प्रकार का कर नहीं वसूल किया जाए। मंत्री ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का उल्लंघन करने वाले नगर निकायों के नगर आयुक्त या नगर कार्यपालक पदाधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी और उनके खिलाफ नियमानुसार अनुशासनिक कार्रवाई होगी। प्रदेश में विधायकों, पूर्व विधायकों और उनके आश्रितों को अगले वर्ष 1 जनवरी से कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार के साथ हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि कैशलेस चिकित्सा व्यवस्था को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा जाएगा। फिलहाल कैशलेस व्यवस्था के तहत इंडोर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी, जबकि आउटडोर चिकित्सा की प्रतिपूर्ति की वर्तमान व्यवस्था जारी रहेगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज मीठापुर करवीघैया और मीठापुर मोहली फ्लाईओवर का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद दोनों फ्लाईओवर पर वाहनों का परिचालन शुरू हो जाएगा। इन फ्लाईओवर के चालू होने से मीठापुर करवीघैया सिपारा और न्यू बाईपास मार्ग पर लगने वाले जाम से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही करवीघैया और मीठापुर क्षेत्र में यातायात का दबाव भी कम होगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। यह देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में एक अहम पड़ाव है। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में आज ही के दिन की थी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। भाई बहन के स्नेह का त्योहार रक्षाबंधन आज प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस पर्व पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और उनके अच्छे स्वास्थ्य तथा खुशहाली की कामना करती हैं। वहीं भाई अपनी बहनों की सुरक्षा और उन्हें सहयोग का संकल्प लेते हैं। इधर रक्षाबंधन के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। वन विभाग रक्षाबंधन के पर्व को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मना रहा है। वृक्षों को रक्षा सूत्र बांधकर जीवन भर सुरक्षा का संकल्प लिया जा रहा है। रक्षाबंधन के अवसर पर बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की सुविधा दी जा रही है। आज रात 10 बजे तक निगम की सभी श्रेणियों की लगभग 1075 बसों में महिलाएं बिना टिकट यात्रा कर सकेंगी। इनमें एसी, नॉन एसी, डिलक्स, पीएमई बस और पीपीपी मोड पर संचालित बसें शामिल हैं। महिलाएं ऑफिस, कोचिंग, बाजार के अलावा अंतर जिला और अंतर्राज्यीय मार्गों पर भी इस सुविधा का लाभ ले सकेंगी। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि अब इंटरमीडिएट की कक्षा तक विद्यार्थियों के अंक पत्र पर फेल शब्द नहीं लिखा जाएगा। पटना में विभागीय समीक्षा बैठक के बाद श्री तिवारी ने बताया कि फेल की जगह कौशल के लिए पात्र शब्द का प्रयोग होगा। उन्होंने बताया कि विभाग जल्द ही इस संबंध में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को दिशा निर्देश जारी करेगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने अगले वर्ष होने वाली मैट्रिक और इंटर की वार्षिक परीक्षाओं के लिए फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 16 सितंबर तक बढ़ा दी है। इधर बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड ने मध्यमा परीक्षा के लिए फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर निर्धारित की है। निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने समस्तीपुर जिले के रोसड़ा अनुमंडल की भूमि सुधार उप समाहर्ता DCLR कंचन कुमारी झा को 2 लाख रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। उनके साथ घरेलू नौकर सुमित कुमार को भी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद निगरानी की टीम ने DCLR के सरकारी आवास की तलाशी ली, जहां से 13,82,000 रुपए नगद और रिश्वत में ली गई वॉशिंग मशीन बरामद की गई। गिरफ्तार DCLR शिकायतकर्ता से न्यायालय में चल रहे भूमि विवाद मामले में फैसला देने के लिए घूस ले रही थी। मौसम विभाग ने आज पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, नवादा, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान आंधी और वज्रपात का भी अलर्ट है।
1: दिनांक 28 अगस्त को राज्य के मध्य एवं उत्तर पश्चिम भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की बहुत संभावना है। राज्य के पूर्वी एवं दक्षिण पश्चिम भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के दरभंगा, पूर्वी चंपारण, जमुई, मुजफ्फरपुर, नवादा एवं समस्तीपुर जिलों के एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है।
0: इधर मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में अब तक सामान्य से 42% कम बारिश हुई है। पटना की पॉक्सो अदालत ने एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी मोहम्मद इकबाल आलम को 25 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पटना के फतुहा में गंगा नदी के टापूनुमा इलाके में चल रही मिनीगन फैक्ट्री का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। मौके से अर्धनिर्मित हथियार और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस फैक्ट्री संचालकों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। कटिहार जिले के आजमनगर थाना क्षेत्र के कुशीदा शीतलमणि के पास पुलिस ने वाहन जांच के दौरान 205 ग्राम स्मैक के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने लिखा है शिक्षक भर्ती चौथे चरण में भी एक ही परीक्षा होगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ऐलान किया। दैनिक जागरण ने लिखा है जल प्रलय से नेपाल में महाविनाश 227 भारतीय समेत 1500 से ज्यादा लोग लापता अब तक 392 मरे। प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हवाले से लिखा है बाढ़ में लोगों की मदद करना पहली प्राथमिकता। दैनिक भास्कर की सुर्खी है आरक्षण हटाओ आंदोलन के प्रतिनिधियों से मिले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं समृद्ध महिला समृद्ध बिहार अभियान शुरू, बिहार में बनेगा महिला विश्वविद्यालय, छात्रा से कुलपति तक सभी होंगी महिलाएं। आज अखबार लिखता है मैट्रिक के अंक पत्र पर अब नहीं लिखा जाएगा फेल। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने टीआरई 4 के लिए एक ही चरण में परीक्षा आयोजित करने की घोषणा की। छात्रों ने समाप्त किया आंदोलन। गंडक नदी के जलस्तर में आई कमी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा राज्य में बाढ़ का खतरा फिलहाल टला। राज्य सरकार ने नगर निकायों द्वारा भारी वाहनों से मार्ग कर प्रवेश सेवा शुल्क और चुंगी की वसूली पर रोक लगाई। और भाई बहन के स्नेह का त्योहार रक्षाबंधन आज प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: सुनिए,
2: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
1: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
2: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
1: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
1: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9974434468 पे।
6: तो रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
7: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
6: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
7: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
6: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
7: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
8: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
6: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
9: Now pick your phone up. Hello. Pick it up. Hello. Now pick your phone up.

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
2: वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
2: पठानपट्टी सुपर गेम खुशी।
1: जी जी, क्या हालचाल है आपका?
2: ठीक हूँ, आप बताइए।
1: हम सब भी अच्छे हैं।
2: नाश्ता उस्ता हो गया?
1: हाँ, नाश्ता करके आते हैं। आप बताइए, आप क्या कर रहे हैं?
2: कुछ फोन ही लगा रहे थे।
1: अच्छा, कौन सा गाना सुनना है आपको?
2: शाहरुख खान का बता दीजिएगा हिंदी सॉन्ग।
1: शाहरुख खान का तो हिंदी सॉन्ग बहुत सारा अच्छा अच्छा है, आप कौन सा सुनना चाहेंगे?
2: तूने जो परफॉर्म मेरी जान, तुझे मर मिट जाऊंगा, वही वाला।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ है,
2: वही करते
1: हैं। ओके, तो गाना प्ले करेंगे, सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4 FM।
2: थैंक यू मैम।
1: वेलकम।

0: हेलो
1: दोस्तों, आपका रेडियो 90.4 FM में।
0: सलाम अलैकुम मैम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: क्या खैरियत है?
1: मेरा ठीक है, आप बताइए आप कैसी हैं?
0: मैं भी ठीक हूँ। खाना पीना हो गया?
1: जी, खाना पीना तो हो गया है, आप बताइए आपका हो गया?
0: हाँ, मैंने एक गाना सुनना था।
1: बता दीजिए कौन सा।
0: ये नहीं है दिल के अरमासूम बह गए, नया निकला है।
1: नया सॉन्ग दिल के अरमासूम बह गए?
0: हाँ,
1: ये तो मतलब पुराना सॉन्ग है, फिर से इसको नया किया गया है।
0: हाँ, नया सॉन्ग है।
1: अच्छा ठीक है, मैं चेक कर लूंगी और इसी को बजा लूंगी। ओके
0: हाँ,
1: और गाना सुनाना भी है?
0: हाँ, सबसे पहले आपको और जितना रेडियो भी सुन रहे हैं सबको।
1: ओके, तो गाना प्ले करते हैं।
0: ठीक है,
1: सुनते हैं रेडियो रमजिम 90.4 FM।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, आप तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
5: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी। अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
4: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
5: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
5: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
5: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
4: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
6: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं श्रृंगार वाटिका।
7: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करें 86034-48652 पे।
8: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
9: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
8: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
10: हर घर सूर्य घर।
11: कुल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
12: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
11: आज ही संपर्क करें 7388-8947-0 या 9198-8869-73।
13: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
14: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
13: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
14: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
15: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
14: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
15: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
14: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
15: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।

0: Now pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
2: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
3: हेलो, सलाम अलैकुम।
4: वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
3: जी मैम, मुझे गाना सुनना है।
4: बिल्कुल, नाम बता दीजिए गाने की।
3: मैं गुलाम हुसैन बोल रहा हूँ, वेस्ट मुंबई से। मैं गोपालगंज के रहने वाला हूँ।
4: आज बहुत दिनों बाद।
3: जी मैम, थोड़ा टाइम नहीं मिलता था इसी के लिए।
4: अच्छा जी,
3: मुझे गाना सुनना है। कोई भी गाना अच्छा सुना दीजिए।
4: अच्छा, कोई भी गाना आज
3: चाहिए। गाना सुना दीजिए मैम, रब जैसा रूप तुम्हारा देता है सहारा, ये गाना।
4: और गाना सुनाएंगे भी किसी को?
3: हाँ जी, सबसे पहले आपको, मासूम, कौशर, जुनेद, कमरान भाई, अरमान भाई, नौशाद भाई, चाकी भाई, फरहान भाई, जगदीप भाई, आयुष भाई, पुलिस भाई, लकी भाई, रोबीना जी, दीदी जी, हिना जी, गुड़िया जी, सज्जा जी, शबनम जी, गुलशन जी, रोशनी जी, सलेहा जी, अफरीन जी, अरीसा को।
4: अच्छा, तो गाना प्ले करें
3: जी।
4: सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4।
3: मैम बोल रही क्या मैम?
4: हाँ
3: जी मैम, बहुत अच्छा
4: जी।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
0: नमस्ते मैडम।
1: नमस्ते,
0: वर्मा कुमार बोल रहे हैं कलामोटिया से।
1: हाँ जी, क्या हालचाल है आपका?
0: ठीक है जी, हालचाल आपने सुनाई?
1: मेरा भी ठीक है।
0: गोपालगंज का मौसम कैसा था?
1: गोपालगंज के तो मौसम अभी ठीक बाबे।
0: गर्मी कैसे हो गया? तो बहुत धूप निकल पहले पंजाब में अंदर।
1: अच्छा, ना इन्हें तनी धूप नहीं है और थोड़ा थोड़ा गर्मी बा।
0: अच्छा जी, गाना सुनने के बाद गाना कॉल लगाओ तनी कॉल सर कॉल लगाता गाना सुना दी हम को
1: बता दें।
0: अपने पसंद के सुना दे
1: हम हम तो रोज सुनाबे करने पसंद दिन भर तो हम
0: फरमाइशी तो हमको बना करी ला रही सुना दे।
1: अच्छा तो कर दी आज
0: गाना अपने पसंद से सुना दे।
1: आज हमारा रघु पसंद के सुने के बाबे।
0: हमारा पसंद के सुने के बा नहीं रघु अपने पसंद के सुना दे। भोजपुरी बजा दे
1: भोजपुरी।
0: हाँ जी
1: रघु बताई ना आज हम कहा मानी रहुआ बताए तब हम सुना।
0: आज हम बताए तो सुनाए।
1: हाँ
0: भोजपुरी में बजा दे कौन हमारा कौन सब अच्छा बात है उसमें खराब भी ना।
1: अच्छा
0: खेसारी लाल के गाना बजा दे।
1: खेसारी लाल के ठीक बा।
0: और भारती के नंबर नहीं लगा लगा तो उठाओ नहीं हुआ के लेकिन का प्रोग्राम में
1: हम तो भारतीय बोला था।
0: अगर रही रहे नंबर तो एक नंबर बता 6516 वाला जो उनकी कॉल के माध्यम से तो एक नंबर का नाम बा
1: वो हम ही चलावे।
0: अगर रवि चला तो कॉल के माध्यम से लगा देता तो कॉल रिसीव नहीं करो
1: ये तो कॉल
0: तो प्रोग्राम तो रोज रोज चलेगा प्रोग्राम नु।
1: हाँ।
0: अच्छा जी इतना तो हम रेडियो सुन रहे नाम भी नहीं मालूम राहुल नाम बाकर नाम बाबा नाम मालूम नहीं। हाँ जी
1: ना इसमें हम कबू कबू मतलब हम रिकॉर्ड करे नहीं लेकिन ज्यादातर उसमें हम ही रहे।
0: अच्छा जी अच्छा वहाँ के छुट्टी बा
1: ना वहाँ के छुट्टी नहीं सुनो के
0: गाना सुना दे खेसारी लाल के रेडियो सुनने वाला के सबके खातिर तीन आदमी के
1: ठीक बाबा तो गाना प्ले करते नहीं।
0: हाँ जी कब तक सुनाएंगे शाम के बाजी की काल बाजी
1: आज ना तो काल तो बजबे करी यही दो दिन में बाजी।
0: अच्छा खेसारी लाल के बजाएंगे गाना।
1: ठीक बा
0: ठीक बा
1: सुनाते रहिए रेडियो 90.4 FM।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
4: मैं बनूंगा।
3: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80029-94921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रंजीन 90.4 आमज़ ज़ैट पर।
5: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
6: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
5: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
6: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99399-66999।
7: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
5: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
7: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
5: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
7: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
8: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029-94911। जी हाँ, 80029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
9: हेलो,
10: नमस्कार मैम।
9: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजीम 90.4 FM में।
10: जी, मैं सुधीर कर रहा हूँ, कोरी नुवा जिला देवघर, झारखंड से मैम।
9: हाँ जी, क्या हाल चाल है आपका?
10: बिल्कुल ठीक हूँ मैम, आप कैसे हैं?
9: हम भी ठीक हैं।
10: और आप रेडियो रंजीम के जितने आरजे सर हैं कैसे हैं?
9: सब कुछ अच्छा है।
10: जी जी, आज सुना दीजिए मैम रक्षाबंधन का गाना।
9: गाने की बोल बता दीजिए।
10: भोजपुरी फिल्म का गाना है, लता मंगेशकर की आवाज में, इसके बोल हैं रखिया बंधा ले भैया सावन आई, इसके बोल हैं।
9: और गाना सुनाना भी है?
10: जी, सबसे पहले मैं आपको रेडियो रंजन के जितने भी लिसनर हैं सबों को सुनाना चाहता हूँ दिल से।
9: बिल्कुल, तो गाना प्ले करते हैं।
10: जी मैम, प्ले कीजिए।
9: सुनते रहिए रेडियो रंजन 91.4 FM।
10: थैंक यू मैम।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो नमस्ते। राधे रक्षाबंधन के हार्दिक शुभकामनाएं हमारा तरफ से पकिया।
0: जी जी, आपको भी रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।
1: जी तो कदम बढ़ाते हैं फरमाइश की तरफ।
0: बिल्कुल,
1: वो तिरंगा फिल्म का गाना है, इसे समझो न रेशम के तार भैया, यही गाना सुनना है
0: जी, और गाना सुनाना भी है
1: जी। सबसे पहले आपको और रेडियो रिमझिम के सुपर स्टार फैन है उसमें आरा मलिक है, संतरा कुशवाहा जी है, और सभी गोपालगंज जिला वासियों को और सिवान जिला वासियों को, और हम अपने पूरे परिवार के साथ सुनेंगे।
0: ओके, तो गाना सही करते हैं।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
5: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
6: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
7: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
6: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
7: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
6: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
7: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94-512-11-001।
8: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज, ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
9: Now pick it up, pick it up.
10: Hello.
9: Now pick your phone up.
10: Hello.
9: Pick it up, pick it up.
10: Hello.
9: Now pick your phone up.
10: Hello.
11: Jab phone ghandi bajti hai to kehte hain hello.
12: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
13: हेलो
14: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
13: जी नमस्कार भारती जी।
14: नमस्कार।
13: समाचार बा?
14: समाचार सर ठीक है बा।
13: काहे आवाज बोछा लेता नहीं दी?
14: थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है।
13: एगो गाना बटे कॉपी छलिया के, अलग मिठाइया बा, अलग अलग बा मिठाइया, अलगे बटे रखिया बहिन हमारा, ऐसे ही कुछ गाना बटे, कर द्वारा गाना बटे रखी
14: छोटो
13: छोटो छाली।
14: अच्छा, गाना सुना?
13: गाना तो सबसे पहले रुआ का सुनावे के बाद सोनू भाई, सभी भाई बानी महबूब वाला, मुस्तफा गुलाम जी, राम कुमार पांडे भैया जी हैं और अक्षरी जी हैं, अहमद भाई हैं, कुसुम जी, तबीर और मुसारी, जितनी तमाम श्रोता बन गाना सुनी है, सभी को तो गाना दे देते।
14: नमस्कार।
13: नमस्कार।
14: गाना सुनते रहिए रेडियो।

0: हेलो
1: जी,
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: मैं साहेब राव पवार बोल रहा हूँ, ग्राम सामरबो तहसील बिछुआ जिला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश।
0: हाँ जी, क्या हाल चाल है आपका?
1: बहुत बढ़िया है, एकदम मस्त है। आज का दिन है,
0: सुन
1: रहा था कार्यक्रम। जी पहली बार लगाया हूँ फोन, आज ही सुना हूँ मैंने ये कार्यक्रम।
0: अच्छा,
1: कौन बोल रहे मैडम?
0: मैं तो भारती बोल रही हूँ।
1: जी जी,
0: तो गाना बता दीजिए, कौन सा गाना सुनना है?
1: ब्लैकमेल का है, पल पल दिल के पास।
0: और गाना सुनाना भी है?
1: गाना नहीं आता वैसे, मगर फिर भी थोड़ा सा सुना देता हूँ। पल पल दिल के पार तुम रहते हो।
0: इतना अच्छा तो गा रहे हैं।
1: ठीक है, पर ऐसे ही आ जाता है थोड़ा सा।
0: आप अच्छा गा रहे हैं सच्ची में।
1: जी
0: अच्छा गा रहे हैं आप।
1: अच्छा अच्छा जी, थैंक यू।
0: और गाना ये सुनवाना चाहते हैं किसी को?
1: जो रंजन में जो सुनते हैं उन सभी के लिए रहेगा बहन जी, और आपके लिए।
0: जी जी बिल्कुल
1: जी।
0: फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4 FM।
1: जी जी, थैंक यू।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
2: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर एमडी सादाब के पास, जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट।
3: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर एमडी सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस वक्त ईएनटी केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर आरके मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
4: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
5: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
4: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
5: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
4: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया, बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
5: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
4: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोड़, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
6: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
7: हेलो
8: जी, सलाम मैम।
7: वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
8: जी मैम, कैसे हैं? हम सफरोज अली गोपालगंज से।
7: मैं भी ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
8: जी हम भी अच्छे हैं, लेकिन आपका आवाज कुछ चेंज लग रहा है, लगता है आपका तबीयत सही नहीं है मैम।
7: हाँ थोड़ा सा तो है,
8: लेकिन ये बता सकते हैं कि भारती मैम बोल रही हैं? फिर भी आप ही रिकॉर्डिंग कर रही हैं, मनोरमा मैम नहीं है आज?
7: है मनोरमा मैम।
8: आज तो बहुत ज्यादा लेट हो गए मैम, हम लगाते लगाते कॉल,
7: आधा घंटा लेट है
8: तो आज तो नहीं चलेगा।
7: देखिए आज नहीं तो कल चल ही जाएगा, क्योंकि सारा कॉल मैं ही रिकॉर्ड करूंगी।
8: अच्छा, आज सब आप ही करेंगी? मैम उस सोमवार वाला वो मनोरमा मैम रिकॉर्ड की थी क्या आधा के बाद, क्योंकि सुन रहे थे और रात में 12 बजे चलता है रिपीट हेलो माय चॉइस का, सुन रहे थे हम, 12 बजे चल रहा था।
7: अच्छा,
8: तो आज हमें 11 सा गाना सुनवाइए।
7: बता दीजिए
8: जी, गाने का नाम है मोहब्बत से ज्यादा।
7: अच्छा, और गाना सुनाना भी है?
8: गाना है
7: बोल रहे हैं, गाना सुनाना भी है।
8: सुनाना है आपको, सभी आरजे को, जितने भी हमारे दोस्त सुनने वाले हैं सभी को।
7: तो अब अभी क्या?
8: अभी तो मैम हम स्टेशन जा ही रहे थे, तब तक सोचे कि बात कर ले आपसे।
7: अच्छा, तो छपटा से निकल रहे हैं कि?
8: जी मैम, हम निकल रहे हैं यहाँ से, तो सोचे कि इसी टाइम में मिल रहा है तो टाइम में बात कर ले और गाना का फरमाइश कर दे।
7: इसलिए वहाँ का काम खत्म हो गया।
8: जी मैम, काम तो खत्म हो गया, इसलिए सोचे निकल जाए। अपना गोपालगंज का बहुत ज्यादा याद आ रहा है, गोपालगंज जैसा तो कोई मतलब जिला ही नहीं है,
7: कहीं लगता ही नहीं। अच्छा
8: जी मैम, कहीं अच्छा नहीं लगता है गोपालगंज के अलावा, गोपालगंज तो बात ही अलग। कहीं भी रहते हैं मैम, रेडियो को सुनते रहते हैं और आप लोगों से बात करते रहते हैं। जी मैम, तो गाना फुल सुनाइएगा, बहुत अच्छा गाना है।
7: जी बहुत अच्छा गाना है, सुना दूंगी।
8: आपको भी अच्छा लगेगा उम्मीद करते हैं।
7: अच्छा लगेगा, क्यों नहीं, गाना ही अच्छा है इतना।
8: जी मैम, एडवांस धन्यवाद। आज मनोमा मैम से बात हो जाती तो अच्छा लगता, लेकिन उनसे बात ही नहीं हो रहा है आजकल।
7: होगा फिर कभी।
8: जी मैम धन्यवाद, बाय बाय मैम।
7: ओके बाय बाय। गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।
8: ओके मैम।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM।
0: जी नमस्कार, मैं प्रणाम
1: प्रणाम
0: राजू यादव, ग्राम प्रेगा श्रीरामपुर डेरा सरीला राठ मुस्करा हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश।
1: कैसे हैं आप?
0: हम तो बहन बढ़िया हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, स्वर्ण बिंदा।
1: जी ऐसे ही होना चाहिए।
0: गीत सुना दीजिए बहन।
1: बिल्कुल, बता दीजिए कौन सा गीत।
0: अपनी पसंद का कोई भी रक्षाबंधन गीत चला दीजिए या किसी गीत में शामिल कर दीजिए। और भोजपुरी कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है, वो चलता है 3-4 बजे।
1: तो भोजपुरी केवल संडे को चलता है।
0: हाँ हाँ, भोजपुरी एक्सप्रेस।
1: हाँ हाँ
0: जी
1: जी
0: बहन प्रणाम।
1: रेडियो रंजन में कॉल किए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी बहन प्रणाम, नमस्कार
1: नमस्कार।

0: डिवाइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: हेलो
2: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 94 FM में।
1: जी नमस्ते मैडम।
2: नमस्ते।
1: हेलो।
2: हाँ जी, नाम बता दीजिए अपना।
1: आपका छोटा भाई बोल रहा है, रामकुमार, चिंतापुर से।
2: अच्छा, बहुत दिनों बाद आपकी आवाज सुन रहे हैं, इसलिए मिस्टेक हो गया पहचान। कैसे हैं आप?
1: और बढ़िया मैम, आप कैसे?
2: हम भी अच्छे हैं।
1: अच्छा, अब रक्षाबंधन आ रहा है ना?
2: आ ही रहा है।
1: तो आपसे राखी भी बनवाना है ना मैम?
2: बिल्कुल आइए, बिल्कुल बांधेंगे।
1: अब मालूम ना कहाँ घर है आपका?
2: रेडियो स्टेशन में ही आ जाइए, यही तो काम दिया जाएगा, और क्या।
1: रेडियो स्टेशन में?
2: हाँ हाँ।
1: अच्छा, आएंगे तो आएंगे वहाँ।
2: बिल्कुल आइए।
1: तो कोई आने देगा अंदर?
2: अरे ये तो मैंने बता सकते, ये कृपा शंकर सर भी बताएंगे।
1: अच्छा, और सोनी सिस्टर कैसी है?
2: वो भी अच्छी हैं।
1: ये मुनारमा जी?
2: सब तो अच्छे हैं, ये भी अच्छी हैं।
1: अच्छा, आपसे बहुत काफी दिन हो गया था बात करने हुए। खाली
2: हाँ।
1: मुनारमा जी से बात हो रहा था। हम उनसे पूछ रहे थे कि भारती मैम कहाँ चली गई, भारती मैम कहाँ चली गई। वो बोले कि उन लोग का अभी रिकॉर्डिंग नहीं चल रहा है।
2: नहीं तो बोला होता है ना, उसमें अभी ना दीजिए।
1: और बताइए क्या हाल चाल है?
2: ठीक है।
1: मौसम कैसा है गोपालगंज में?
2: गोपालगंज का मौसम अभी बहुत ही सुहाना है।
1: अच्छा, रक्षाबंधन से हम 2-4 दिन पहले आ रहे हैं घर से।
2: आइए, बिल्कुल
1: आएंगे, राखियों से बनवा करके गिफ्ट उफ्ट दे करके फिर चले जाएंगे, फिर आ जाएंगे अपने नोएडा में।
2: मैंने बहुत खुश होंगी क्या इस बार आके, मतलब आप जा रहे हैं उन लोगों के पास।
1: नहीं, मेरे को आए हुए आज 2 महीना दिन हो गया, पहुँचेंगे रक्षाबंधन में तो जाना ही जाना है।
2: हमेशा कभी राखी में घर ही में न रहे हैं, कभी दूर भी रहे हैं।
1: हाँ नहीं, कहीं भी रहेंगे तो रक्षाबंधन में जाना ही जाना है, रक्षाबंधन में, छठ पूजा में।
2: चलिए सब बढ़िया है।
1: हाँ, मम्मी छठ करती है ना, तो छठ पूजा में जाना जरूरी रहता है।
2: हाँ। कौन सा गाना सुनना है बता दीजिए?
1: आज गाना सुनना है तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे, यही वाली सॉन्ग।
2: अच्छा गाते हैं, फिर भी गाके नहीं सुनाते हैं
1: कभी। कितना अच्छा गाते हैं मैडम, मजबूरी में हम आए हैं ना दिल्ली में, यहाँ शौक से कमाते हैं।
2: अच्छा।
1: मेरे दो भाई विदेश रहते हैं, दुबई, एक का नाम है राजन, एक का नाम है निरंजन।
2: अच्छा। हाँ।
1: छोटा वाला निरंजन है, निरंजन गुप्ता, और माझिल वाला है वो राजन गुप्ता है।
2: अच्छा।
1: मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरा ही एक शादी हुआ है, उन लोग का अभी नहीं हुआ है, अभी उन लोग अभी कमा रहा है, खा रहा है, अभी उड़ रहा है, अभी अकेला मौज में रहा है।
2: हाँ।
1: अभी घर का प्लानिंग है, अभी घर और बनवा रहे हैं, उसके बाद उनको उन लोग को शादी करेंगे।
2: प्लानिंग के साथ काम अच्छा होता है।
1: और सब मजे में है ना मैम?
2: सब मजे में।
1: ये सॉन्ग आपको सबसे पहले आपको सुनवाना है। आज जितना रेडियो रंजन सुनने वाले हैं सब श्रोताओं का, जितना हिमतापुर को रेडियो रंजन सुनने वाले हैं सबको।
2: जी जी, बिल्कुल।
1: हाँ,
2: कैसे गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4 FM।
1: ठीक है, ओके मैम।
2: ओके,
1: नमस्ते। नमस्ते
2: नमस्ते।

0: हेलो
1: हेलो, नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 में।
1: मधुसर से राजू कुमार बोल रहे हैं।
0: हाँ जी, क्या हाल चाल है आपको?
1: ठीक है, गाना सुनना है।
0: बता दीजिए कौन सा
1: गाना सुनना है। शाम है धुआं धुआं,
0: हिंदी सॉन्ग है ना?
1: हाँ, हिंदी सॉन्ग
0: जी बिल्कुल। और गाना सुनाना भी है?
1: अभी रेडियो सुनने वाले श्रोताओं को
0: गाना प्ले करेंगे। सुनते रहिए रेडियो 90.4।
1: ठीक है।

आरजू झूठ है, कहानी है, आरजू का फरेब खाना नहीं। खुश जो रहना हो जिंदगी में तुम्हें, दिल किसी से कभी लगाना नहीं।

क्यों बनाती हो तुम रेत के ये महल जिनको एक रोज खुद ही मिटाओगी तुम। आज कहती हो इस दिल जले से प्यार है तुम्हें, कल मेरा नाम तक भूल जाओगी तुम।

0: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
1: भरोसे वाले से लेंगे,
0: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
1: और कीमत भी।
0: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
2: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
3: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
4: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
2: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
5: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करे 85070-32042 पे।
6: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
7: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
6: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
7: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
7: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार्य एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
7: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
8: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
9: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
8: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80029-94921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
8: ओनली ऑन रेडियो रंजीन 90.4 आमजेड पर।
10: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
11: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
12: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
11: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
13: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
14: Now pick it up.
15: Hello.
14: Now pick your phone up.
15: Hello.
14: Pick it up.
15: Hello.
14: Now pick your phone up.
15: Hello.
16: Jab phone ding ding bajti hai to kehte hain hello. Hello. Hello. Hello.
17: Break ke baad aap sabhi ka ek bar fir se swagat hai Hello My Choice ke show mein. आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029-94911। जी हाँ, 80029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
18: हेलो
19: जी,
18: नमस्ते
19: मैम।
18: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो
19: 90.4
18: बराबर।
19: लेट सर, फोन
18: नहीं
19: हटता, नहीं होने दिल्ली हो गई।
18: बोली
19: गाना सुने बा
18: बता दें।
19: जा रे जा रे सुगना जा रे कहिदा सजनवा से।
18: गाना सुना हूँ के बा।
19: हाँ ठाकुर बाबे हमार सार रिकॉर्ड करे की बहुत फोन लगा होता रहे। इंग्रा सुना बा, इलेक्शन नहीं जा रहे, जितना रेडियो सुना सब कोई।
18: अच्छा जी, चल ठीक बा।
19: हाँ सब ठीक बा, हवा भी बहुत ठंडा भी दिन बा।
18: हाँ हाँ चले फिर ठीक बा। गाना प्ले करते हैं।
19: नमस्ते
18: नमस्ते, सुनते हैं रेडियो रंजन 90.4 FM।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगटोन 91.4 एफएम में।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार,
1: मनोरमा मैम बोल रही है ना?
0: नहीं,
1: भारती मैम बोल रही है।
0: हाँ
1: तो मैम कैसी हैं आप?
0: मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
1: जी मैम हम भी अच्छे हैं।
0: वैसे आपका नाम बता दीजिएगा।
1: जी मैं पप्पू कुमार साहब पढ़ रहा हूँ ना, बड़ा रियर से।
0: अच्छा जी, तो क्या हाल चाल है आपका?
1: जी मैम बढ़िया है, अपना सुनाइए आप कैसे हैं?
0: हम भी अच्छे हैं।
1: और सब भारतीय लोग अच्छे हैं?
0: हाँ सब कोई ठीक है।
1: तो मैम गाना सुना दीजिए।
0: बता दीजिए।
1: इरंगा फिल्म में जो राखी बंधन का गाना है वही गाना सुना दीजिए।
0: और गाना सुनाना भी चाहेंगे?
1: और मैम गाना जितना भी मेरे भाई बहन है सभी सुनेंगे, सभी श्रोता आप भी सुनिएगा, सभी आर्य लोग भी सुनेंगे।
0: बिल्कुल, गाना प्ले करते हैं।
1: थैंक यू मैम।
0: वेलकम।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: सोहन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
3: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R, अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
3: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
3: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
3: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
6: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
6: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
6: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
7: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
8: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रमजन 90.4 FM में।
9: मैं मोहम्मद यूसुफ अपना मेडिकल हॉल सिपाया ढाला से बोल रहा हूँ।
8: जी जी, क्या हाल चाल है आपका?
9: हाल चाल तो बहुत बढ़िया है। अपना सुनाइए।
8: मेरा ठीक है, तो आपसे बहुत दिनों बाद बात हो रही है।
9: चले गए थे उमरा करने, हज करने जाया जाता है ना।
8: हाँ,
9: इसमें मक्का मदीना चले गए थे, एक महीना उसी में लग गया
8: ना,
9: इसलिए बात वहाँ का सिम अलग है ना। हमारे प्रोग्राम आपका सुनते थे, वहाँ भी परेशान होता था तो लगता था आपका।
8: हाँ,
9: मर कॉल नहीं लग रहा था।
8: हाँ,
9: वहाँ भी सुन रहे थे। मौसम तो ठीक हो रहा है, पानी वगैरह हल्का फुल्का हो ही जा रहा है।
8: हाँ, पानी हो ही जा रहा है और अभी भी थोड़ा मौसम, उतना धूप नहीं है
9: ना, हल्का धूप और छांव दोनों है। आपका कस्टमर इतना हो गया है रिव्यू जिम्यू के, बहुत देर तक करना पड़ता है तब जगह लगता है। बहुत देर से लगा रहे थे।
8: पड़े हुए हैं थोड़ा।
9: और सब बढ़िया है, हमको गाना सुनाइएगा।
8: बिल्कुल बता दो।
9: ये नन्हे से फरिश्ते तुमसे ये कैसे नाता।
8: अच्छा, और गाना सुनाना भी है?
9: अपना मेडिकल हॉल के सभी स्टाफ और खासकर फौजी से रिटायर है कन्हैया प्रसाद गुमनिया के हैं, तो सिपाया डाला तो इधर आप आई नहीं होगी। यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज, सैनिक स्कूल, बीटेक कॉलेज सब यहीं पर है, हमारे ही पास है। राजापुर मेला यहीं से जाया जाता है।
8: शायद उधर से रास्ते से कभी गए हुए हैं।
9: हाँ, राजापुर मेला आइए एक बार।
8: बिल्कुल आएंगे कभी।
9: हाँ, तो मेला लगता है तो आपको याद करेंगे कि मेला कल है या परसों है।
8: अच्छा जी, बिल्कुल।
9: हाँ, आइएगा हमारे यहाँ दुकान पर, रुकिएगा अपना मेडिकल हॉल यहीं पर रुकिएगा, नाश्ता पानी यहीं पर होगा, खाना भी आपको खिलाएंगे।
8: अच्छा।
9: आप लोगों से जुड़ गए, रेडियो हमको लगा हो गया है। हाँ, बराबर सुनते हैं आपका प्रोग्राम।
8: चलिए बढ़िया है,
9: ठीक है, सुना दीजिएगा। हो सकता है कि कल कहीं जाना आएगी।
8: अच्छा, आज नहीं तो कल आ जाएगा।
9: हाँ हाँ, ठीक है, शाम में सुनेगा।
8: ठीक है,
9: ठीक है, धन्यवाद।
8: रेडियो रमजी में कॉल किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो में।
1: जी मैम नमस्ते, मैं ग्राम धनौती पोस्ट कटिया थाना कटिया जिला गोपालगंज बिहार से हूँ।
0: जी जी
1: मैम कैसी हैं आप?
0: मैं ठीक हूँ, आप बताइए कैसे हैं?
1: सब आप लोगों का कृपा है, हम लोग भी बढ़िया है, बस काम काज चल रहा है। अभी फिलहाल मैं पुणे में है हम।
0: अच्छा
1: जी, और अपना गोपालगंज का बताइए कैसा है मौसम वहाँ का?
0: गोपालगंज
1: बारिश,
0: मौसम तो अभी सुहाना बना हुआ है, बारिश जैसा ही मौसम।
1: अच्छा अच्छा, यहाँ भी तो बादल छाया हुआ है, कभी कभी रुक रुक के बारिश भी हो रहा है। यहाँ पहाड़ी इलाका है तो थोड़ा मौसम का हो रहता है, बारिश आता जाता रहता है यहाँ का।
0: चलिए उतना से गर्मी नहीं होता होगा ज्यादा।
1: हाँ मैम, अभी यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चल रही है, गर्म नहीं है, मौसम तो एकदम ठंडा है, सुहाना ही मौसम है लगभग मानिए तो।
0: आप क्या काम करते हैं?
1: यहाँ पे मैं फैब्रिकेशन का काम। और एक गाना सुनना था मैम,
0: बता दीजिए।
1: मुझे ला कर समझाया दिल ने मेरे, मगर मैंने दिल की न मानी, दीवानी में दीवानी सजन की दीवानी। गाना की बोल रही है और मेरा दोस्त है प्रमोद और अमित ओम प्रकाश, इन्हीं लोगों को डेडिकेट करना चाहता हूँ और खास करके रेडियो रिमझिम परिवार को और जितना भी श्रोता सुन रहे हैं उन लोगों के लिए भी।
0: बिल्कुल,
1: रिंग लगाते हैं कॉल लगता नहीं है, थोड़ा अफसोस होता है कि, लेकिन भाई अभी भी समझदारी होता है कि भाई कब अगर मेरा चांस मिल जाएगा तो देखा जाएगा, तो लगता है तो इतनी महसूस होता है कि चलिए मेहनत सफल हो गई तो कुछ अलग ही, मतलब
0: कुछ अलग ही
1: अपना। हाँ हाँ, आप लोग से बात होता है तो थोड़ा मन का सुकून मिलता है कि चलो रेडियो रंजन के माध्यम से दूर दूर तक कहाँ कहाँ जितना भी श्रोता सब सुनते हैं, एकजुट होते हैं। जब हेलो माय चॉइस प्रोग्राम जब चालू होता है तो उसका उस टाइम का पल ही कुछ अलग ही होता है कि हाँ भाई एक परिवार हो जाता है ना, सब जुड़ता है एक साथ तो अच्छा लगता है,
0: वहाँ पे जुटते हैं सब, अपनी बातें करते हैं।
1: जी जी जी, तो मैं तो बहुत पुराना हूँ रेडियो रंजन का, बहुत कॉल लगाता हूँ लेकिन कभी लगता है कभी नहीं लगता है, तो फिर भी मैं जानता हूँ कि अफसोस करने की क्या बात है भाई, सभी दर्दों को सभी लोगों का मन का जितना मुझे खुशी होती होगी नहीं और लोगों को भी खुशी होता होगा ना कि भाई हम भी बात करेंगे, हम भी अपना फरमाइश चॉइस में अपना गाना सुनेंगे और सबसे हाल चाल जब मिलता है तो हम लोग पूना में भी रहते हैं तो अच्छा लगता है कि अपना गांव का अपने जवार का जो भी हम लोग का कटिया में चाहे कहीं भी कुछ भी होता है तो उसके माध्यम से मालूम पड़ जाता है, चाहे अपने जिला में कोई भी मतलब कार्य होने वाला होता है नया, चाहे कुछ नया नियम आने वाला होता है तो रेडियो रिमझिम के माध्यम से सब मिलता है तो अच्छा लगता है, तो हम लोग पहले ही एक्टिव हो जाते हैं कि हाँ भाई अपने जिला में काम होने वाला है, ऐसा हो रहा है, यहाँ ये चीज होने वाला है, तो अच्छा लगता है कि पहले अपना यहाँ नहीं था लेकिन वो आप लोगों की कृपा थी कि हम लोग के लिए, हम लोग खातिर आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना सब कर रहे हैं, अच्छा लगता है। जितना भी अगर तारीफ करेंगे हमारे लिए तो कम है।
0: आपको रेडियो सुनना अच्छा लगता है, इसके लिए दिल से धन्यवाद है आपका।
1: जी जी जी मैम, आप ठीक है ना?
0: हाँ हाँ, हम सब ठीक है।
1: खाना वाना खाई?
0: हाँ, खाना खा के आते हैं।
1: अच्छा, हम लोग भी ड्यूटी है लेकिन ड्यूटी के दौरान मेरे को याद आया कि भाई आज कॉल लगाते हैं तो फिर कॉल किया, बहुत देर से ट्राई कर रहे थे, लगभग एक घंटा काम छोड़ दिए थे, जब काम होता है जब ये दिन आता है तो सोचते हैं पहले कॉल लगाएंगे उसके बाद काम देखा जाएगा। बात आप लोगों से होता है तो लगता है कि हाँ मतलब कुछ सुकून दिल का मिल गया कि हाँ मेहनत मेरा जो जारी था वो सफल लग गया तो अच्छा होता है।
0: चलिए अच्छा लगा
1: आपसे भी बात करके मैम, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैं इसके पहले भी जितना भी पहले आपसे पहले जो भी आपका मनोरमा नाम है ना? अच्छा अच्छा, आपका नाम क्या है मैम?
0: मेरा नाम भारती।
1: अच्छा भारती, ठीक है मैम।
0: गाना प्ले करें?
1: हाँ मैम गाना प्ले करिए। नमस्ते।

0: श्रोताओं, अभी आप हेलो माय चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029994911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाज़त। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है। तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।

0: एक का करो तड़ कपड़ा सरियाओ तड़ कहाँ जाए के तैयारी बा।
1: अरे तारा पता नहीं खे जा तनी विदेश पढ़े।
0: विदेश विदेश जा तड़ तारा रक्षाबंधन के दिन आ जाए बना।
1: अरे दीदी तू तो कर...

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
2: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
3: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
4: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
3: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
5: हेलो।
6: हेलो बहनी।
5: प्रणाम भैया।
6: खुश रह, खुश रह। कैसन हाल चाल हो?
5: ठीक है भैया।
6: अरे घबरा काहे रानी?
5: नहीं भैया, कहिया आई भो?
6: आगे पगली, यहे रक्षाबंधन में एबो। और सुनही ने, जे मोटरसाइकिलवा पहुना मंगलखी ने, उहो ले लेबे, चैनमो ले लेबे, जे जे डिमांड है सब पूरा कर देबे।
5: ठीक है भैया।
6: रोबो ही काहे ले, मेहमान हो जे अखुन त दे फोन मा।
5: अच्छा ला।
6: हेलो मेहमान।
7: हेलो। हाँ,
6: अब की हम जे जे के छलिए मेहमान, सब ही रक्षाबंधन में लेके अबे, बाकी हमर बहनी के अच्छा से रखवाल।
7: बहनिया तो पानी में हो, और हमर जल से मोटरसाइकिलवा और सब कुछ लेके ही है, नहीं तो अपन बहन के ले जा।
6: नहीं नहीं नहीं मेहमान, ऐसा मत कहो, हम सब कुछ लेके आए भाई। तू तो जानिए रहलो कि बचपने में हमर माय बाप गुजर गए, बड़ी दुलार प्यार से पललिए है मेहमान। हमर बहनी के कोई दिक्कत नहीं होबे के चाहिए, हम सब रक्षाबंधन पर लेके आए भाई।

0: सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HF डीलक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए।

0: प्रणाम माई, कैसन बड़ू?
1: ठीक बानी, आ गइलू, बैठ, खुश रही बाबू, रहो बैठी।
2: ना ना, हमरा के मत बैठाई, हमरो जाए के बराती बनवावे।
0: माई क्यों लौकत नहीं है भैया, भाभी कहाँ मालो?

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

0: सुनिए सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84 7 10 30 9 92 या 90 7 65 65 7 50।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
4: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
5: मुस्कान के माई, ए मुस्कान के माई, अरे केने बाड़ू हो? अरे सब तैयारी हो गई बा।
6: सब तैयारी हो गई बा, अभी बबुआ नहीं खे आई।
5: बबुआ नहीं खे आई ना? ए बबी।
6: हाँ पापा।
5: भैया के ने बा फोन करो, ओकरा के बुलाओ।
6: ठीक बा।
7: हेलो भैया, कहाँ बड़ा तू? अभी लेना आई ला, घर सबको तार इंतजार करता।
8: बस बस पहुँचते वाली, तहरा खातिर एगो गिफ्ट लेता नी।
7: गिफ्ट में का लेता रह?
8: ऐसन चीज लेता नी नू कि तो के पहिनबू त एकदम दुल्हन लग। हमार बहिन
7: ठीक बा, जल्दी आवा, हम जाते हैं तैयार होके।

0: भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HF डीलक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97714 86164।

0: एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388 9470 या 9198 8668 6973।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट।

0: मालिक सब काम हो गए।
1: बहुत बढ़िया
0: मालिक। कहनी है कि आज रक्षाबंधन है, कुछ पैसा बढ़ा कर दे देती तो अपना बहन खाती एगो साड़ी ले लेती।
2: लो आज हमारा तरफ से 1000 रुपया, अपना बहन खातिर खूब बढ़िया साड़ी खरीद।
0: धन्यवाद मालिक, तो वह हमारी खुशी आज दोगुना बढ़ा देंगे।
2: जा आराम से जाइए।
0: जी जी मालिक।

0: का बात बा बेटा, आज तो बड़ा खुश लागत रहा।
1: अरे माई, तारा पता नहीं कि आज रक्षाबंधन है।
0: हाँ हाँ, हमरा पता बा।
1: मालिक आज हमरा के 1,000 रुपया ज्यादा देले हैं। अपना बुचिया खाती साड़ी किनले बनी।
0: हाँ, अरे तनी दिखावा।
1: देख,
0: बड़ी सुंदर साड़ी बा। अरे सुना, तनी जल्दी जा, लेट होता।
1: हाँ जा तनी,
0: जल्दी जा, तैयार होके।
1: ठीक बा माई।

0: कसमानू खाने नचते सारे
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द माइग्रेन चक्कर आना मिर्गी की दौरे झटके सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर फालिज साइटिका न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल पादरी बाजार गोरखपुर कॉल 9170856587।
2: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
3: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
4: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
3: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
5: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने। दिल बोले।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
5: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
5: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
5: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 84710-3992 या 97-65-65-750। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
6: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
4: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
6: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
4: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
6: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
4: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
6: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: धर्म और अधर्म की सबसे बड़ी लड़ाई एक गाथा जो हजारों सालों से दिलों में जीवित है, महाभारत। पांडवों और कौरवों के बीच संघर्ष, रिश्तों की उलझने और जीवन के सबसे कठिन सवाल, महाभारत की कथा हमें सिखाती है कि सही रास्ता चुनना आसान नहीं होता। कभी अर्जुन के शस्त्र उठाने के पहले की दुविधा, तो कभी श्री कृष्ण के गीता का उपदेश, हर मोड़ पे नए प्रश्न और उनके जवाब, धर्म, युद्ध और जीवन के असली अर्थ की खोज। सुनना ना भूलें हर शुक्रवार शाम 7 बजे से रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर। सुनो दिल से।
4: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज।

0: गंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
1: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90।

0: घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
3: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
2: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
3: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
2: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
4: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
5: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
4: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
5: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
4: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
6: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
7: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
6: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
7: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
6: हमारा जूनियर ब्रांच सरियावार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
7: जानकारी है तो कॉल करें 6205-62112 पे।

0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HF डीलक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899225567 या 97-7-14-86-164।
2: प्रसाद क्लिनिक।
3: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
2: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
3: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
4: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
5: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034 पे।

0: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 39 51 51 पे।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9478434068 पे।
6: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
7: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
8: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9493945651 या 9707065575।
9: ठक ठक।
10: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
11: अच्छा मिला ही नहीं।
10: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
4: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
10: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
4: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

हेलो नमस्ते नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और समय हो गया है आप सभी के मन पसंदीदा कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस का। तो यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98 52 78 82 91। जी हाँ, 9852788291। और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72 77 16 65 96। जी हाँ, 7277166596। तो दोस्तों, रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और राखी के पावन अवसर पे आप सभी के लिए रक्षाबंधन का प्यारा सा सॉन्ग प्ले करती हूँ। और आज का ये गाना मेरे भाई सबको भी डेडिकेट रहेगा और मेरी बहन सबको भी, और मैं जिनका नाम लूँगी, जैसे कि राज भैया, ऋषिकेश भैया, अनूप भैया, अभिषेक, विकी, अमित और हमारी बहनों सबका नाम है सुमन दीदी, काजल दी, आरती दी और मनीषा स्वीटी। और इन सभी के लिए भी गाना डेडिकेट है और आप सभी के लिए भी। तो चलिए, बिना देरी किए आप सभी के लिए प्यारा सा सॉन्ग प्ले करती हूँ और गाने का नाम है बंधन। तो एंजॉय कीजिए आप सभी रेडियो रिमझिम 90.4 FM में ये प्यारा सा सॉन्ग।

अभी आप लोगों ने सुना मेरी तरफ से एक प्यारा सा सॉन्ग, बंधन मूवी का टाइटल सॉन्ग, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे हमारे पास मैसेज पहुँच चुका है जो कि लिख रहे हैं कि हैप्पी रक्षाबंधन आपको सभी बहनों को दिलीप राम की तरफ से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और लिख रहे हैं कि आज छुट्टी कर लेती हैं आप, तो अगर मैं छुट्टी पे चली जाती तो आप लोगों की फरमाइश कौन पूरा करता। और यहाँ पे जो कि हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं जी मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून मैम, और लिख रहे हैं आ गई नहीं हम हूँ, और वाओ बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग और डेडिकेशन लिस्ट भी, और इमोशनली दिल जीत लिया आपने मैम, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और मैसेज करने वाले हैं उत्तम सोनी जी, और यहाँ पे मैसेज करने वाले हैं धनीश कुमार मिश्रा दिल्ली से, और लिख रहे हैं रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं रिमझिम टीम के पूरे परिवार को और सारे लिसनर को। बोल दीजिएगा भारती जी ओपनिंग सॉन्ग दिल को छू गया, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और आप सभी को गाना पसंद आया इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं हाय हेलो, और मैसेज करने वाले हैं सचिन सिंह, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं हैप्पी रक्षाबंधन की शुभकामनाएं रेडियो रिमझिम परिवार जवान, रिमझिम सुनने वाले सभी श्रोतागणों को हमारा प्यार भरा सादर धन्यवाद, और भारती मैम जी हमारा पसंद के गीत जरूर सुनाएं। और न्यायपारा विरई जिला बालोद छत्तीसगढ़ से बसंत कुमार ठाकुर, सरोज ठाकुर, इजरा राज, पप्पू ठाकुर, तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भी। और इसी के साथ ही हमारे पास गाने की जो कि फरमाइश पहुंची हुई है, लिख रहे हैं हाय गुड आफ्टरनून मैम, मुझे भी गाना सुनना है, और गाने की बोल है फूलों का तारों का सबका कहना है, और डेडिकेट बाय सिस्टर लक्ष्मी कुमारी। और संजय कुमार मैसेज करने वाले हैं फ्रॉम कोलकाता से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और आप सभी को भी रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएँ एक बार फिर से। तो चलिए बिना देरी किए आपके गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: अब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमलश्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमलश्री। कमलश्री कमलश्री सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमलश्री कमलश्री कमलश्री सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर।
3: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
4: भरोसे वाले से लेंगे,
3: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
4: और कीमत भी।
3: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
0: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
5: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
0: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
6: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
0: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
7: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
0: कॉल करें 85070-32042 पे।
8: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन।

0: विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।

0: ब्रेक के बाद जो अभी हमसे जुड़े हैं और जो पहले से जुड़े हुए हैं उनका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करती हूँ योर वॉइस योर चॉइस के शो में। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98 52 78 92 91 और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72 77 16 65 96। तो चलिए बिना देरी किए अगले मैसेज की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारे पास यहाँ काफ़ी सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं और जो कि लिख रहे हैं कि धनेश जी की भारती जी सारे लिसनर से बोलिए रक्षाबंधन स्पेशल सॉन्ग की फरमाइश करें। और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुँचा हुआ है लिख रहे हैं हाय रंजीत कुमार लकड़ी दरगाह से जुड़े हुए हैं तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है दिलीप राम जी की तरफ से जो कि लिख रहे हैं गाना भेज दूँ तो जी बिल्कुल आज सभी के गाने की फरमाइश पूरी करूँगी और सभी के गाने आज प्ले किए जाएंगे तो आप अपने गाने की फरमाइश भेज सकते हैं। और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुंचा हुआ है लिख रहे हैं कि भारती जी नमस्ते, मैं नौशाद अली मोतिहारी ज़िला से और मुझे गाना सुनना है और गाने का लिंक भेज दे रहा हूँ, प्लीज़ गाना प्ले कर दीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुँची हुई है तो चलिए लेते हैं कॉल और जानते हैं क्या है इनकी फरमाइश। हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रूम जिम 90.4 FM में।
1: नमस्कार मैम
0: जी। नमस्कार,
1: मधुसरिया से राजीव कुमार बोल रहे हैं।
0: जी जी,
1: गाना सुनना है।
0: बिल्कुल बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है आपको।
1: यही रक्षाबंधन का कोई अच्छा सॉन्ग सुना दीजिए।
0: आपने बताइए रक्षाबंधन का कौन सा सॉन्ग सुनना है आपको।
1: कोई अच्छा सुना दीजिए और इतना तुम
0: अच्छा जी। तो चलिए आपके लिए रक्षाबंधन का एक प्यारा सा सॉन्ग प्ले करती हूँ, एंजॉय कीजिए रेडियो रमजन 90.4 FM में।

रक्षाबंधन का बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग अरिजीत सिंह की आवाज में और गाने की बोल थी धागों से बांधा। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और यहाँ हमारे पास काफी सारे मैसेज पहुंचे हुए हैं जो कि लिख रहे हैं राजू यादव बुले बुंदेलखंड हमीरपुर से रक्षाबंधन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपको भी और आपको भी रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहा है मैं भी जुड़ गया हूँ गवरिया बलरामपुर उत्तर प्रदेश से और रामविलास मुझे एक गाना सुनना है सुना दीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुंचा हुआ है लिख रहे हैं हर हर महादेव हम भी जुड़ गए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे जो कि मैसेज लिखा हुआ है लिख रहे हैं कि भारती जी कोई भी रक्षाबंधन का सॉन्ग में मुझे शामिल कर लीजिएगा। तो मैसेज करने वाले हैं धनेश जी। तो चलिए यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत गाने की फरमाइश पहुँची हुई है नौसाद अली मोतिहारी के रहने वाले हैं और लिख रहे हैं कि थोड़ा जल्दी बजा दीजिएगा 12:02 पर फरमाइश कर रहा हूँ तो इस गाने को जल्दी बजाने की कोशिश करें ठीक है और मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ बेसब्री से और यह गाना पूरे दिन के परिवार और रेडियो रिमझिम सुनने वाले सभी को डेडिकेट कर रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और रक्षाबंधन का बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग पहुंचा हुआ है और गाने की बोल है राखी हर साल कहे सवनवा में और बहुत ही खूबसूरत गाने की फरमाइश है। तो चलिए बिना देरी के गाना प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
3: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
4: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
2: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
0: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
2: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रूपए, और एक्सट्री 125R 110,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
0: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
2: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97714861 64।
5: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में, और हमारी स्टूडियो की घड़ी में 1:33 हो रहे हैं, और सो है योर वॉइस योर चॉइस का। तो बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे, और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, गुड आफ्टरनून, रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी रेडियो रिमझिम सुनने वाले परिवार, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और रंजीत कुमार जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून RJ दिव्या भारती और रेडियो रिमझिम 90.4 FM सुनने वाले सभी श्रोताओं बंधुओं को रक्षाबंधन के इस पावन पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ हमारी ओर से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और मैसेज करने वाले हैं प्रमुख जी, और यहाँ पे जो कि हमारे पास कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुँची हुई है, तो चलिए लेते हैं कॉल। हेलो,
6: हेलो, नमस्ते
5: जी। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में। और सब ठीक है, आप बताइए आप कैसे हैं। तो कौन से गाने की फरमाइश है आज, बता दीजिए। हुआ तो लेट से हुआ थोड़ा। तो आपका गाना प्ले कर रहे हैं, एंजॉय कीजिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

अभी बहुत ही खूबसूरत सा गीत सुन रहे थे, राखी बनवाले भैया आई बहन लेकर रंग बिरंगी। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पे मैसेज जो कि पहुँचा हुआ है, जो कि लिख रहे हैं कि हेलो अस्सलाम वालेकुम, हम अहमद अली सारे वार्ड नंबर 1 से जुड़ गए हैं, और गुड आफ्टरनून सभी को बोल दीजिएगा मैम। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपकी तरफ से सभी को गुड आफ्टरनून बोल दी हूँ। और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुँचा हुआ है, बानी मेहमान यादव 2-4 दिन के जन भुलैया भैया अपन बहिनी के, और गाना सुनना चाहते हैं सिंगर है सानिया, और लिख रहे हैं कि राखी आएगी खुशियों के रंग लाएगी, बहन भाई के रिश्ते को और मजबूत बनाएगी, कलाई पर बंधेगी प्यार की एक डोर, और दिल में यादें हजारों छोड़ आएगी। और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं, जो कि तर्केश्वर माझी दुबई से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है, जो कि लिख रहे हैं घवरिया बलरामपुर उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं रामविलास जी, और गाना सुनना चाहते हैं, और गाने की बोल पहुँच हुई है, तो आपको भी गाना प्ले किया जाएगा। उससे पहले यहाँ पे जो कि मिथुन शर्मा बेंगलोर से जुड़े हुए हैं और गाना सुनना चाहते हैं, लिंक के माध्यम से एक फरमाइश पहुँची हुई है, और गाने की बोल है मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। तो चलिए बिना देरी के इनके गाने को प्ले करेंगे, और बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग है, तो इन्जॉय करते हैं रेडियो रमझम 90.4 FM में।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
2: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनो फेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
4: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
2: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
4: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
2: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
4: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
2: संपर्क करें 8470103092 या 9765665750।
5: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे, और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हरे कृष्ण नमस्कार, मैं गुड्डू कुमार लाइन बाजार से, और कार्यक्रम में मेरा भी हाजिरी लगा दीजिएगा, और अभी मैं जुड़ा हूँ सऊदी अरब से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और लिख रहे हैं कि आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन, तो आपको भी हैप्पी रक्षाबंधन। और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं सोनी मैम नमस्कार, भारती मैम नमस्कार, और जरा इजरा नवद्दा से मिथिलेश चौहान जी बोल रहा हूँ, थाना संग्रामपुर, मुझे गाना सुनना है, सुना दीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और इसी के साथ जो कि हमारे पास गाने की फरमाइश पहुंची हुई है कॉल के माध्यम से, तो चलिए लेते हैं कॉल और जानते हैं क्या है इनकी फरमाइश। हेलो
6: हेलो मैडम जी, प्रणाम।
5: प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
6: नगेंद्र माझी, फूल दयमान जी, घर पकौली बद्दू, ब्लॉक फुलवरिया से बोलते हैं मैडम
5: जी। जी, काल चल बराबर
6: ठीक बस, हमें चार अपन बताई मैडम जी,
5: हमियों के ठीक बानी सा।
6: अच्छा सा, सबसे पहले रक्षा बंधन के शुभ कामना सब लोग के, जितना लोग सुनता है रेडियो रिमझिम परिवार के, रहुआ के ठीक बनू
5: जी। जी, आपको भी।
6: अच्छा ठीक बा,
5: तो गाना बता दीजिए, कौन सा गाना सुनिएगा आज?
6: गाना हम तन कैसा गावत नहीं, भाई बहन के ऊपर। कितना सुंदर कितना प्यारा यह संसार हमार है, इस संसार

0: यह संसार हमार है, इस संसार में सबसे प्यारा भाई बहन का प्यार है। मैडम जी ये गाना बजाओ के बा।
1: जी जी द
0: सुनिए, सबसे पहले रहुआ के सुनवाओ के बा। आगा जितना लोग सुनता सब लोग के हम अपना पूरा परिवार के साथ सुनता नी नो।
1: हाँ
0: ठीक बा बजाई
1: तो गाना प्ले करता नहीं, सुनत रही रेडियो रंजीत 90.4 FM।
0: ठीक बा प्रणाम
1: प्रणाम।

0: लोग सुन रहे थे बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग रक्षाबंधन का। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास अभी भी काफ़ी सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं जो कि लिख रहे हैं हाय मैम। और मैसेज करने वाले का तो नाम मुझे नहीं मालूम क्योंकि उन्होंने नाम मेंशन नहीं किया, फिर भी उनका स्वागत है। और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुँचा हुआ है लिख रहे हैं कि मैडम जी गाना भेज दिया हूँ देख लीजिएगा, और दिलीप राम दिल्ली से तो बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पे गाने की फरमाइश पहुँची हुई है दिलीप राम जी की तरफ से, और यहाँ पे एक छोटा सा वॉइस नोट भी पहुँचा हुआ है उनकी तरफ से। तो चलिए सुनते हैं क्या है इनकी वॉइस नोट।
1: भारती जी नमस्ते, नमस्कार प्रणाम, और सभी जितने दोस्त हैं उनको भी नमस्ते नमस्कार प्रणाम, और रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएँ आपको और सभी बहनों की। तो एक बार और रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं मैं लिंक भेजा हूं, और आपको और तमाम जितने श्रोतागण इस समय लाइव सुन रहे हैं सभी दोस्तों को ये गाना डेडिकेट है। मैं दिलीप राम दिल्ली से।
0: तो चलिए दिलीप राम जी की तरफ से भेजे हुए गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रमजिम 90.4 FM में।
2: अरे हमार बहिंदाबा

0: ना तो खाल खींच।
1: शायद गलती हमरे रहे, दहेज दे के ही जल्लादन के घर बाप चढ़।
2: अभी हम लोग सुन रहे थे दिलीप राम जी की तरफ से बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग बहिनी की कीमत, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ हमारे पास जो कि मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपको गाना चलाने के लिए भारती जी। तो यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, सभी दोस्तों को हैप्पी रक्षाबंधन। सुनील कुमार, सुनील जी MP यानी मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं और गाने की बोल पहुँची हुई है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहा है मैडम जी हमारा भी हिंदी गाना है, सलमान खान की फिल्म का रक्षाबंधन का गाना है, वो बजा दीजिएगा दोस्तों लोग। हमारा गाना है सलमान खान की फिल्म का रक्षाबंधन का गाना है, वो बजा दीजिएगा दोस्तों लोग हमारा सुनेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं भारती जी सारे श्रोता को धन्यवाद देते हैं कि अभी तक रक्षाबंधन का स्पेशल सॉन्ग चल रहा है। और मैसेज करने वाले हैं धनेश जी। और यहाँ पे जो कि हमारे पास कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुँची हुई है, तो लेते हैं कॉल और जानते हैं क्या है इनकी फरमाइश। हेलो,
3: हेलो
2: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में। हाँ जी, क्या हाल चाल है?
3: ठीक तो है, अपना बताइए।
2: मेरा भी ठीक है। बता दे कौन सा गाना। कौन सा एक बार और बताइएगा।
3: मेरे भैया से पहना की पहना याद करे
2: जी,
3: ये गाना सुना दे।
2: और गाना सुनाना भी है
3: जी, का पूरा टीम सुनी जितना बढ़िया बढ़िया
2: जी। तो चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, एंजॉय कीजिए रेडियो रंजन 90.4 FM में।
3: नमस्ते,
2: नमस्ते।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 या 9656 57902।
2: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
3: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
2: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
4: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और यहाँ पे हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि रिमझिम के सभी लिसनर को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं बोलिएगा। तो जी बिल्कुल, सभी लिसनर को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं बोल दिए हैं। और यहाँ पे मैसेज पहुँच चुका है जो कि लिख रहे हैं कि आज का अर्जुन गाने का बोल पहुंचा हुआ है बसंत कुमार ठाकुर जी की तरफ से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और आपका भी गाना प्ले होगा पर दोपहर न्यूज़ के बाद। और यहाँ पे जो कि हमारे पास गाने की फरमाइश पहुंची है, लिख रहे हैं हेलो भारती दी, गुड आफ्टरनून, मेरा नाम गणेश कुमार पिपरा नारायण से जुड़े हूँ, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और गाना बजेगा कि नहीं, तो जी आपका भी गाना प्ले होगा। आज सभी के गाने प्ले कर रही हूँ, रक्षाबंधन स्पेशल सॉन्ग चल रहा है। और यहाँ पे गाने की बोल पहुँची हुई है गणेश जी की तरफ से, लिख रहे हैं गाने की बोल है घरवा के लक्ष्मी बहिना। तो चलिए बिना देरी के आपके गाने को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनधन योजना की वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और लोगों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 469 हुई। सीमा के दोनों ओर 1500 से अधिक लोग लापता। विदेश मंत्रालय ने कहा, नेपाल में 290 भारतीय नागरिक अब भी संपर्क से बाहर। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बचाव अभियान जारी। चीन के सिचुआन प्रांत में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद नेपाल में फिर बाढ़ की चेतावनी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका की 6 दिन की यात्रा पर। और भारत के वेलविन सेंथिल कुमार पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन में आज रात फाइनल में हंगरी के बालास फारकाश से मुकाबला करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में आज ही के दिन किया था। योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। ये योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग पहुँच को सुलभ बना रही है। योजना के तहत महिलाओं के लगभग 56% खातों सहित 78% खाते ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक आई विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 469 हो गई है और सीमा के दोनों तरफ 1545 लोग लापता है। नेपाल के सुरक्षा कर्मियों ने प्रभावित जिलों में 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। एक रिपोर्ट।
2: भोटेकोशी नदी प्रणाली के स्रोत के पास नई झील बन गई है। इसके टूटने से पानी के एक और तेज बहाव की आशंका है, इससे बचाव कार्यों में बाधा आ सकती है। इस बीच आज चीन के सिचुआन प्रांत में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद नेपाल में बाढ़ की नई चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों ने त्रिशूली क्षेत्र में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का आदेश दिया है। नेपाल पुलिस ने बताया कि तिब्बत की ओर स्थित एक बांध फिर टूट गया है। वहां के निवासियों और सुरक्षा कर्मियों से सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में फंसे 290 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। उनका पता लगाने और सुरक्षित निकालने के प्रयास जारी हैं। खोज और बचाव कार्यों में सहायता के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात कर उन्हें सहायता का आश्वासन दिया। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कल अमरीका की उप विदेश मंत्री एलिसन हुकर से टेलीफोन पर बातचीत की। अमरीका ने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए 5 लाख अमरीकी डॉलर की सहायता की घोषणा की है। श्रीलंका ने भी नेपाल को 10 लाख अमरीकी डॉलर की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। इस बीच नेपाल में बाढ़ के बाद बिहार में बाढ़ का खतरा फिलहाल टल गया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद बिहार में गंडक नदी से बाढ़ का खतरा फिलहाल टल गया है। बुधवार रात गंडक नदी के जल प्रवाह में बढ़ोतरी के बाद अब इसमें लगातार कमी दर्ज की जा रही है। उप मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि फिलहाल गंडक नदी में जल प्रवाह सामान्य है। उन्होंने कहा कि नेपाल की भोटेकोशी, त्रिशूली और नारायणी नदियों से होते हुए पानी के गंडक तक पहुंचने के दौरान जल प्रवाह की गति कम हुई है, जिससे बिहार में इसका प्रभाव भी कम हो गया है। श्री चौधरी ने बताया कि एहतियात के तौर पर गंडक नदी से प्रभावित सभी 8 जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। जल संसाधन विभाग की टीमें तटबंधों की 24 घंटे पेट्रोलिंग और निगरानी कर रही हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का

0: सीतारामन आज से 6 दिन की अमरीका यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वे शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। एक रिपोर्ट।
1: वित्त मंत्री शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत अमेरिका व्यापार तथा निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। श्रीमती सीतारामन शिकागो विश्वविद्यालय के पोल्सकी सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन का दौरा करेंगी। वित्त मंत्री अपनी यात्रा के दौरान शिकागो में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगी। एशविले में सुश्री सीतारामन की अध्यक्षता में आयोजित G20 सदस्य देशों के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक गवर्नर तथा वरिष्ठ आर्थिक अधिकारी वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ये बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को होगी। समाचार कक्ष से मैं वीरेंद्र कौशिक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ शिष्टमंडल स्तर की बातचीत करेंगे।
2: अपनी 2 दिनों की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताशकंद में शास्त्री मेमोरियल जाने की उम्मीद है। ताशकंद शहर में शास्त्री स्ट्रीट पर भारत के तीसरे प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के सम्मान में एक कांसे की प्रतिमा स्थापित की गई थी। 1976 में शुरू हुए इस मेमोरियल को स्थानीय उज्बेक मूर्तिकार याकोव शापिरो ने डिजाइन किया था। ताशकंद आने वाले भारतीय पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में यहां पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी सेंटर जाने की भी उम्मीद है। ये सेंटर भारतीय साहित्य, खासतौर पर हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं के इतिहास और विकास पर एकेडमिक रिसर्च करता है और उज्बेकिस्तान और भारत के बीच आपसी सहयोग को मजबूत करने पर केंद्रित है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ की उत्तरी रेंज ने ISI समर्थित पाकिस्तान के एक जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिल्ली के एक दंपति को गिरफ्तार किया है। दंपति पर 2024 से पाकिस्तानी खुफिया एजेंट्स के लिए काम करने का आरोप है। पुलिस के अनुसार दंपति कथित तौर पर पाकिस्तान के हैंडलर्स को सहायता प्रदान करता था। इसमें भारतीय सिम कार्ड खरीदना और उन्हें पाकिस्तान भेजना शामिल था। भारत में सिम कार्ड खरीदने के लिए दिल्ली के स्थानीय लोगों को भर्ती किया गया था। महाराष्ट्र के नाशिक से 450 टन से अधिक प्याज लेकर पहली कांदा एक्सप्रेस आज सुबह दिल्ली पहुंची। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों में नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू की है। चेन्नई, कोलकाता, एर्नाकुलम, गुवाहाटी, वाराणसी, लखनऊ, पटना, चंडीगढ़, जम्मू और अमृतसर जैसे अन्य प्रमुख उपभोग केन्द्रों तक भी प्याज की आपूर्ति की जा रही है। सरकार के मूल्य नियंत्रण बफर स्टॉक का प्याज 35 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर बेचा जा रहा है। भारत में 7 स्थानों पर 24 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर संचालित हैं, जिनकी कुल स्थापित क्षमता 8.78 गीगावाट है। परमाणु ऊर्जा विभाग के अनुसार 9 अतिरिक्त रिएक्टर निर्माणाधीन हैं। परमाणु ऊर्जा भारत के विकास पथ का एक महत्वपूर्ण घटक बनकर उभरी है, जो न केवल बिजली उत्पादन बल्कि स्वास्थ्य सेवा, कृषि और विभिन्न औद्योगिक अनुप्रयोगों में भी योगदान देती है। भारत के परमाणु ऊर्जा मिशन का लक्ष्य 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, एक्स पर @AIRNewsHindi को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। रक्षाबंधन का त्योहार आज देश भर में मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में विभिन्न स्कूलों और संगठनों में रक्षाबंधन का पर्व मनाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि रक्षाबंधन का महत्व भाई बहन के रिश्ते से कहीं आगे है। उन्होंने कहा कि राखी का पवित्र धागा परिवार के सदस्यों

पत्थरों और यहाँ तक कि पेड़ों को भी बांधा जा सकता है, जो प्रेम और देखभाल के बंधन का प्रतीक है। राष्ट्रपति ने पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर जोर देते हुए बच्चों से पौधों और पेड़ों की देखभाल करने का भी आग्रह किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि रक्षाबंधन प्रेम, विश्वास और सुरक्षा के सुंदर बंधन का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये त्योहार सभी के बीच स्नेह और सद्भाव के बंधन को मजबूत करने तथा खुशहाली और समृद्धि का पर्व है। पंजाब में जेल विभाग ने आज कैदियों को भाई बहनों के बीच प्रेम और सम्मान का त्यौहार रक्षाबंधन मनाने की अनुमति दी है। विभाग ने सुरक्षा संबंधी नियमों का ध्यान रखे जाने की पूरी व्यवस्था की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज समाज सुधारक और दूरदर्शी नेता महात्मा अयंकाली की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सिंह ने कहा कि महात्मा अयंकाली ने अपना जीवन शोषितों के अधिकारों और सम्मान के लिए संघर्ष करने में समर्पित कर दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी महात्मा अयंकाली और श्री नारायण गुरु की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि महात्मा अयंकाली को एक अग्रणी समाज सुधारक और दूरदर्शी नेता के रूप में याद किया जाता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि श्री नारायण गुरु की आध्यात्मिक समझ और समानता तथा मानवीय गरिमा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने लोगों को भेदभाव से ऊपर उठाया। मौसम विभाग ने उड़ीसा और बिहार में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और पूर्वोत्तर राज्यों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। अगले दो दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में तेज हवाओं के साथ आंधी की संभावना है। कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भी कल तक ऐसे ही मौसम का अनुमान है। मौसम विभाग ने मछुआरों को 1 सितंबर तक अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में न जाने की सलाह दी है। भारत के वेलविन सेंथिल कुमार आज रात पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन फाइनल में हंगरी के खिलाड़ी बालास फारकाश से मुकाबला करेंगे। कल रात सेमीफाइनल में सेंथिल कुमार ने भारत के ही वीर चोटरानी को हराया। भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने 2026 डायमंड लीग फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। प्रतियोगिता अगले महीने ब्रसल्स में आयोजित होगी। नीरज ने रैंकिंग में 12 अंक हासिल किए। उन्होंने जून में दोहा मीट में 85.69 मीटर भाला फेंक कर चौथा स्थान हासिल किया था। उन्होंने इस महीने की शुरुआत में लुसानी मीट में 88.05 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने कल जर्मनी को 3-1 से हराकर एफआईएच विश्व कप में 5वां स्थान हासिल किया। पिछले 52 वर्षों में यह भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले 1974 में हुए पहले विश्व कप में टीम चौथे स्थान पर रही थी। इस प्रदर्शन से अगले महीने जापान में होने वाले एशियाई खेलों से पहले टीम का आत्मविश्वास चरम पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनधन योजना की वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और लोगों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 469 हुई। सीमा के दोनों ओर 1500 से अधिक लोग लापता। विदेश मंत्रालय ने कहा, नेपाल में 290 भारतीय नागरिक अब भी संपर्क से बाहर। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बचाव अभियान जारी। चीन के सिचुआन प्रांत में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद नेपाल में फिर बाढ़ की चेतावनी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका की 6 दिन की यात्रा पर। और भारत के वेलविन सेंथिल कुमार का पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन में आज रात फाइनल में हंगरी के बालास फारकाश से मुकाबला। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: दोपहर न्यूज के बाद स्वागत है आप सभी का रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं आगे का प्रसारण।
1: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
2: ई सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
1: अरे ई सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
2: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
1: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
2: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
3: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
1: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
5: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
6: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
7: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
8: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
6: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
5: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
6: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
8: कॉल करें 87-894-18744।
9: नन्ना मुन्ना लाही हूं, देश का सिपाही हूं।
10: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
9: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
10: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
9: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
11: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
12: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
11: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
12: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
11: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
12: जानकारी है तो कॉल करें 62052-62112 पे।
11: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
13: ऑलराइट।

0: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
1: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
2: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67666।
3: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
4: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
5: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
6: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
7: ठक ठक।
8: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
9: अच्छा मिला ही नहीं।
8: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
8: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
10: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
10: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
5: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
11: All right.

0: सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HFD लक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 1,03,54 रूपए और एक्सट्री 125R 1,10,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92-8-99-22-5-67 या 97-7-14-86-164।
2: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98-527-88-291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98-527-88-291 या 95-238-74-088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।

छोटे से ब्रेक और दोपहर न्यूज के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 91.4 एफएम में, और आप सुन रहे हैं योर वॉइस योर चॉइस। तो यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98 52 88 91, और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72 77 16 65 96। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और यहाँ हमारे पास काफ़ी सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं जो कि लिख रहे हैं कि हाय भारती जी, रक्षाबंधन की शुभकामनाएं आप सभी रिमझिम रेडियो वाले को, और क्या करिश्मा है कुदरत का, कौन किसके करीब होता है, रेडियो वही सुनता है जिसका नसीब होता है। इरशाद मास्टर ग्राम धनाव रोशन टेलर से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपको भी रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुँचा हुआ लिख रहे हैं जमशेदपुर रखाल पथ कदमा उलियान से देविका ठाकुर, प्राची ठाकुर, साधना, मोना ठाकुर, भारती दीदी, आप जी आपसे गुजारिश है कि बिना देरी किए हमारे गीत भी चला दीजिए, भोजपुरी सॉन्ग है रक्षाबंधन वाले गीत। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपके गाने की फरमाइश पूरी की जाएगी। उससे पहले एक गाना प्ले करूंगी, और गाने की फरमाइश पहुंची हुई है जो कि उत्तम सोनी जी की तरफ से, और गाना सुनना चाहते हैं लिख रहे हैं, गाने की बोल है कहाँ गए ममता भरे वो दिन, और बहुत ही खूबसूरत गाने की फरमाइश है। तो चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले करेंगे और एंजॉय करेंगे रेडियो रिमझिम 91.4 एफएम में।

अभी हम लोग सुन रहे थे उत्तम सोनी जी की तरफ से बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग और गाने की बोल थी कहाँ गए ममता भरे दिन, और डेडिकेट किए हैं अपनी बहन को जो कि नाम है बहन का शारदा सोनी जी, और बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग था। और इसी के साथ यहाँ बढ़ेंगे आगे और हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, क्या ऑनलाइन शो है? तो जी बिल्कुल ऑनलाइन शो है। और गुड आफ्टरनून, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि सुपर सॉन्ग बज रहा है मैडम जी, बहुत अच्छा सॉन्ग है, इसके लिए धन्यवाद, और मेरा भी गाना प्ले कर दीजिए। तो जी बिल्कुल थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा और आप सभी के गाने भी प्ले करूँगी, क्योंकि आज तो जिनका नहीं बजना भी चाहिए उनका भी गाना बजा रही हूँ। और सभी भाई अपनी बहन को डेडिकेट कर रहे हैं। और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुँचा हुआ है लिख रहे हैं राजा बाबू यादव अबू धाबी से, और गाना सुनना चाहते हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपका भी गाना प्ले होगा। उससे पहले जिनकी गाने की फरमाइश पहुँची हुई थी बसंत ठाकुर जुड़े हुए हैं और न्यायपारा विरई से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और गाना सुनना चाहते हैं भोजपुरी सॉन्ग रक्षाबंधन वाले गीत कोई भी बजा दीजिएगा। तो चलिए आपके लिए रक्षाबंधन का गीत सुनाते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: और अधर्म की सबसे बड़ी लड़ाई एक गाथा जो हजारों सालों से दिलों में जीवित है, महाभारत। पांडवों और कौरवों के बीच संघर्ष, रिश्तों की उलझने और जीवन के सबसे कठिन सवाल, महाभारत की कथा हमें सिखाती है कि सही रास्ता चुनना आसान नहीं होता। कभी अर्जुन के शस्त्र उठाने के पहले की दुविधा, तो कभी श्री कृष्ण के गीता का उपदेश, हर मोड़ पे नए प्रश्न और उनके जवाब, धर्म, युद्ध और जीवन के असली अर्थ की खोज। सुनना ना भूलें हर शुक्रवार शाम 7 बजे से रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर। सुनो दिल से।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करे।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।

0: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 91.4 एफएम। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो क्लिक रहे, भारती जी आज रक्षाबंधन स्पेशल शो चल रहा है क्या, मैं भी फरमाइश करूँ क्या? और मैसेज करने वाले हैं धनेश जी। तो जी बिल्कुल, आज रक्षाबंधन के अवसर पे सभी के गाने मैं प्ले कर रही हूँ। और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं विमलेश्वरी साहू चांदनी चौक कुपीडी खिलेश्वरी रायपुर से, लीला साहू न्यायपारा विरही रक्षाबंधन वाले गाना सुनाइए भारती जी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और उस टाइम से अभी तक के सारे गाने रक्षाबंधन के ही बज रहे हैं और आप सुन सकती हैं और इंजॉय भी कर सकती हैं। और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है, मैडम जी मेरा गाना बजा दो सनी कुमार सानिया सानिया का। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं मोतिहारी से एमडी मीनू जुड़े हुए हैं, तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो कि लिख रहे हैं हैप्पी रक्षाबंधन सभी को, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और आप अपना नाम ज़रूर मेंशन करें ताकि मुझे पता चले आप कौन हैं और कहाँ से हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, दीवाने हैं तेरे नाम के इस बात से इनकार नहीं, कैसे कहें कि तुमसे प्यार नहीं, कुछ तो कसूर है आपकी आंखों का, हम अकेले तो गुनहगार नहीं। और लिख रहे हैं नमस्ते मैडम जी, मुकेश करवार हिमाचल प्रदेश से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और मैडम जी गाना सुना दीजिएगा, लिंक भेज रहा हूँ। मैडम जी मेरा मैसेज, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि पुजेंद्र यादव मुंबई से, और रक्षाबंधन का गाना सुनाइए भोजपुरी में, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और उस समय से तो रक्षाबंधन के ही गाने बज रहे हैं और आप सुन सकते हैं, ऐसी नहीं है कि रक्षाबंधन के गाने नहीं बज रहे हैं। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, भारती मैम थैंक यू मेरा गाना प्ले करने के लिए, धन्यवाद न्यायपारा विरही से बसंत कुमार ठाकुर जी। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास गाने की जो कि फरमाइश पहुँची हुई, लिख रहे हैं हर हर महादेव हम भी जुड़ गए हैं, तो इनकी तरफ से वॉइस के माध्यम से फरमाइश पहुँची हुई है, तो चलिए सुनते हैं क्या है इनकी वॉइस।
1: हर हर महादेव, दिव्या जी, भारती जी, सोनी जी, अफसर भैया, हाँ रक्षाबंधन के दिन पे मैं भी जुड़ गया हूँ, मेरा भी वॉइस चला दीजिएगा, काफ़ी दिन बाद मैं जुड़ा हूँ। मेरा नाम शंभू यादव, घर जिला बजला भागलखाप, जिला गोपालगंज, पुलिस लाइन के सामने से बंजारी से। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, मेरे कुछ मित्र हैं जिनका नाम भी लेना चाहूँगा, जो मेरी बहनें हैं उनका भी नाम लेना चाहूँगा, मेरी ज्ञानती दीदी, मेरी उर्मिला बहन, जो भाई नहीं स्वर्गवास हो गया, कोई बात नहीं, कोटि कोटि उनको प्रणाम, भगवान अपना शांति दे। और मैं आज गाना सुनना चाहूँगा, रक्षाबंधन का कोई भी प्यारा सा सॉन्ग आप सुना दीजिएगा। और मैं सबको, जितने भी मेरे अदर कंट्री में दोस्त हैं, जितने भी मेरे भाई हैं, सबको सुनाना चाहूँगा रेडियो रिमझिम पे गाना। तो मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे जो भी दोस्त इस रक्षाबंधन के अवसर पे आज गाना सुन रहे हो, अपने बहनों के लिए, अपने बहन के लिए, अपने बहन जो है भाई से भी कम नहीं होती हैं, उनके लिए कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करें। और जो भाई नहीं जा सकते हैं, बहनें उनको ड्रॉप भेज सकती हैं, और जो बहनें नहीं आ सकती

व्यक्ति भाई उनके दरवाजे पे जा सकते हैं। इसलिए प्लीज भारती जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरा गाना चला दीजिएगा, क्योंकि 1:30 बजे से पहले मुझे छुट्टी पे जाना होता है, रोटी लंच करना होता है। इसलिए प्लीज प्लीज प्लीज आप मेरा गाना बजा दीजिए। कुछ मेरे दोस्त हैं जिनका मैं नाम लेना चाहूंगा, जो मेरे दोस्त हैं दिलीप जी, और मेरे दोस्त हैं संजय जी, और मेरे दोस्त हैं रंजीत भैया जी, और मेरे दोस्त हैं राघव भैया जी, और मेरे दोस्त हैं बाबा बिट्टू जी, और मेरे दोस्त हैं जो मेरे साथ काम करते हैं, वो मेरे भाई हैं, और कुछ मेरी बहनें हैं। तो हर हर महादेव, प्लीज़ प्लीज़ चला दीजिएगा 1:30 बजे से 1:30 बजे से पहले पहले। धन्यवाद। हर हर महादेव।

तो अभी हम लोग सुन रहे थे शंभू जी की तरफ से बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग रक्षाबंधन का, माता भी तू पिता भी तू। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पे हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं। लिख रहे हैं कि धड़कने आज़ाद हैं, पहले लगा कर देख लो, प्यार छुपता नहीं तुम छुपा कर देख लो। और हाय हेलो गुड आफ्टरनून भारती जी, राजसो लाल सिंह लखनऊ उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और गाना सुनना चाहते हैं और डेडिकेट भी करना चाहते हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और आपका गाना प्ले होगा, पर उससे पहले यहाँ पे गाने की फरमाइश पहुँची हुई है। और यहाँ लिख रहे हैं मानस साहू, चिराग साहू, गौरव साहू, हसदा दो जिला रायपुर से, तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भी। और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं मैसेज देख लें, हरे रहे हैं, गाना क्यों नहीं बजा रहे, इंतज़ार कर रहे हैं और कब का मैसेज भेज दिए हैं। तो जी बिल्कुल, आपका गाना मैंने प्ले किया था मिथुन शर्मा बेंगलोर से, जो कि गाने की बोल लिंक के माध्यम से पहुंच हुई थी। और गाने की बोल थी राखी का मतलब है प्यार भैया, और ये गाना मैंने प्ले किया था और आप सुने नहीं, मैं क्या ही कहूँ आपको। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है, हेलो मैम नमस्कार, मैं सुनील यादव दुबई से, भैया तेरी बहन को कोई हिंदी पिक्चर का गाना है बजा दीजिएगा, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और उससे पहले जो कि गाने की फरमाइश पहुंची थी श्री भगवान सिंह जी की तरफ से, और गाना सुनना चाहते थे राखी की बोल, राखी की गाना सुनना चाहते, और गाने की बोल है रखिया बंधाला भैया, और बहुत ही खूबसूरत गाने की फरमाइश है। तो चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले करेंगे और इंजॉय करेंगे रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: अभी हम लोग गाना सुन रहे थे श्री भगवान जी की तरफ से, और इसी की तरफ हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि अनूप कुमार कुशवाहा ग्राम निर्जना से क्या हाल है भारती जी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और रक्षाबंधन की आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और लिख रहे हैं सॉन्ग सुना दीजिएगा, तो जी बिल्कुल। और यहाँ पे जो कि हमारे पास कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुँची हुई है, तो चलिए लेते हैं कॉल और जानते हैं क्या है इनकी फरमाइश। हेलो जी, नमस्ते। जी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में। अच्छा, रोबो को ने बता दी। और गाना क्यों के सुना हूँ के बाद
1: विमल कुमारी, नीलम कुमारी,
0: अच्छा जी, तो चलिए गाना प्ले करता नहीं।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
6: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है, इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98-523-52-599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99-39-39-51-51 पे।
7: छोटे से ब्रेक और दोपहर न्यूज। छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में।

और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजीम 90.4 FM। और यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं जो कि लिख रहे हैं, भारती दी आप दिन भर सबके मैसेज पढ़ते पढ़ते थक जाती होंगी, आज तो कम से कम अपने भैया को राखी बांधने चले जाते। दीदी अपने स्थान पर कोई भाई जी को स्थान दे देते हैं। न्यायपारा विरई बालोद से बसंत कुमार ठाकुर। तो जी मैं अपने भैया को राखी बांध के आई हूँ और आज मैं भी थोड़ा लेट ही आई हूँ। और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुँचा हुआ है लिख रहे हैं मुझे भी गाना सुनना है। और मैसेज करने वाले हैं मुकेश हिमाचल प्रदेश से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इनकी तरफ से गाने की बोल पहुँची हुई है और गाने की बोल है फूल फूल पे बनी तेरी तस्वीर। तो चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले करेंगे और एंजॉय करेंगे रेडियो रंजन 90.4 FM।

0: तो अभी हम लोग सुन रहे थे मुकेश जी की तरफ से बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग फूलों पे बनी तेरी तस्वीर, और उनकी तरफ से मैसेज पहुंच गया जो कि लिख रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद गाना प्ले करने के लिए। और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुंचा हुआ है लिख रहे हैं, हाय भारती जी, हम कृष्ण मोहन सिंह सिपाया खास से सभी लिसनर और सभी आरजे को हैप्पी रक्षाबंधन बोलिएगा, और हम भी लखनऊ उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे हमारे पास कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुँच हुई है, तो चलिए लेते हैं कॉल और जानते हैं क्या इनकी फरमाइश। हेलो हेलो,
1: नमस्कार।
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: गाना सुनना है।
0: नाम बता दीजिए अपना।
1: तमन्ना खातून ससुरामपुर से।
0: और कौन सा गाना सुनना है तमन्ना जी? एक बार और बोलिएगा, थोड़ा आराम से बोलिए ताकि मुझे समझ में आए।
1: काफी से चट्टा या दीदी हो भी फैले बारो हमरो तो भी फैले बारो।

0: और गाना किसी को सुनाना भी है? तो आपका गाना प्ले कर रहे हैं, एंजॉय कीजिए रेडियो रंजन 90.4 FM में।
1: थैंक यू।

सॉन्ग सुन रहे थे, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, कन्यादान गीत है और कथी के चटैया गाने के बोल थे। और यहाँ पे हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है, तू चांद और मैं सितारा होता, आसमान में एक आसियाना हमारा होता, लोग तुम्हें दूर से देखते, नज़दीक से देखने का हक बस हमारा होता। और मैसेज करने वाले हैं मुकेश जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही प्यारी सी लाइन है और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि अनूप कुमार जी की मेरा गाना नहीं बजेगा क्या? तो जी बिल्कुल, आपका भी गाना बजेगा। उससे पहले यहाँ हमारे पास गाने की फरमाइश पहुँची हुई है जो कि लाल सिंह लखनऊ उत्तर प्रदेश से रहने वाले हैं। और गाने की बोल पहुँची हुई है जो कि जिंदगी बन गए हो तुम। तो चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले करेंगे और इन्जॉय करेंगे रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

तो अभी हम लोग सुन रहे थे राजसो लाल सिंह जी की तरफ से बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग जिंदगी बन गए हो तुम, और इनकी तरफ से मैसेज पहुंच गया जो लिख रहे हैं थैंक यू सो मच भारती जी गाना बजाने के लिए, और गाना डेडिकेट किए थे सुहानी दुबे और ऑल रेडियो लिसनर को। और इसी के साथ यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहा है गुरु नानक पूरा बठिंडा पंजाब से, और किशोर सबलानिया, सावित्री सबलानिया, सुमन सबलानिया, बेटी अंशु के साथ जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। लिख रहे हैं रिमझिम के सारे स्टाफ को रक्षाबंधन की, किशोर सबलानिया परिवार की तरफ से लाख लाख बधाई हो जी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपको भी रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख

की भिजवा दीजिए, बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं और मैसेज करने वाले हैं सुनील एमपी से। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है और आपके गाने को चलिए प्ले करते हैं। और गाने की बोल है, घर आ जा परदेसी तेरा देश बुलाए रे, और बहुत ही खूबसूरत गाने की फरमाइश है। तो चलिए बिना देरी के गाना प्ले करेंगे और एंजॉय करेंगे रेडियो रिमझिम 90.4।

0: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो? उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: ठक ठक।
5: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं।
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
8: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
7: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
8: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
9: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रमजन 90.4 FM में। और यहाँ पे हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं सुनील कुमार जी, सुनील MP से जुड़े हुए हैं और लिख रहे हैं दिल से धन्यवाद गाना बजाने के लिए। और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि रक्षाबंधन स्पेशल सॉन्ग मेरा भी गाना बजा दीजिएगा। और गाना है मेरे बहना ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा, और वो भी घर द्वार मूवी का सॉन्ग है। बहुत ही खूबसूरत गाने की फरमाइश है, तो चलिए बिना देरी के इनके गाने को प्ले करेंगे और एंजॉय करेंगे रेडियो रमजन 90.4 FM में।

सुन रहे थे राखी का बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग मेरी बहना ये राखी की लाज तेरा भैया बचाएगा। और यहाँ पे जो कि गाने की फरमाइश करने वाले थे वीरेंद्र कुमार बैगा, वैभव बैगा, ललिता बैगा जुड़े हुए हैं। तो अभी अपने गाने को एंजॉय कर रहे थे, सॉन्ग प्ले करने के लिए शुक्रिया लिख रहे हैं। और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुँचा हुआ है लिख रहे ग्राम सिंह, सिंगापुर धमतरी से, और क्यूसी ठाकुर, बसंत ठाकुर, मुकेश ठाकुर, खिलेश्वरी ठाकुर गाना सुनना चाहते हैं और लता मंगेशकर की आवाज़ में। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आप सभी का गाना तो एक बार मैंने प्ले किया था और आप सभी ने इंजॉय भी किया था। और इसी के साथ जो कि हमारे पास मैसेज पहुँचा लिख रहे हैं, हेलो भारती मैम नमस्कार प्रणाम, मैं भी, मेरा नाम अखिलेश मेहताब है और मैं इसरा नवादा पूर्वी चंपारण संग्रामपुर से बोल रहा हूँ। राखी की बहुत सारी आपको बधाई हो। और मैसेज शामिल हो गया था और यह मैं सुन रहा था प्रोग्राम, जान गया हूँ कि हफ्ते में एक बार फरमाइश करना है और गाना एक ही बार सुनाया जाएगा। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। और आज मैं कुछ फरमाइश नहीं करूँगा, बहुत अच्छा अच्छा चल रहा है गाना। और यहाँ मैसेज हमारा ज़रूर पढ़ के बताइएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है अखिलेश जी आपका भी। और यहाँ पे जो कि लिख रहे हैं, मेरा गाना नहीं बजाई भारती जी, तो क्या ही करूँ, टाइम की बहुत ही कमी है और सभी के गाने तो प्ले कर ही रही थी। और इसके साथ यहाँ पे जो कि हमारे पास जो आखिरी फरमाइश पहुँची हुई है, प्ले करते हुए आप सभी से लूँगी विदा। और गाने की भूल है जो कि लिख रहे हैं कि मुझे गाना सुनना है, और गाने की फरमाइश करने वाले हैं मिथिलेश चौहान जी और गाना सुनना चाहते हैं ये बंधन दिलों के बंधन, और शुरुआत भी इसी गाने से हुई थी। और चलिए आज का अंत भी इसी गाने से करते हैं शो का। तो श्रोताओं समय हो गया है कार्यक्रम समाप्त करने का। कार्यक्रम समाप्त करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9852782191। और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 7277165696। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही और मैं आप सभी से लूँगी विदा। और आप सब सुनते रहें ये प्यारा सा सॉन्ग मिथिलेश जी की तरफ से।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
3: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।

0: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करे 94512-11001।
1: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
2: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
1: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
2: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
3: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
2: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
3: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
2: याद रहे, शादी विवाह जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
3: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिरदर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
5: ऑलराइट।

0: शादी की ज्वेलरी लेनी है। हाँ,
1: भरोसे वाले से लेंगे,
0: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
1: और कीमत भी।
0: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
2: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
3: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
4: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
2: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
5: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे।
6: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
7: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
6: आज ही संपर्क करें 7388894 या 9198886973।

0: सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HF डीलक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86-164।
2: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

0: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9528374088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS

0: रेसिडेंट KGMU लखनऊ
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ MBBS MS ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी
0: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
0: पता: कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: दिल बोले म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
3: रेडियो रिमझिम,
2: सुनो दिल से।
4: आज रक्षाबंधन के त्योहार है, त्योहार में तरह के राखी बनिए तो का देबो
5: चॉकलेट,
4: खाली चॉकलेट से काम चल जाई। बोला बाबू,
6: अरे बहिना पूजा के मम्मी, अरे हेने आवो, देखो के आइल बा।
4: खुश रहो।

0: आज कितने खुशी की बात बा, तहरा आ जाए के वजह से तीन पीढ़ी एक साथ रक्षाबंधन मनाई।
1: आओ जी अंदर आओ ना।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
1: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
0: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: ठक ठक।
5: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं।
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
8: रेडियो रिमझिम,
7: सुनो दिल से।
9: धर्म और अधर्म की सबसे बड़ी लड़ाई एक गाथा जो हजारों सालों से दिलों में जीवित है, महाभारत। पांडवों और कौरवों के बीच संघर्ष, रिश्तों की उलझने और जीवन के सबसे कठिन सवाल, महाभारत की कथा हमें सिखाती है कि सही रास्ता चुनना आसान नहीं होता। कभी अर्जुन के शस्त्र उठाने के पहले की दुविधा, तो कभी श्री कृष्ण के गीता का उपदेश, हर मोड़ पे नए प्रश्न और उनके जवाब, धर्म, युद्ध और जीवन के असली अर्थ की खोज। सुनना ना भूलें हर शुक्रवार शाम 7 बजे से रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर। सुनो

0: रेडियो रिमझिम,
1: सुनो दिल से।
2: हेलो
3: हेलो बहनी।
2: प्रणाम भैया।
3: खुश रह खुश रह, कैसन हाल चाल हो?
2: ठीक है भैया।
3: अरे घबरा काहे रानी?
2: नहीं भैया, कहिया आइबो?
3: आगे पगली, यह रक्षाबंधन में अब। और सुनही ने, जे मोटरसाइकिलवा पहुना मंगलखी ना ने, उहो ले ले अबे, चैनमो ले ले अबे, जे जे डिमांड है सब पूरा कर देबे।
2: ठीक है भैया।
3: रोबो ही काहेले, मेहमान हो जे अखुन त दे फोन मा।
2: अच्छा ला।
3: हेलो मेहमान।
4: हेलो। हाँ
3: अब की हम जे जे के छलिए मेहमान सब ही रक्षाबंधन में लेके अबे, बाकी हमर बहनी के अच्छा से रखवाल।
4: बहनिया तो पानी में हो, और हमर जल से मोटरसाइकिलवा और सब कुछ लेके ही है, नहीं तो अपन बहन के ले जा।
3: नहीं नहीं मेहमान, ऐसा मत कहो, हम सब कुछ लेके अबे। तू तो जानिए रहलो है कि बचपने में हमर माय बाप गुजर गले, बड़ी दुलार प्यार से पललिए है मेहमान। हमर बहनी के कोई दिक्कत नहीं होबे के चाहिए, हम सब रक्षाबंधन पर लेके अबे।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
3: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
2: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
2: संपर्क करें 9939365923।
5: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
6: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
5: आज ही संपर्क करें 7388894 या 9198886973।

0: बाबू ए बाबू सुन तार आज तोहर बहनी आवा तीय राखी बांधे ओकरा के कुछ देवे के इंतजाम कैले बड़ा
1: की बूढ़ी के तो खाली लागा रहला देवे के देवे के देवे के सब तो दे देलू आपका घरों में बेच के दे दही ए जी रौरा अंदर चली तब कह दे तनी न बहरी जाए के बा न राखी बनवावे के बा न कुछ लेवे देवे के बा न तो रौरा हमरा के जानते बनी।

0: प्रणाम माई, कैसन बड़ू?
1: ठीक बनी, आ गइलू, बैठ, खुश रहे बाबू, रहो बैठी।
2: ना ना, हमरा के मत बैठाई, हमरो जाए के बार राखी बनवावे।
0: माई, तू लौकत नहीं है भैया भाभी कहाँ वालों?

0: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
2: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
3: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
4: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
3: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 1,03,54 रूपए और एक्सट्री 125R 1,10,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
4: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
3: या अभी कॉल कीजिए 92-899-22567 या 97-714-86-164।
5: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98-523-52-599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99-39-41-51 पे।
6: Now pick it up,
7: hello.
6: Now pick your phone up,
7: hello.
6: Pick it up,
7: hello.
6: Now pick your phone up.

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो मैडम, प्रणाम।
2: प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
1: कौन गाना सुनेगा
2: जी, बता दी, कौन सा गाना सुनेगा?
1: बस वाला मैडम। बस वाला मैडम भोजपुरी गाना था।
2: गाना के बोल एक बार और बोले, सुनाई नहीं के देता।
1: बस वाला मैडम भोजपुरी गाना था।
2: जी सुना
1: सुने बाद हम सुने।
2: अच्छा, तो गाना प्ले करता नहीं है, सुनत रही रेडियो
1: रिम्फेम
2: 90.4। हाँ, आज सब गाना सुना ले।
1: कितना बजे?
2: 5 से 7 बजे के बीच में।
1: अच्छा, सुना दे। वही वो दिन फरमाइशी कर दे रहे ना सुन पाने की, तो हाँ सुना दे।
2: ठीक
1: बात, सब ठीक है ना मैडम?
2: हाँ,
1: रक्षाबंधन हो गए।
2: हाँ, रक्षाबंधन हो गए।
1: हाँ, हमने के यहाँ तो सब हो गए
2: जी। तो चलिए, गाना प्ले करते नहीं, सुनत रहे रेडियो रिम्फेम 90.4 FM।
1: जी मैडम, धन्यवाद
2: जी।

0: हेलो नमस्ते
1: जी। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: जी मैं कमरान नसीब।
1: हाँ जी, कैसे हैं आप?
0: जी अच्छा हूँ, आप कैसे हैं?
1: मैं भी अच्छी हूँ।
0: बढ़िया है
1: जी, बिल्कुल।
0: मतलब हाल तो बंद था, अभी लगाता हूँ, लग भी गया।
1: तो आज कौन सा इधर का मौसम? तो ठीक है, आप बताइए आपके तरफ से कैसा है?
0: हाँ इधर भी ठीक है, धूप है, हवा चल रहा है हल्का हल्का। खाना वाना हो गया आपका?
1: हाँ हाँ खाना हो गया है। तो कौन सा गाना सुनना है आपको?
0: राखी का कोई अच्छा गाना सुनाइएगा। राखी का कोई अच्छा गाना?
1: जी बिल्कुल बता दीजिए, आप अपने फरमाइश।
0: गाना को ध्यान नहीं आ रहा, देख लीजिएगा। राखी गाना सुने बहुत दिन हो गया
1: जी।
0: ये सुना जाएगा, डेडिकेट सुन लीजिए। डेडिकेट है सबसे पहले आपको और रमन सिद्दीकी और करी मोहम्मद अली राजा दिलीप राम समीर आलम और आयशा भाकर बरजू मुकेश उत्तम सोनी अन्यासी रंजन बाबा रानी हरकुआ सजदा अंसारी बीना सब्बा सिद्दीकी हेना आगरा रोशनी कुमारी के लोग सुन रहे हैं सबके साथ। नमस्कार।
1: नमस्कार, रेडियो में कॉल किए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ओके।

0: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
1: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
2: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67666।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
4: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
5: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
5: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
4: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
6: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
7: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
8: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
7: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
8: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
7: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
8: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
7: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
9: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
10: हेलो
11: हेलो,
10: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
11: जी नमस्ते
10: नमस्ते,
11: हम पचपरा से भोला जी बोलते नहीं।
10: हाँ, क्या हाल चाल बा?
11: ठीक तो बा, रक्षाबंधन के हार्दिक शुभकामनाएं।
10: जी जी, आपको भी रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।
11: जी आज शो तुम्हारा लिट से चालू भइल।
10: कहीं कह जाओ, राखी बावे तो भैया लोग घर पे लेट से पहुँचल है, राखी कौन से ही निकल था।
11: जी जी, आज रक्षाबंधन का गाना बाजी।
10: बता दी कौन सा?
11: बहना ने भाई के कल में प्यार बांधी है, यही गाना को बजाइएगा। आज बाजी नू?
10: हाँ, आज बाजी।
11: जी तो आज बजा देवे, इसे की रक्षाबंधन का गाना ज्यादा फरमाइश आ जाए, रक्षाबंधन का गाना बाजे चाहिए।
10: काल
11: तो काल बाजी तो अच्छा ना लगी, इसे की आज बाजे जाए। जी
10: ठीक बा, और गाना क्यों कितना हो के बाद?
11: अरे रेडियो रिजन के पूरे पूरे सुनने वाला भाई भैया बहन जितना लोग बात सभी को सुनी।
10: तो गाना प्ले करे।
11: जी जी, दम खुशी
10: सुनत रहे रेडियो रिजन 90.4 FM।
11: जी नमस्ते
10: नमस्ते।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
0: थैंक यू। हाँ जी मैडम जी, गाना सुनना है हमको।
1: बता दीजिए कौन सा सॉन्ग।
0: ओ बाबुल प्यारे किरुवे पायल की सरगम। गाना सुनना है।
1: गाना सुनाना भी है।
0: हाँ गाना तो सुनाना है पूरा अपना रेडियो रिमझिम का जितना भी श्रोतागण है जो एफएम सुनते हैं उन सब भाई बहन को सुनाना है, आप सभी स्टाफ लोग को सुनाना है।
1: जी तो गाना प्ले करते हैं।
0: जी जी जी। ये गाना कभी सुनने को मिल जाएगा।
1: आज मिल जाएगा आपको सुनने को।
0: कितना शाम वाला समय में, 5 बजे वाला में?
1: हाँ हाँ 5 बजे वाला में।
0: ठीक है
1: सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।

0: से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करे 94512-11001।
2: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
3: अरे तो उसे डांटती क्यों हो? उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
4: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
5: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
4: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
4: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
9: Now pick it up, pick it up.
10: Hello.
9: Now pick your phone up.
10: Hello.
9: Pick it up, pick it up.
10: Hello.
9: Now pick your phone up.
11: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
12: हेलो।
13: हेलो, नमस्ते।
12: जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
13: कैसी हैं मैम?
12: मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
13: मैं भी अच्छी। हैप्पी रक्षाबंधन।
12: हैप्पी रक्षाबंधन आपको भी।
13: और क्या ना?
12: आपके बाद कट
13: गाना का
12: बता दीजिए, कौन से गाने की फरमाइश है?
13: तो मुझे चाहिए, तो
12: और कौन सी मूवी का है?
13: मूवी बॉलीवुड मूवी है ना, उसी
12: का। अच्छा ठीक है, फिर हम ढूंढ के लगाएंगे, देखेंगे
13: ना। मेरे पास स्टार्टिंग सॉन्ग है ना।
12: हाँ,
13: तो मुझे क्या।
12: अच्छा यही सॉन्ग है जी, समझ गए। हाँ हाँ समझ गए,
13: यही वाला है।
12: अच्छा जी, और गाना सुनाना भी है किसी को?
13: आपको मनोरमा मैम को उनको भी कोई दीजिए मेरे तरफ से। हाँ
12: जी जी, बोल दूंगी। ओके, तो गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
14: बदले तेरे माही लाके जो कोई सारी दुनिया।

0: हेलो मैडम जी।
1: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकिंग 90.4 एफएम में।
0: जी मैडम जी, क्या सुनिए आपका सुल्तानगढ़ जिला कोटा प्रदेश से।
1: हाँ जी, क्या हाल चाल है आपका?
0: बस मैडम जी खाना खा रहे थे तो अभी याद आया तुम्हारे फोन लगाना है मैडम, तो लग भी गया।
1: अच्छा
0: जी जी,
1: तो आज कौन से गाने की फरमाइश है?
0: जी मैडम जी, पिक्चर का नाम है सिर्फ तुम।
1: और
0: गाने के बोल है जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है सनम।
1: और गाना सुनाना भी है किसी को?
0: जी साथी में
1: ओके, तो गाना प्ले करते हैं।
0: आज आएगा कल आएगा? ये
1: आज ही आएगा।
0: ठीक है मैडम जी, धन्यवाद।
1: जी जी, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।

0: तब रामू काका हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
1: ई सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
0: अरे ई सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
1: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
0: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
1: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
2: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
0: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
4: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
5: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
4: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
7: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
8: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
7: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
8: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
7: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमलाराय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
8: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
7: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
8: कॉल नाउ 9056 59536 या 9056 57 902।
9: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
10: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रूम 90.4 FM में। वालेकुम अस्सलाम। हमारे पीछे एक बार हुआ, बताए रहा कैसन मान कहा होता अभी
11: बस
10: ना आज तीन हम लेट से पहुँचने न हम लोग के राखी बांध के रहा हे तो भैया लोग लेट से घरे पहुँचल तो बांध के निकलने हैं तो आई नहीं है तो तुरंत कॉल रिकॉर्ड में लाग गई नहीं है
11: बंद बता
10: राखी बनता गई
11: बाहर बराबर ना सुना
10: आवाजे ना सुनाते हुए गाना कहो तो अभी तो सुनाते ना रहोगे कब कब न मानिए स्टूडियो के अंदर बनो नेटवर्क तनी कम रहला
11: बोल दे व्हाट्सअप नंबर बोल देती तो बनवा लेती हम अपने हस्बैंड जी के मोबाइल से तो दिक्कत ना हो
10: तो बता दी आज कौन सा गाना सुने
11: अच्छा
10: गाना सुना होगी बाकी ओके
11: हाँ
10: चलिए तो गाना प्ले करता नहीं सुना रही रेडियो रंजन 90.4 FM।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 92.4 एफएम में।
1: वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: सुबह से मेहनत करत करत पकड़ लो।
0: अच्छा
1: लास्ट बेरा।
0: चलिए कोनो बात नहीं है।
1: और कैसे हैं आप?
0: हम ठीक हैं, आप कैसे हैं?
1: सर ठीक बा, हम ठीक है बनी। टाइम खत्म हो गए, ज्यादा बात कर ठीक नहीं। हेलो
0: जी, तो बता दी कौन सा गाना सुने
1: परवरदिगारे आलम मौराज है रे रे, इसको सुना दीजिए।
0: और गाना सुनाना भी है
1: जी, आपको सुनाएंगे और पूरे अपने टीम को और यासुद्दीन भाई को। हेलो।
0: हाँ हाँ
1: यही सुनाना है
0: जी। तो गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 92.4 एफएम।
1: हाँ ठीक है सर
0: जी।

0: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9522874088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
2: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
3: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
2: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
3: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 9955497644।
4: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
5: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
6: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहां है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
7: हमारे यहां दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
6: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9847434468 पे।
8: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
9: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
10: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल, सिवान में।
11: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
12: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
13: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
14: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9493045651 या 9707066575।
15: Now pick it up, pick it up.
16: Hello.
15: Now pick your phone up.
16: Hello.
15: Pick it up, pick it up.
16: Hello.
15: Now pick your phone up.
16: Hello.
17: जब फोन घंटे बजती है तो कहते हैं हेलो।
18: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
19: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
2: नमस्कार मैम।
19: नमस्कार,
2: गाना सुनना है, मधुसरिया से राजी कुमार बोल रहे हैं।
19: जी बता दीजिए, कौन सा गाना सुनना है आपको?
2: गाना सुनना है तेरी जवानी बड़ी मस्त।
19: कौन सा सॉन्ग?
2: तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है, गीरा मौसम।
19: हाँ, तो गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।

0: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: हेलो,
0: नाम बता दीजिए अपना।
1: मेरा नाम पूजा कुमारी है।
0: और कहाँ से हैं पूजा जी?
1: चौराहा से।
0: अच्छा जी, तो कैसी हैं?
1: अच्छी हैं, आप कैसी हैं?
0: हम भी अच्छे हैं। बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है आपको?
1: रक्षाबंधन का सॉन्ग सुना दीजिए।
0: गाने की बोल बता दीजिए।
1: कोई भी।
0: और गाना सुनाना भी है किसी को?
1: हाँ सुनाना है।
0: बता दीजिए नाम, बता दीजिए अगर नाम बता।
1: मुनारमा कुमारी, गुंजा कुमारी, नीतीश कुमार, विकास कुमार।
0: ओके, तो गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: ठीक है।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
6: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
7: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
8: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
9: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
10: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
8: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
7: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
8: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
10: कॉल करे 87-894-18744।
11: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया?
10: बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
8: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
10: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोड़, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
12: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
13: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
12: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
8: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
12: संपर्क करें 99393-65923।
14: Now pick it up,
15: hello.
14: Now pick your phone up,
15: hello.
14: Pick it up,
15: hello.
14: Now pick your phone up.
16: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80-29-94-911। जी हाँ, 80-29-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
17: हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रुमझिम 91.4 FM में।
18: हेलो मैडम,
17: नाम बता दो अपना।
18: प्रीति।
17: और कहाँ से हैं आप?
18: कोल्हा मोड़।
17: और कौन सा गाना सुनना है प्रीति जी आपको?
18: रक्षाबंधन का कोई भी सॉन्ग मेरे भाई के लिए।
17: अपने भाइयों का नाम भी बताएंगी?
18: आदित्य राजकुमार और शेखर कुमार और गौतम कुमार
17: जी। और सब ठीक है?
18: हाँ।
17: तो गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए रेडियो रुमझिम 91.4 FM।

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
0: जी हम रमजान
1: जी। जी क्या हाल चाल है आपका? तो कौन सा गाना सुनना है आपको?
0: सुनवा दीजिए, चीता मूवी का गाना सुनवा दीजिए। ओम मिठुन का मूवी है।
1: और गाने की बोल?
0: गाने का बोल ये वाला है, ये कुड़ी मेरा दिल ले गई, कुमार सानू और यार विक्की हमारी।
1: और गाना सुनाना भी है किसी को?
0: जी आपको, और हम भी सुनेंगे, हमारे दोस्त लोग भी सुनेंगे, ये प्रोग्राम जो सभी सुन रहे सभी सुनेंगे।
1: जी जी बिल्कुल। तो गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4 FM।

0: एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
3: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
2: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
3: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
2: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
4: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
5: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
3: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
2: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
3: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
3: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
3: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
2: कॉल करें 7070-7563-100 या 7070-7542-100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
7: नन्ना मुन्ना लाही हूं, देश का सिपाही हूं।
8: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
7: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
8: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
7: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
9: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
10: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
9: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
10: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
9: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
10: जानकारी है तो कॉल करें 6205-62112 पे।
3: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
2: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
3: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HFD लक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
2: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
3: या अभी कॉल कीजिए 9289-22567 या 9797-14-86164।
11: प्रसाद क्लिनिक,
12: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
11: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
12: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
13: धर्म और अधर्म की सबसे बड़ी लड़ाई एक गाथा जो हजारों सालों से दिलों में जीवित है, महाभारत। पांडवों और कौरवों के बीच संघर्ष, रिश्तों की उलझने और जीवन के सबसे कठिन सवाल, महाभारत की कथा हमें सिखाती है कि सही रास्ता चुनना आसान नहीं होता। कभी अर्जुन के शस्त्र उठाने के पहले की दुविधा, तो कभी श्री कृष्ण के गीता का उपदेश, हर मोड़ पे नए प्रश्न और उनके जवाब, धर्म, युद्ध और जीवन के असली अर्थ की खोज। सुनना ना भूलें हर शुक्रवार शाम 7 बजे से रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर। सुनो दिल से।
14: Now pick it up,
15: hello.
14: Now pick your phone up,
15: hello.
14: Pick it up,
15: hello.
14: Now pick your phone up,
15: hello.
16: Jab phone ki ghanti bajti hai to kehte hain hello.
17: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
18: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है
19: रक्षाबंधन के हार्दिक शुभकामना पूरे टीम के लिए। मैं धनेश कुमार मिश्रा दिल्ली।
18: आपको भी रक्षाबंधन के हार्दिक शुभकामनाएं।
19: और नहीं, आज बहुत लेट
18: ही पहुँचे आज। अच्छा, तो राखी मना लिए?
19: कहाँ, हमारी कहाँ वैसा नसीब है
18: जी। मानते हैं आपको,
19: कोई बात नहीं, अगर जिंदगी रहे तो अगले बार भेजना
18: जी। बिल्कुल,
19: जिंदगी रही तो अगले बार जरूर भेजना, ऐसी बात नहीं है
18: जी। बिल्कुल भेजेंगे, ऐसा थोड़ी।
19: क्योंकि आज के दिन बहुत बुरा लगता है, क्या करें। अगर है भी तो किसी का वो नहीं है, शौक श्रद्धा नहीं है। आजकल डिजिटल जमाना है, आजकल कोई सोचने वाली बात है। इंसान जो चाहे वो कर सकता है
18: जी, बिल्कुल कर सकता है।
19: आप गए थे कहीं कि नहीं?
18: नहीं, भैया लोग खुद ही घर पे हैं, आए हुए।
19: मनोरमा जी तो गई है दूसरे जगह,
18: शायद गई है। बोले आइएगा कि नहीं, तो कह रहे हैं देखिए आते हैं या नहीं। तो आज कौन सा गाना?
19: आज क्या कहें, हम तो गाना भूल ही गए। आज लगा कि फोन ही नहीं लगेगा, मैं तो ट्राई किया, देखिए कौन सी गाना दिया जाए, याद ही नहीं आ रहा है। आज अपने पसंद से हम जैसे सुनते हैं वैसे, पसंद हमारी रहेगी, फरमाइश हमारी रहेगी, पसंद आती रहेगी।
18: अच्छा,
19: क्योंकि आज दिमाग पर नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं ट्राई किया हूँ, ट्राई किया और लग गया इसलिए।
18: चलिए
19: फिर पिछले मेरा रिकॉर्डिंग बाकी है ना, आज रक्षाबंधन की जो दिया था।
18: मेरे पास तो सारा कॉल बच गया है, एक कॉल बचा हुआ था, वो भी देखना पड़ेगा।
19: तो अगर रक्षाबंधन की नहीं होता तो रक्षाबंधन के ही देते,
18: तो अभी दे दीजिए। पता नहीं, उसको ढूंढना पड़ेगा, लेकिन आज अभी वाला देंगे तो मतलब ये तो तुरंत ही बच जाएगा। आज का सबका बजाना है।
19: तो आज अगर वो होगा तो

0: हेलो, सलाम
1: वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत स्वागत है आप रेडियो रिंगो 90.4 एफएम में।
0: जी मैम, कैसे हैं?
1: मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: जी हाँ भैया, अच्छा लगता है आपका तबीयत सही हो गया।
1: हाँ हाँ सही हो गया।
0: आज बहुत लेट से सोए पाठ हुआ।
1: हम भी अपने घर पे थे, भैया लोग थोड़ा लेट से पहुँचे तो राखी बांधने में टाइम लग गया।
0: जी मैम, आपको आपकी पर्व हार्दिक मुबारक हो आपको।
1: जी आपको रक्षाबंधन की शुभकामनाएं।
0: मैम तो ये कब तक चलेगा रिकॉर्डिंग?
1: अभी तो 12:30 बजे तक चलाऊंगे।
0: अच्छा तो आधा एक घंटा।
1: हाँ बताइए।
0: जी गाने का बोल है, दिल लगाने जितने बेरे।
1: कौन सा?
0: दिल लगाने जितने बेरे कहीं गाना का कुछ।
1: किसका है ये बता सकते हैं?
0: उदित नारायण का आवाज है और पवन सिंह का मूवी का सॉन्ग है।
1: अच्छा मूवी पता है कौन सा है?
0: हाँ मूवी का नाम है दुल्हन कहीं है, कुछ दुल्हन डोली करके कहीं कुछ है। अच्छा तो नाम याद नहीं है लेकिन गाना का नाम याद है। वैसे तो हम भोजपुरी फरमाते नहीं है लेकिन आज सोचे कि भोजपुरी सुन ले, हमेशा तो हिंदी सुनते हैं।
1: कोई बात नहीं, कभी कभी सुन लेना चाहिए।
0: जी मैम,
1: और गाना सुनाना भी है किसी को?
0: जी आपको, रेडियो दो सभी को, सभी आदमियों को। जी मैम तो ये दूसरा कॉल है ना मेरा?
1: हाँ दूसरा कॉल है।
0: देखते मैं अंदाज से बता भी दिए कि दूसरा कॉल है। जी मैम तो आज तो चलेगा ही?
1: हाँ चलेगा।
0: चलिए एक नंबर बजाइएगा तो अच्छा लगेगा।
1: जी
0: एक नंबर में कॉल तो नहीं लग पाया, बच जाएगा तो।

0: और ही अच्छा लगेगा।
1: कोशिश
0: कीजिएगा क्योंकि बहुत दिन हो गया मेरा पास में बजा हुआ। चलिए मैम, तो और भी लोग हैं इसलिए पहले से धन्यवाद देते हैं गाने के लिए।
1: ओके, तो फिर गाना प्ले करेंगे, सुनते रहिए रेडियो टेंशन 90.4 FM।
0: ओके मैम, बाय बाय।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
2: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनो फेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
4: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
2: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
4: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
2: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
4: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
2: संपर्क करें 8470103092 या 9765665750।
5: रैप का फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
6: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
7: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
6: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8211 87952। नियम और शर्तें लागू।
8: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
9: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
8: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
9: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
8: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
2: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
4: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
2: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रूपए और एक्सट्री 125R 110,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
4: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
2: या अभी कॉल कीजिए 9289922567 या 9797146164।
10: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए। आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है। यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 41 51 51 पे।
11: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
12: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
13: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
14: हेलो जी, नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
15: हम थाना से बोलते हैं, रामाज प्रसाद।
14: हाँ जी, का हाल चाल बा?
15: हाल चाल ठीक बा। बाहर लेट से कॉल उठा था।
14: ना ना, तो अभी शुरू है, कोई नहीं आ रहा, पहले के कॉल हो। हम आज लेट
15: से। हाँ, तो बताओ तो हमारा तो जैसे मशीन खराब लगा हमारा।
14: ना ना, ऐसा कोई बात नहीं है।
15: गाना सुना दी?
14: बता दी।
15: तो राष्ट्रबंधन आज बोल रहे गाना आज नहीं बना।
14: बता दी, सुना दी हल जाइए आज। हुए
15: रखिया सुना दी, रखिया बन रहा भैया सावन आये।
14: गाना सुना
15: आये भलो, हमारे बेटी लो विमल कुमारी, नीलम कुमारी, नीतू कुमारी, अंकल धावी बारी, अनुराधा देवी, ये लोग सुना जी।
14: जी चले ठीक बात। गाना प्ले करता नहीं, सुनत रही रेडियो रंजीत 90.4 एफएम।
15: नमस्ते।
14: नमस्ते।
15: लेकिन गाना आज सुना, गाना चल जाये तो फिर सुनना पाए।
14: ना आज ही सुनाये, जब चले ना 5-7 में वही जरा बाजू।
15: ठीक बात।
14: नमस्ते।
16: रखिया

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रमजन 90.4 FM में।
0: आपको भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे तरफ से। हैप्पी रक्षाबंधन।
1: हैप्पी रक्षाबंधन आपको भी
0: और पूरा टीम को।
1: जी जी बिल्कुल।
0: तब आज रक्षाबंधन का सॉन्ग चला दीजिएगा मैम।
1: तो सॉन्ग बता दीजिए कौन सा?
0: तिरंगा पिक्चर का।
1: अच्छा, और गाना किसी को सुनाना है?
0: जितने रेडियो दोस्त सुन रहे हैं, भाई बहनों, उन सभी लोगों के साथ में सुनना चाह रहा हूँ।
1: जी, तो गाना प्ले करते हैं।
0: थैंक यू मैम।
1: सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4 FM।

0: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029994911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाज़त। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
2: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
3: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545-67666।
4: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
5: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
6: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
7: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
6: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
8: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
9: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
10: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
11: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
12: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
11: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
12: पता, जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। सुनिए सुनिए सुनिए,
4: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
3: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
4: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
3: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
2: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
2: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
3: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
5: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
6: एपिसोड नंबर 45, 4-5।

श्री रामचंद्र के ब्रह्म होने के संबंध में पूछे गए पार्वती के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान शिव उनकी इस शंका को लोक कल्याणकारी बताते हैं। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी उनके श्रवण रंध्र सांप के बिल के समान हैं। जिन्होंने संतों के दर्शन नहीं किए उनकी आंखें मोर पंख पर बनी आंख की नकली आकृतियों के समान हैं। जिसके हृदय में भगवत भक्ति नहीं वो प्राणी मृतक के समान है। जिस जिह्वा से श्री राम का गुणगान नहीं हुआ वो मेढक की जीभ के समान है। वो हृदय वज्र के समान कठोर होता है जो प्रभु चरित का गान सुनकर हर्षित नहीं होता। इन उक्तियों के साथ भगवान शिव ने पार्वती को राम कथा सुनाना आरंभ किया। गिरिराज किशोरी आदर पूर्वक श्रद्धानत हो पति के वचन सुनने लगी।

0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
2: तो रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
3: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
2: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
3: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
2: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
3: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से ले आया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
4: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
2: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड गोपालगंज।
0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
5: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
1: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
1: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
1: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
1: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
6: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98 523 52 599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 39 51 51 पे।

पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने श्री राम अवतार की कथा सुनाते हुए ब्रह्म के निर्गुण तथा सगुण रूपों की व्याख्या की। जो निर्गुण अर्थात अरूप, अव्यक्त और अर्जन्मा है, वही भक्तों के प्रेमवश सगुण हो जाता है। जिस प्रकार जल और ओले में कोई भेद नहीं, दोनों जल के ही रूप हैं, उसी प्रकार सगुण और निर्गुण भी तत्वतः एक ही हैं। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को समझ पाने में असमर्थ होता है, इसी कारण वो प्रकाश पुंज पुराण पुरुष श्री रामचंद्र पर एक मानव की भांति मोह के आवरण में लिपटे होने का आरोप लगाता है।

0: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
1: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
2: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67 666।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
5: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
4: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
5: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
4: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554 97644।

0: बाबू ए बाबू सुन तार आज तोहर बहनी आवतिया राखी बांधे ओकरा के कुछ देवे के इंतजाम कैले बड़ा
1: ई बूढ़ी के तो खाली लागा रहला देवे के देवे के देवे के सब तो दे दिलू आपका घरों में बेच के दे दही ए जी रौरा।

0: संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 12 वर्ष पूरे होने पर पीएम मोदी ने कहा, इस योजना ने लोगों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद बिहार में बाढ़ का खतरा फिलहाल टला। जल संसाधन विभाग गंडक नदी के जलस्तर पर लगातार नजर बनाए हुए है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मीठापुर करबीगहिया और मीठापुर महुली फ्लाईओवर का लोकार्पण किया। और भाई बहनों के अटूट स्नेह और विश्वास का त्योहार रक्षाबंधन हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 साल पूरे हो गए हैं। इस योजना के तहत अब तक बैंकों में 3,17,000 करोड़ रुपए की राशि जमा की गई है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में आज ही के दिन किया था। योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। ये योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग पहुँच को सुलभ बना रही है। योजना के तहत महिलाओं के लगभग 56% खातों सहित 78% खाते ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: इधर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस महत्वपूर्ण योजना के 12 साल पूरे होने पर कहा कि इस योजना ने आर्थिक सशक्तिकरण को जन जन का अधिकार बनाया है। श्री चौधरी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि इस योजना ने आत्मनिर्भर भारत की नींव को और मजबूत किया है। नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद बिहार में बाढ़ का खतरा फिलहाल टल गया है। गंडक नदी के जलस्तर में लगातार गिरावट आ रही है। वाल्मीकि नगर बैराज पर गंडक नदी का जलस्तर आज शाम 7 बजे 97,500 क्यूसेक दर्ज किया गया। उप मुख्यमंत्री सह जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि नदी का प्रवाह फिलहाल सामान्य है। उन्होंने कहा कि गंडक नदी में पहुंचने से पहले भोटे कोशी, त्रिशूली और नारायणी नदियों से गुजरते हुए जलस्तर कम हो गया है।
2: ग्लेशियर फटने से नेपाल तबाही हुई है। हम लोगों के बिहार में जो बड़ा जो है गंडक पुरा वाल्मीकि नगर का जो भारत नेपाल के सीमा

0: से लगभग 250-300 किलोमीटर ऊपर। एक तो उसका प्रभाव नीचे आते आते जो कम होता है उसका भी फायदा मिला, और दूसरी बात थी कि गंडक नदी के पूरे प्रवाह अभी जल स्तर भी ऊंचा नहीं था बल्कि सामान्य से भी थोड़ा कम, इसलिए जो भी पानी संभावित था या जो आया उससे बहुत ज्यादा भयावह स्थिति नहीं बनी।
1: इधर राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने नेपाल में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए बिहार लोक भवन में आज आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉक्टर उदयकांत मिश्रा और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने राज्यपाल को बताया कि विभाग किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। नेपाल तिब्बत में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। सीमा के दोनों तरफ 1545 लोग अभी भी लापता हैं। इधर भारत ने बड़े पैमाने पर बचाव अभियान शुरू किया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से बचाए गए 21 भारतीय आज दिल्ली पहुंच गए हैं। वहीं त्रिशूली वन जल विद्युत परियोजना के 63 कर्मचारियों को भी बचा लिया गया है।
2: भोटे कोशी नदी प्रणाली के स्रोत के पास नई झील बन गई है। इसके टूटने से पानी के एक और तेज बहाव की आशंका है, इससे बचाव कार्यों में बाधा आ सकती है। इस बीच आज चीन के सिचुआन प्रांत में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद नेपाल में बाढ़ की नई चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों ने त्रिशूली क्षेत्र में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का आदेश दिया है। नेपाल पुलिस ने बताया कि तिब्बत की ओर स्थित एक बांध फिर टूट गया है, वहां के निवासियों और सुरक्षा कर्मियों से सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में फंसे 290 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। उनका पता लगाने और सुरक्षित निकालने के प्रयास जारी हैं। खोज और बचाव कार्यों में सहायता के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात कर उन्हें सहायता का आश्वासन दिया। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: नेपाल में नारायणी नदी का जलस्तर बढ़ने और गंडक नदी में संभावित जल वृद्धि को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने पश्चिम चंपारण में बाढ़ से निपटने की तैयारियों को तेज कर दिया है। आपदा प्रबंधन मंत्री रत्नेश सदा ने आज बेतिया में इस संबंध में प्रशासन के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज मीठापुर करबीगहिया और मीठापुर महुली फ्लाईओवर का लोकार्पण किया। इसके बाद दोनों फ्लाईओवर पर वाहनों का परिचालन शुरू हो गया है। इन फ्लाईओवर के चालू होने से मीठापुर करबीगहिया सिपारा और न्यू बाईपास मार्ग पर लगने वाले जाम से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही करबीगहिया और मीठापुर क्षेत्र में यातायात का दबाव भी कम होगा। विधानसभा अध्यक्ष डॉ प्रेम कुमार की अध्यक्षता में उद्यान प्रमंडल और भवन निर्माण विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में बिहार विधानसभा प्रांगण में निर्माणाधीन संग्रहालय के निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। महाराष्ट्र के नासिक से 450 टन से अधिक प्याज लेकर पहली कांदा एक्सप्रेस आज सुबह दिल्ली पहुंची। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों में नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू की है। मंत्रालय ने बताया कि बिहार के पटना सहित देश के अलग अलग भागों के प्रमुख उपभोग केंद्रों तक प्याज की आपूर्ति की जा रही है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी मिलों से बाहर चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। भाई बहन के स्नेह का त्योहार रक्षाबंधन आज देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस पर्व पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनके अच्छे स्वास्थ्य तथा खुशहाली की कामना कर रही हैं। वहीं भाई अपनी बहनों की सुरक्षा और उन्हें सहयोग का संकल्प ले रहे हैं। राज्य के विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं ने जानकारी दी है कि रक्षाबंधन के अवसर पर बहनों ने पूजा की थाली सजाकर उसमें रोली, अक्षत, दीपक, मिठाई और राखी रखी। इसके बाद भाई के माथे पर तिलक लगाकर आरती उतारी और कलाई पर राखी बांधी। भाइयों ने बहनों को मिठाई खिलाकर उपहार दिए और उनकी रक्षा का वचन दिया। इस अवसर पर परिवार के लोगों ने एक साथ मिलकर खुशियां साझा की। रक्षाबंधन को लेकर बाजारों में भी काफी रौनक देखी गई। विभिन्न दुकानों पर आकर्षक और रंग बिरंगी राखियों की खूब बिक्री हुई है। रक्षाबंधन के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को बधाई दी है। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन हमें याद दिलाता है कि जीवन में हर रिश्ते की नींव विश्वास, संवेदनशीलता और आपसी सहयोग पर टिकी होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर कामना करते हुए कहा कि प्यार, स्नेह और आपसी भरोसे का बंधन हमेशा मजबूत और अटूट बना रहे। वहीं राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने अपने संदेश में कहा कि इस अवसर पर हमें महिलाओं के लिए गरिमापूर्ण और सम्मानजनक वातावरण के निर्माण का संकल्प लेना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने इस अवसर पर सभी को हार्दिक बधाई दी है।
1: रक्षाबंधन के पावन अवसर पर देशवासियों को, विशेषकर सभी माताओं, बहनों और बेटियों को हार्दिक बधाई शुभकामना देता हूँ। रक्षाबंधन भाई बहन का टूट प्रेम, स्नेह, विश्वास और संकल्प का पवित्र पर्व है। यह पर्व हमें महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण के प्रति अपने दायित्वों को निभाने की प्रेरणा देता है। आइए इस पावन अवसर पर हम सभी बहनों और बेटियों के सम्मान, सुरक्षा एवं उज्ज्वल भविष्य के लिए संकल्प लें।
0: विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने भी इस पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रक्षाबंधन पर प्रदेशवासियों को शुभकामना देते हुए कहा कि सभी बहनों के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और खुशियां सदैव बनी रहें। जदयू, राजद और राष्ट्रीय लोक मोर्चा सहित अन्य दलों ने भी रक्षाबंधन पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने रक्षाबंधन पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पर्व हमें महिलाओं को सशक्त बनाने का एक सुअवसर प्रदान करता है।
2: मैं आज एक बार फिर से पुनः, क्योंकि इस बार नई जिम्मेदारियों के साथ हूँ, बहनों के आशीर्वाद ने मुझे इतना मजबूत किया है कि आज मैं उस जगह पे हूँ जहाँ सही मायनों में मेरी बिहार की बहनें, देश भर की बहनों की रक्षा के लिए हर उस कदम को उठाने में सक्षम हूँ जो करने जरूरी है। ऐसे में पुनः बस ये विश्वास दिलाता हूँ बहनों को कि न सिर्फ उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी बल्कि वो सशक्त हों, संपन्न हों, समृद्धि की ओर सारे परिवार को लेकर आगे बढ़ने का काम करें, उसमें इस भाई का ढेर सारा आशीर्वाद, स्नेह, प्यार।
0: रक्षाबंधन के अवसर पर पटना के राजधानी वाटिका में राज्य स्तरीय वृक्ष सुरक्षा दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पेड़ को राखी बांधकर पर्यावरण संरक्षण और पेड़ों की सुरक्षा का संदेश दिया। उन्होंने लोगों से अधिक पेड़ लगाने और उनकी देखभाल करने की अपील की। इधर पटना के बेऊर आदर्श केंद्रीय कारा और मुजफ्फरपुर के खुदीराम बोस केंद्रीय कारा सहित अन्य जेलों में बंद कैदियों की बहनों ने जेल में राखी बांधी। प्रदेश में कम दबाव के प्रभाव से रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के गया, किशनगंज और बक्सर जिले के कुछ स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई। वहीं प्रदेश के अन्य भागों में हल्की से मध्यम वर्षा हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अनेक स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।
3: दिनांक 29 अगस्त को राज्य के उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों के अनेक स्थानों पर जबकि शेष भागों के कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में अनेक स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात होने के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के बांका, बेगूसराय, गोपालगंज, सीतामढ़ी एवं पश्चिमी चंपारण जिलों में अनेक स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है।
0: कटिहार पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत चोरी या गुम हुए 86 मोबाइल फोन बरामद कर उनके असली धारकों को सौंप दिया है। कटिहार, सीवान, सीतामढ़ी, भागलपुर, शेखपुरा, अररिया, किशनगंज और मधुबनी में महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा के लिए अभिया ब्रिगेड की पुलिस दीदियों ने स्कूटर से फ्लैग मार्च निकाला। सहरसा और रोहतास में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जीविका सुधा बिक्री केंद्र का शुभारंभ किया गया। किशनगंज जिले के सुखानी थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग 327 ई पर ट्रक और कार की भीषण टक्कर में कार सवार दो लोगों की मौत हो गई जबकि दो अन्य घायल हो गए। वहीं सुपौल थाना क्षेत्र के राम विष्णुपुर में NH-27 पर सड़क दुर्घटना में एक महिला की मौत हो गई जबकि तीन अन्य घायल हो गए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 12 वर्ष पूरे होने पर पीएम मोदी ने कहा, इस योजना ने लोगों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद बिहार में बाढ़ का खतरा फिलहाल टला। जल संसाधन विभाग गंडक नदी के जलस्तर पर लगातार नजर बनाए हुए है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मीठापुर करबीगहिया और मीठापुर महुली फ्लाईओवर का लोकार्पण किया। और भाई बहनों के अटूट स्नेह और विश्वास का त्योहार रक्षाबंधन हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
0: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
4: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
5: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
6: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
7: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
6: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
7: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।

0: मुस्कान के माई, ए मुस्कान के माई, अरे केने बाड़ू हो? अरे सब तैयारी हो गई बा,
1: सब तैयारी हो गई बा, अभी बबुआ नहीं खे आई।
0: बबुआ नहीं खे आई ना? ए बबी।
2: हाँ पापा।
0: भैया केने बा, फोन करो ओकरा के बुलाओ।
2: ठीक बा। हेलो भैया, कहाँ बड़ा तू? अभी लेना आईला, घरे सब कुछ तार इंतजार करता।
3: बस बस पहुँचते वाली, तहरा खातिर एगो गिफ्ट लेता नी।
2: गिफ्ट में का लेता रह?
3: ऐसन चीज लेता नी नू कि तो के पहिनबू त एकदम दुल्हन लग। हमर बहिन
2: ठीक बा, जल्दी आवा, हम जाते तैयार होके।

0: रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटते क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
2: सुनिए सुनिए सुनिए,
4: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
4: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
5: धर्म और अधर्म की सबसे बड़ी लड़ाई एक गाथा जो हजारों सालों से दिलों में जीवित है, महाभारत। पांडवों और कौरवों के बीच संघर्ष, रिश्तों की उलझने और जीवन के सबसे कठिन सवाल, महाभारत की कथा हमें सिखाती है कि सही रास्ता चुनना आसान नहीं होता। कभी अर्जुन के शस्त्र उठाने के पहले की दुविधा, तो कभी श्री कृष्ण के गीता का उपदेश, हर मोड़ पे नए प्रश्न और उनके जवाब, धर्म, युद्ध और जीवन के असली अर्थ की खोज। सुनना ना भूलें हर शुक्रवार शाम 7 बजे से रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर। सुनो दिल से।
6: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे

0: माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज प्रोपराइटर सोनू जी संपर्क करें 99399-66999।
1: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
2: ओ माय गॉड आज फिर से भूल गई।
1: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
2: सॉरी यार कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
3: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
2: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
3: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
2: याद रहे शादी विवाह जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
3: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
4: अरे वाह इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
5: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
4: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM सुन रहे हैं आप। समय हो चुका है आज के रोजगार समाचार का, आइए सुनते हैं आज का अंक।
6: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। फालता विशेष आर्थिक क्षेत्र, फालता स्पेशल इकोनॉमिक जोन में इन पदों को भरे जाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। वाणिज्य विभाग की ओर से पदों के नाम हैं सहायक विकास आयुक्त, अनुभाग अधिकारी लेखा, कनिष्ठ आशुलिपिक, आशुलिपिक ग्रेड 3 और कनिष्ठ हिंदी अनुवादक। विस्तृत रिक्ति परिपत्र के लिए देखिए वेबसाइट www.fsez.gov.in। इसी वेबसाइट पर आपको शैक्षणिक योग्यता, वेतन, आरक्षण और तैनाती के स्थान संबंधी आवश्यक जानकारियां भी मिल जाएंगी। वस्तु एवं सेवा कर परिषद में सलाहकार ग्रेड 1 का एक पद रिक्त है। इसे भरने के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। विस्तृत जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं वस्तु एवं सेवा कर परिषद यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल की वेबसाइट से। वेबसाइट है www.gstcouncil.gov.in। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान मंगलागिरी आंध्र प्रदेश में इन पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। प्रोफेसर, अतिरिक्त प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर। प्रोफेसर के कुल 17 पद उपलब्ध हैं, जबकि अतिरिक्त प्रोफेसर के 11, एसोसिएट प्रोफेसर के 14 तथा असिस्टेंट प्रोफेसर के 37 पद रिक्त हैं। जिन विभागों में ये नियुक्तियां की जानी हैं उन विभागों के नाम हैं एनेस्थीसिया, बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी, कार्डियोलॉजी, कार्डियो थोरेसिक एंड वैस्कुलर सर्जरी, डर्मेटोलॉजी, एंडोक्रेनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म, गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी, जनरल मेडिसिन, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, मेडिकल हेमेटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, नियोनेटोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, न्यूक्लियर मेडिसिन, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी, पीडियाट्रिक सर्जरी, पीडियाट्रिक्स पैथोलॉजी, फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन, फिजियोलॉजी, पल्मोनरी मेडिसिन, मनोचिकित्सा, रेडियोलॉजी, रेडियोथेरेपी, रोमेटोलॉजी एंड क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी, सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, सर्जिकल ऑंकोलॉजी।

0: ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन और ब्लड बैंक, ट्रॉमा और इमरजेंसी मेडिसिन तथा यूरोलॉजी। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट faculty@aims.mangalagiri.edu.in। आवेदन का ऑनलाइन पंजीकरण संस्थान की इस वेबसाइट पर उपलब्ध होगा www.aimsmangalagiri.edu.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
2: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
3: भरोसे वाले से लेंगे,
2: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
3: और कीमत भी।
2: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
4: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
5: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
6: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
7: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
6: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
8: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
6: कॉल करें 85070-32042 पे।
9: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
10: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
9: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
10: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
9: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
6: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
11: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
6: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
11: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
6: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
11: जानकारी है तो कॉल करें 62052-62112 पे।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: हेलो
2: हेलो बहनी।
1: प्रणाम भैया।
2: खुश रह खुश रह, कैसन हाल चाल हो?
1: ठीक है भैया।
2: अरे घबरा कह रानी?
1: नहीं भैया, कहिया आइबो?
2: आगे पगली, यह रक्षाबंधन में अब। और सुनही ने, जो मोटरसाइकिलवा पहुना मंगलखिन ने उहो ले लेब, चैनमो ले लेब, जे जे डिमांड है सब पूरा कर देवे।
1: ठीक है भैया।
2: रोबो ही कहले, मेहमान हो जे अखुन तो दे फोन मा।
1: अच्छा ला।
2: हेलो मेहमान।
3: हेलो। हाँ,
2: अब की हम जे जे के छलिए मेहमान सब ही रक्षाबंधन में लेके अब, बाकी हमार बहनी के अच्छा से रखवाल।
3: बहनिया तो पानी में हो, और हमार जल से मोटरसाइकिलवा और सब कुछ लेके ही है, नहीं तो अपन बहन के ले जा।
2: नहीं नहीं मेहमान, ऐसा मत कहो, हम सब कुछ लेके अबे। तू तो जानिए रहलो कि बचपने में हमार माय बाप गुजर गए, बड़ी दुलार प्यार से पललिए मेहमान। हमार बहनी के कोई दिक्कत नहीं होबे के चाहिए, हम सब रक्षाबंधन पर लेके अबे।

0: प्रसाद क्लिनिक।
1: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
0: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
1: बाकी दिन जादवपुर बाजार।

0: उड़ान में डॉक्टरों, पैरामेडिक्स और टनल रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए रेकी टीम के 11 सदस्य भी शामिल हैं। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। 1545 लोग अब भी लापता हैं। राहत और बचाव दल लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं। दक्षिण पश्चिम चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद बाढ़ की आशंका फिर बढ़ गई है। अधिकारियों ने प्रभावित जिलों से 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। भोटे कोशी नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण त्रिशूली क्षेत्र के निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का आदेश दिया गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नेपाल से सुरक्षित वापस आए तमिलनाडु के 21 तीर्थयात्रियों से मुलाकात की। ये तीर्थयात्री कल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से काठमांडू पहुंचे थे और आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। डॉ जयशंकर ने नेपाली सेना और सरकार को इसके लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने नेपाल के विदेश मंत्री से बात की और हर संभव सहायता देने की पेशकश की।
1: They told me about exactly what happened to them, how the floods came.
2: उन्होंने मुझे बताया कि उनके साथ असल में क्या हुआ था और बाढ़ कैसे आई थी। वे बहुत आभारी हैं, खासकर नेपाल सेना के, जिन्होंने उस बेहद मुश्किल जगह से निकालने के लिए इतना बड़ा प्रयास किया। इसलिए अभी हमारा प्रयास लोगों की राहत और बचाव कार्यों में नेपाल की मदद करने का है। आज सुबह ही मैंने नेपाल के विदेश मंत्री से बात की है। हमने उन्हें कई तरह की सहायता की पेशकश भी की है।
1: We have given them range of support offers.
0: सिक्किम सरकार नेपाल में बाढ़ की स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार वहां फंसे सिक्किम निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समुचित कदम उठा रही है।
3: सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तवांगोले ने सिक्किम के 8 निवासियों से फोन पर बात की। जानकारी मिली है कि सभी 8 लोग सुरक्षित हैं। फंसे हुए सिक्किम का निवासियों के लिए सिक्किम सरकार ने कल नेपाल फ्लैश फ्लड टास्क फोर्स का गठन किया है। टास्क फोर्स को स्थिति से प्रभावित सिक्किम के नागरिकों के लिए आवश्यक सहायता के समग्र समन्वय, निगरानी और सुविधा प्रदान करने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। टास्क फोर्स भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के साथ नियमित समन्वय बनाए हुए है और संबंधित सिक्किम निवासियों तथा उनका परिवारों के साथ भी लगातार संपर्क में। मोइनक चटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है। कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है। आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला? मुझे तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, डीबीटी सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
5: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। एक रिपोर्ट।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में आज ही के दिन किया था। योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। ये योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग पहुँच को बना रही है। योजना के तहत महिलाओं के लगभग 56% खातों सहित 78% खाते ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत करेंगे।
7: भारत और उज्बेकिस्तान ने 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। तब से द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं। प्रधानमंत्री की आगामी यात्रा भारत और उज्बेकिस्तान के बीच करीबी, बहुआयामी और बढ़ते राजनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देगी। चर्चा के दौरान आपसी सहयोग के कई इलाकों को शामिल किए जाने और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के नए रास्ते तलाशने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं।
7: पाक्षिक कोटा के अंतर्गत चीनी मिलों को आवंटित मात्रा से कम 40% चीनी पहले सप्ताह में और शेष मात्रा अगले सप्ताह में बेचनी होगी। मंत्रालय के अनुसार नए सीजन के लिए गन्ने की पेराई 15 अक्टूबर से शुरू होगी। अक्टूबर महीने के दौरान 10 लाख टन से अधिक चीनी उत्पादन होने की उम्मीद है। सरकार ने चीनी मिलों को अक्टूबर में उत्पादित चीनी को बिना किसी प्रतिबंध के बेचने की भी अनुमति दी है, जिससे नए सीजन का उत्पादन जल्द से जल्द घरेलू बाजार में उपलब्ध हो सके। नवंबर में चीनी का उत्पादन लगभग 45 लाख टन रहने की उम्मीद है, जिससे घरेलू खपत के लिए चीनी की अतिरिक्त आपूर्ति में पर्याप्त वृद्धि होगी। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के किसानों को आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार उनके हितों से कोई समझौता नहीं करेगी और किसी भी देश के साथ किए गए हर समझौते में किसानों के हितों को सर्वोपरि रखा जाएगा। अमृतसर जिले के बाबा बकाला में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी समेत विपक्षी दल ये झूठा प्रचार कर रहे हैं कि केंद्र सरकार किसानों के हितों के खिलाफ समझौते कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। कृषि मंत्री ने विशेष रूप से पंजाब सरकार को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू न करने के लिए जिम्मेदार ठहराया।
8: भारत सरकार ने जो योजना बनाई किसानों की आमदनी बढ़ाने की, आय बढ़ाने की, हम पंजाब में भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपकी भ्रष्ट सरकार के कारण हमारी कोशिशें सफल नहीं हो रही। पंजाब के कृषि के लिए एक नया रोड मैप टॉप के साइंटिस्टों की टीम बनाएगी। हम पंजाब की कृषि की दशा बदलेंगे, दिशा बदलेंगे और किसान की हालत बदलेंगे।
0: परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्चस्तरीय कार्यबल ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों सहित सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। सुझाव 13 सितंबर तक वेबसाइट, व्हाट्सएप या फोन नंबर 1800184747 के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव ईमेल examreformstaskforce@dopt.gov.in के माध्यम से भी भेजे जा सकते हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
9: परीक्षा के संचालन, सुरक्षा, जवाबदेही और संस्थागत व्यवस्थाओं के अलावा परीक्षा में अनुचित साधनों का पता लगाने, रोकथाम करने और उनके समाधान सहित अन्य संबंधित क्षेत्रों के बारे में सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। कार्यबल संस्थागत प्रणालियों और प्रक्रियाओं को मजबूत करने, परीक्षा की निष्पक्षता, उपयुक्त तकनीकों को लागू करने और विद्यार्थियों के हितों की रक्षा करने के उपायों की जाँच कर रहा है। इसका उद्देश्य मजबूत, सुरक्षित, पारदर्शी, संगत और भविष्य के लिए तैयार सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली विकसित करना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित परीक्षाओं सहित सार्वजनिक परीक्षाओं के सुगम संचालन और प्रशासन से संबंधित व्यापक सुधारों की जांच के लिए प्रसिद्ध प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन निलेकणी की अध्यक्षता में कार्यबल का गठन किया गया है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा।
0: इस बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट 2026 की 84 विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। उत्तर कुंजी ugcnet.nta.nic.in पर उपलब्ध है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस मालदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में इस महीने 60 नवजात शिशुओं की मौत की खबर पर जारी किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश में बलिया जिले के सरकारी स्कूल में पिछले 2 वर्षों से 6 से 8 कक्षा के विद्यार्थियों को दोपहर का भोजन नहीं परोसे जाने के मामले में मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। आयोग ने संज्ञान लेते हुए 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
10: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। देश में इस वर्ष जुलाई में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP द्वारा मापी गई औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर वार्षिक आधार पर 6.7% रही। इन आंकड़ों से संकेत मिलता है कि इस दौरान औद्योगिक गतिविधियों में अच्छी गति से वृद्धि जारी रही। हालांकि इस अवधि में विकास की गति जून के संशोधित स्तर से कम रही। एक रिपोर्ट।
11: जून में आईआईपी वृद्धि दर 7.3% से बढ़कर 8.8% पहुंच गई थी, जो यह भी संकेत देती है कि जुलाई तिमाही में प्रवेश करने वाली औद्योगिक गति शुरू में अनुमान से अधिक मजबूत रही। आज जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार आईआईपी सूचकांक में सबसे अधिक महत्व रखने वाले विनिर्माण क्षेत्र में जुलाई में 7.3% की वृद्धि हुई, जबकि बिजली और गैस की आपूर्ति में 8.7% की वृद्धि दर्ज हुई। जल आपूर्ति, सीवरेज और अपिष्ट प्रबंधन में 7.4% की वृद्धि हुई। हालांकि खनन क्षेत्र पिछले महीने 0.9% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज करते हुए पिछड़ गया। इंतखाब की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष विशेष शुक्ला।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज से 6 दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वित्त मंत्री शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। एशविल में श्रीमती सीतारमण की अध्यक्षता में G20 सदस्य देशों के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक गवर्नर तथा वरिष्ठ अधिकारी वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा आज पारंपरिक छड़ी मुबारक की रस्मों के साथ संपन्न हो गई। ये यात्रा 3 जुलाई को शुरू हुई थी। इस वर्ष 4,80,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा में दर्शन किए। भारत के विल्वन सेंथिल कुमार आज रात बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के फाइनल में हंगरी के खिलाड़ी बालाज फारकश से खेलेंगे। सेमीफाइनल में कल सेंथिल कुमार ने भारत के ही वीर चोटरानी को हराया था। नॉर्वे के सम्राट हेराल्ड पंचम का आज ओस्लो में निधन हो गया। वे 89 वर्ष के थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने इस वर्ष की शुरुआत में नॉर्वे की यात्रा के दौरान सम्राट हेराल्ड पंचम से अपनी मुलाकात को याद किया। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने ओडिशा के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, मैदानी पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज हल्की बारिश हुई। कल राजधानी में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल के लिए तीसरी उड़ान से 10 टन मानवीय सहायता भेजी। विदेश मंत्रालय ने कहा 320 भारतीय नागरिकों से अब भी कोई संपर्क नहीं। नेपाल तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हुई। सीमा के दोनों तरफ 1500 से अधिक लोग अब भी लापता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। सरकारी उपायों से बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ी। मिलों से सीधे प्राप्त चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट। देश के औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर इस वर्ष जुलाई में 6.7% रही। और बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के फाइनल में आज रात भारत के वेलवन सेंथिल कुमार का सामना हंगरी के बालाज फारकश से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
12: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम मनोज सिंह राणा विद द न्यूज एट 9।
13: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
14: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रमजिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रमजिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है। यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523-52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99-39-41-51 पे।
15: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
16: अरे तो उसे डांटती क्यों हो? उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास। यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
17: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
16: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
15: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
18: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
19: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
18: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
19: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
18: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
19: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
18: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
19: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
20: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
21: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
20: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
21: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
22: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
23: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
18: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
19: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
18: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
19: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
18: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
19: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
18: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
19: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
24: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल, पहले मुख्य हालचाल। गोपालगंज में जुलूस के दौरान एक युवक की गोली मारकर हत्या। जनता दरबार में जिलाधिकारी ने सुनी लोगों की फरियाद। हेलमेट मैन ने बहनों को दिया हेलमेट का तोहफा। धूमधाम से थाना में सती पूजा का हो रहा है आयोजन और पूरे जिले में उत्साह के साथ रक्षाबंधन का त्योहार हुआ समाप्त। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। गुरुवार की देर रात महावीरी अखाड़ा जुलूस के दौरान गोपालगंज शहर के पुरानी चौक में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। नगर थाना क्षेत्र के पुरानी चौक मेन रोड में हुई इस हत्याकांड में मृतक की पहचान श्याम सिनेमा रोड वार्ड संख्या 17 निवासी शिवजी प्रसाद के 20 वर्षीय पुत्र विकास कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि युवक के सिर में गोली लगी है जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने घटना के कारणों और गोली चलाने वालों की पहचान के लिए शहर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगालना शुरू किया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार आसपास के मार्गों और घटना स्थल के पास लगे कैमरों से अहम सुराग मिलने की उम्मीद है। जैसे ही हुई तो पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल में भेजा। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल सदर हॉस्पिटल में तैनात किए गए। पूरे शहर में भी पुलिस बल को अलर्ट किया गया। इस दौरान सदर अनुमंडल पदाधिकारी डॉक्टर प्रेरणा सिंह और सदर SDPO 2 राजेश कुमार तथा नगर इंस्पेक्टर PK प्रभाकर समेत तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी और जवान घटना स्थल से लेकर सदर हॉस्पिटल तक इलाके में फैल गए। निरीक्षण शुरू की गई। FSL की टीम को भी घटना स्थल पर बुलाकर आवश्यक जांच पड़ताल करवाया गया। मृतक के परिजनों में घटना के बाद से ही कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद आज परिजनों को सौंप दिया। इसको लेकर पुलिस जल्द ही अपराधियों के गिरफ्तारी की बात भी कह रही है। इस संदर्भ में आज सदर SDPO 2 राजेश कुमार से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया।
1: हाँ, आज गोपालगंज शहर में एक व्यक्ति को गोली लगी है जिसकी मृत्यु हो गई है। हम लोग वैज्ञानिक तरीके से इसका अनुसंधान कर रहे हैं। जल्दी हम इस पे खुलासा करेंगे। स्थिति सामान्य।
24: सबका सम्मान जीवन आसान कार्यक्रम के तहत जिलाधिकारी समीर सौरभ ने आज समाहरणालय स्थित कार्यालय प्रकोष्ठ में आयोजित जनता के दरबार में नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और पदाधिकारियों को इसे निष्पादित करने के लिए निर्देशित किए। बताया जा रहा है कि जनता दरबार में झीगन माझी, मराठी देवी, नग नारायण प्रसाद यादव एवं जहांगीर आलम सहित कुल 6 फरियादी अपनी समस्या को लेकर पहुंचे थे, जिसमें मुख्य रूप से भूमि विवाद से संबंधित मामले थे। अधिकारी ने मामले को सुनने के बाद त्वरित पदाधिकारियों को निष्पक्ष और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अपनी समस्या लेकर प्रशासन के पास आने वाले प्रत्येक नागरिक को सम्मान पूर्वक सुना जाएगा और उनके मामलों को निष्पादित करने के लिए काम किया जाएगा। रक्षाबंधन के त्योहार पर गोपालगंज के हेलमेट मैन के नाम से फेमस शाहिद ने एक अनोखे अंदाज में बहनों का स्वागत किया। वे सड़क पर खड़े हो गए। इस दौरान स्कूटी और मोटरसाइकिल चलाने वाली बहनों को उन्होंने रोककर उन्हें हेलमेट गिफ्ट किया और सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक किया। शाहिद ने कहा कि हेलमेट चालान से बचने के लिए नहीं बल्कि जिंदगी बचाने के लिए जरूरी है। उनके इस अनोखी पहल से बहनों ने उन्हें काफी शुभकामना दी। बहनों ने कहा कि रियल में हेलमेट मैन शाहिद ने जिस तरीके से आज रक्षाबंधन के दिन बहनों को सुरक्षा के लिहाज से हेलमेट का गिफ्ट दिया है, यह एक काफी अच्छा प्रयोग है और इससे लोगों में बेहतर संदेश जाएगा। साथ ही बहनों की सुरक्षा को लेकर उनके द्वारा जो संदेश दिया गया, इससे दूसरी बहनें और बहुत सारे युवा भी शिक्षा लेकर हेलमेट का इस्तेमाल करेंगे। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी सावन की पूर्णिमा पर कुचायकोट थाने में सती पूजनोत्सव कार्यक्रम का आयोजन पूरे धूमधाम और भव्यता के साथ आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी जा रही हैं, जिसमें भारी संख्या में दर्शकों की उपस्थिति होती है। इस वर्ष भी बहुत सारे लोग इस पूजनोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। पुलिस कर्मी पीली धोती में यजमान बनकर पूरे विधि विधान से प्रत्येक वर्ष सती माँ का पूजा आराधना करते हैं। इस वर्ष भी किया गया। थानाध्यक्ष के नेतृत्व में इलाके के तमाम गणमान्य लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। सभी लोगों ने पूरे उत्साह और उमंग के साथ सती पूजनोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए इसे सफल बनाया है। वहीं सुरक्षा के लिहाज से भी यहां पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि सांस्कृतिक कार्यक्रम में कहीं किसी को कोई परेशानी न हो। स्थानीय लोगों का कहना है कि 100 वर्षों से भी अधिक वक्त से यहां सती माँ की पूजा आराधना होती रही है और थाने में चूंकि सती माँ का स्थान है, ऐसे में अब कई दशकों से थानाध्यक्ष के नेतृत्व में ही सती पूजनोत्सव का कार्यक्रम आयोजित होता है। हालांकि इसमें इलाके के सारे लोग और गणमान्य लोग भी शामिल होते हैं, सहयोग करते हैं और इस कार्यक्रम को पूरे उत्साह के साथ संपन्न कराने में अपना योगदान देते हैं। आज पूरे जिले में पूरे उत्साह के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया। इस दौरान सुबह से ही सड़कों पर बहनों का आवागमन दिखाई दिया। बहनें पूरी विधि विधान से अपने अपने भाइयों के कलाई पर राखी बांधने के लिए निकल पड़ी थी। इस दौरान सुबह से लेकर शाम तक चहल पहल दिखी, बाजारों में रौनक दिखा, मिठाई और राखी की दुकानों पर भीड़ भाड़ रही। पुलिस ने भी जगह जगह सुरक्षा के इंतजाम किए थे। लगातार पुलिस के वरिष्ठ पदाधिकारी भी इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे थे, जिसके वजह से शांतिपूर्ण तरीके से पूरे जिले में रक्षाबंधन का त्योहार संपन्न हुआ है। पूरी आस्था के साथ बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनके लंबी उम्र की कामना की है। जिले के गंडक नदी में एक अज्ञात शव तैरता हुआ दिखा, हालांकि इसकी जानकारी स्थानीय लोगों को हुई। इस दौरान MIM के नेता अनस सलाम भी गंडक नदी में पहुंचे हुए थे। उन्होंने तैरते हुए शव की तस्वीर खींचकर जिला प्रशासन को भेजी। जिला प्रशासन अब इस मामले में आवश्यक अनुसंधान करने में लगा हुआ है। बताया जा रहा है कि जो शव पानी में दिख रहा था वह किसी महिला का शव प्रतीत हो रहा था। हालांकि इसको लेकर अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, परंतु अनस सलाम ने जिला प्रशासन को यह तस्वीर और वीडियो भेजकर इसमें जांच करने के लिए जानकारी दी है। जदयू के जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल, जो शांति समिति के सदस्य भी हैं, उन्होंने रक्षाबंधन और महावीर झंडा के अवसर पर गोपालगंज में आयोजित मेला और जुलूस को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने के लिए गोपालगंज वासियों से अपील की। उन्होंने कहा कि सभी सम्मानित सदस्यगण भी जिला प्रशासन के साथ मिलकर इस आयोजन को सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने के लिए अपना योगदान दें। गोपालगंज में आयोजित महावीरी अखाड़ा जुलूस में सदर विधायक सुभाष सिंह का भी अलग अंदाज दिखा। वे महावीरी अखाड़ा के दौरान अखाड़े में पहुंचे और लाठी भाजते हुए नजर आए। सदर विधायक के इस अंदाज को देखकर लोगों ने काफी प्रशंसा की। बहुत सारे उनके समर्थकों ने उनके साथ सेल्फी भी खिंचवाया। गोपालगंज शहर में महावीरी झंडा और जुलूस को लेकर विद्युत सप्लाई बाधित किया गया था। जुलूस के दौरान भी रात में विद्युत की सप्लाई बंद की गई थी और झंडा के दौरान भी शाम से लेकर लगभग रात 11:30 बजे तक या जुलूस की समाप्ति तक सभी शहरी फीडरों की विद्युत आपूर्ति को बंद किया गया। टाउन 1 से टाउन 5 तक सभी विद्युत खंड इसको लेकर प्रभावित रहा। जुलूस वाले ग्रामीण क्षेत्रों में भी संबंधित फीडर को बंद किया गया था, के वजह से लोगों को थोड़ी परेशानी हुई। विद्युत विभाग का कहना है कि झंडा और जुलूस के दौरान बहुत सारे लोग सड़कों पर वाहन गाड़ियां झंडा इत्यादि लेकर चलते हैं और ऐसे में सड़कों पर बिजली का तार भी गुजरता है। किसी को कोई हादसा न हो इसको लेकर एहतियातन विद्युत की सप्लाई बंद की जाती है। बिशंभरपुर थाना की पुलिस ने 88 लीटर देशी शराब के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। बताया जा रहा है कि लगातार शराब के विरुद्ध पुलिस अभियान चला रही है। इसी कड़ी में पुलिस को गुप्त सूचना मिली और पुलिस ने सिपाया खास गांव में वाहन जांच शुरू किया। इस दौरान पुलिस को देखकर शराब तस्कर गाड़ी लेकर भागने लगा। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घेराबंदी की और आरोपी को पकड़ा। तलाशी के दौरान इसके मोटरसाइकिल से 80 लीटर से अधिक शराब मिली, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पकड़ा गया अभियुक्त मुन्ना कुमार, पिता हरेंद्र यादव, साकिन चतुर्वगा, थाना जादवपुर का निवासी है। अब इस पर पुलिस विधिक कार्रवाई कर रही है। इधर महावीरी अखाड़ा से पहले जिला प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर काम कर रहा है। SDM प्रेरणा सिंह और सदर SDPO 2 राजेश कुमार के नेतृत्व में शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया। मौनिया चौक, घोष मोड़, अम्बेडकर चौक समेत प्रमुख इलाकों में पुलिस बल ने मार्च कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। अधिकारियों ने बताया कि उपद्रवियों पर विशेष नजर रखी जा रही है। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जा रही है। सभी प्रमुख चौक चौराहों पर पर्याप्त तो संख्या में पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती भी की गई है। साथ ही स्थिति पर नजर रखने के लिए कंट्रोल रूम का गठन कर पूरे इलाके की मॉनिटरिंग की गई, जिसके वजह से महावीरी अखाड़ा को संपन्न कराया गया। जिला स्वास्थ्य समिति के सचिव और जिले के सिविल सर्जन ने बताया कि सदर अस्पताल गोपालगंज में रक्त से प्लाज्मा निकालने की मशीन का जल्द ही संचालन होगा। इसके लिए लाइसेंस प्राप्त करने को लेकर पोर्टल के माध्यम से सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन को ऑनलाइन आवेदन भी किया गया है। लाइसेंस प्राप्त होते ही मशीन का संचालन शुरू किया जाएगा और इससे जरूरतमंद मरीजों को प्लाज्मा संबंधित स्वास्थ्य सेवाएं स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो सकेंगी। गंडक नदी का जलस्तर करीब 1 मीटर तक घटा है, परंतु अब कटाव का खतरा लोगों को सता रहा है। जल संसाधन विभाग अलर्ट मोड पर है, लगातार बंधे की निगरानी की जा रही है। वरिष्ठ पदाधिकारी भी पेट्रोलिंग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि दोबारा से नेपाल के रास्ते बाढ़ आने का खतरा फिर से मंडराया है, क्योंकि चीन और नेपाल की सीमा पर फिर से एक दूसरी झील फटी है, जिससे भारी मात्रा में जल नेपाल में प्रवाहित हो रहा है और इसके भारत में भी आने की संभावना है। इसको लेकर फिर से गोपालगंज जिला प्रशासन और बिहार सरकार अलर्ट मोड पर है। बढ़ती जलवायु और बढ़ती मौसमी अनिश्चितताओं के बीच पशुधन के लिए वर्ष भर पर्याप्त एवं पौष्टिक चारा उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। इसको लेकर एल नीनो जैसी जलवायु घटनाएं एवं चुनौती को और बढ़ा रही हैं। बताया जा रहा है कि इनके प्रभाव से वर्षा की कमी, तापमान बढ़ने और सूखे तथा लंबे समय तक शुष्क परिस्थितियों की संभावना बढ़ जाती है। इसका सीधा असर हरे चारे की उपलब्धता, चारागाहों की वृद्धि और चारा फसलों की उत्पादकता पर पड़ता है। भारत में यह स्थिति विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि पशुधन का मुख्य पोषण मौसमी हरे चारे, फसल अवशेष और चारागाह संसाधनों पर ही निर्भर करता है। देश में चारे की उपलब्धता में पहले से ही अंतर बना हुआ है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान के आकलनों के अनुसार देश में लगभग 11% हरे चारे और 23% सूखे चारे की कमी है। सूखे और लंबे समय तक खुश्क मौसम में यह स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। और आज के मौसम का तापमान, गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। गोपालगंज में जुलूस के दौरान एक युवक की गोली मारकर हत्या। जनता दरबार में जिलाधिकारी ने सुनी लोगों की फरियाद। हेलमेट मैन ने बहनों को दिया हेलमेट का तोहफा। धूमधाम से थाना में सती पूजा का हो रहा है आयोजन। और पूरे जिले में उत्साह के साथ रक्षाबंधन का त्योहार हुआ समाप्त। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
3: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
2: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198869793।
4: सुनिए सुनिए सुनिए,
5: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
4: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
5: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
4: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।

0: ठक ठक।
1: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034648652 पे।

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सोनू SMS फरमाइश के साथ रेडियो रमछीम 94.4 FM पे। समय 9:29 हो रहे हमारे स्टूडियो घड़ी में और कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है एक छोटा सा, जिसमें अपना नाम, गांव का नाम, गाने का नाम बताना है और फिर कुछ ही समय में हम आपकी फरमाइश पूरी करेंगे तो आप गाने के साथ एंजॉय करेंगे। यहाँ पे कुछ मैसेज पहुँचे हुए तो मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो आप अभी टेक्स्ट मैसेज करें, नंबर है 72 77 16 65 96। यहाँ पे कई मैसेज हमारे पास बहुत पहले पहुँचे हुए हैं तो बहुत पहले वाले मैसेज तो हम नहीं शामिल करेंगे क्योंकि पता ना आप सुन रहे हैं कि नहीं, तो हम 2-4 मिनट पहले वाले मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और 2-4 मिनट पहले मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो सर नमस्कार, राधे राधे सर जी। बिल्कुल राधे राधे और आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में और गाने के फरमाइश से तो पूरा करने की कोशिश है। यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, सोनू बाबू सबसे पहले आज तो भाई बहनों के पवित्र रिश्तों का महा पर्व रक्षाबंधन की ढेरों मंगल शुभकामनाएं आप लगाए थे समस्त रिमझिम परिवार को, साथ ही हमारे इस कार्यक्रम के खास नियमित श्रोता हमारे प्यारे बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं आशीर्वाद। इनके बाद हमारे अपने 2 बहनों को भी स्पेशल में प्यार दुलार, सदा खुश रहे दिल से दुआ के साथ आशीर्वाद एक बार आपके माध्यम से भी फिर से दुलार भरा हमारे बहनों का ये सॉन्ग सुना दे। तबिल को सुनाने की कोशिश रहेगा और आफी के गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करने की प्रयास है और इस मैसेज को करते हैं वीरेंद्र गुप्ता भैया के करियर ऑप्शन में पालपेटर से और फिल्म दाव पेश स्वर शैलेंद्र सिंह, साधना सरगम और गाने का बोल मैं तेरा हर जन्म बहना बनूं और तू मेरा भैया, डेडिकेट सभी शामिल श्रोताओं बहनों को। तो चलिए आपके गाने के साथ इस कार्यक्रम की आगाज़ करेंगे और हमारे रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से सभी भाइयों बहनों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हर भाइयों बहनों की ज़िंदगी में खुशियां आज से आए और यही कामना है, हमेशा मस्त स्वस्थ रहे और खुश और खुशहाल रहे। आगे मिसेज पहुँचे हुए तो मिसेज को शामिल करते हुए आगे बढ़ेंगे और मधुसरिया से राजू कुमार कहते हैं कि मुझे सॉन्ग सुनना है, तो बिल्कुल सुनाएंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हाय हेलो सोनू भाई कैसे हैं, आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और मैं MD महमूद केरला से और आज मुझे भी एक गाना सुनना है, बिल्कुल सुनाने की कोशिश रहेगा, फिलहाल स्वागत है। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हेलो सर हम सफरोज अली गोपालगंज से गाना सुनना है, बिल्कुल सुनाएंगे सफरोज जी, आप भी बन रहे हैं हमारे साथ। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हाय मैं कमलेश जी विलेज सव्या फील्ड गोपालगंज से और मुझे सॉन्ग सुनना है जब जब प्यार पे पहरा हुआ है, फिल्म सड़क से, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश पूरा करेंगे, फिलहाल बने रहे हमारे साथ। और चलिए पवित्र त्यौहार भाई बहनों का प्यार दुलार का त्यौहार रक्षाबंधन के शुभ अवसर पे भाई की तरफ से गाने की फरमाइश पहुंचा हुआ है, तो इसी गाने के साथ इस कार्यक्रम की आगाज़ करते हैं और सुनते हैं, इंजॉय करते हैं रेडियो रमछीम 94.4 FM पर।

सभी प्यारा सॉन्ग सुन रहे हैं आप सब, और शो चल रहा है इसमें इस फरमाइश का। और आप भी इस शो से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं, तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। और यहाँ पे कुछ और भी मैसेज पहुँचे हुए, तो मैसेज को शामिल करते हैं और देखते हैं क्या है आगे श्रोताओं की फरमाइश। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि शमशाद अली उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से, और गाने का बोल। बिल्कुल शमशाद जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। गाने की फरमाइश तो पूरा करने की कोशिश है। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो रेडियो रिमझिम, कैसे हैं, मुझे एक गाना सुनना है। बिल्कुल बढ़िया हूँ, और आपको गाना सुनना है तो बिल्कुल सुनाएंगे। फिलहाल स्वागत है आपका। और इस मैसेज को पहुँचाने वाले अपना नाम पता कुछ नहीं बताए हुए हैं, तो बिना नाम पता बताए गाने की फरमाइश तो पूरी नहीं की जाएगी। यदि आप सुन रहे हैं मेरी आवाज़ को तो बिल्कुल नाम बताएं, कहाँ से मैसेज किए हैं ये भी बताएं। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि सुनो बाबू, हमारे बहनें सॉन्ग सुनकर आँखों भी बहुत बहुत दुआ आशीर्वाद, सॉरी, सुनकर आपको भी बहुत बहुत दुआ आशीर्वाद दी, शुक्रिया। वीरेंद्र गुप्ता भैया मैसेज करते हैं, चलिए आपको भी धन्यवाद है। और उनसे कहें कि आगे भी रक्षाबंधन की कई सारे गाने हम प्ले करेंगे, इंजॉय करें, साथ में बने रहे हमारे। और आगे भी रक्षाबंधन के ही गाने हम प्ले करेंगे। और इस गाने के फरमाइश किए हुए हैं हमारे श्रोतागण हैं सुजीत कुमार जी। और गाने के फरमाइश करते हैं चंदा रे मेरे भैया से कहना। बिल्कुल इन्हीं के गाने के साथ आगे एंजॉय करेंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, और मैसेज अभी टाइप हो रहे हैं, तो चलिए मैसेज टाइप करें और फिर से हम गाने को प्ले करते हैं। तब तक अपना भी काम करें, एंजॉय करते हैं अगले गाने के साथ। रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

0: तब रामू काका हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
1: ई सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
0: अरे ई सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
1: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
0: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
1: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से ही लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा।
2: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
0: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
4: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
3: और लाइट बिल के
4: अब 0 रुपए कैसे दूं?
3: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
4: पक्का।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
6: हर घर सूर्य घर।
7: प्रसाद क्लिनिक,
8: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चमरों के सफल इलाज के लिए मिले
7: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
8: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
9: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज, ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
10: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
11: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2,00,000 रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
10: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
11: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
10: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
12: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया?
13: बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
11: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
13: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज और लखपतिया मोड़, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
14: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
15: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
16: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ, विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
15: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9493045651 या 9707906575।
17: छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो रेमझिम 90.4 FM पे, शो चल रहा है SMS फरमाइश का। आगे कई मैसेज पहुंचे हुए हैं और लिखे हुए हैं कि गुडू झा ताजपुर समस्तीपुर बिहार से और गाना दिल दीवाने का ना जाने कब खो गया, सॉरी दिल दीवाना ना जाने कब खो गया, इस गाने की फरमाइश किए हुए हैं, तो कोशिश है आपकी फरमाइश हम पूरी करें। अगले मैसेज पहुंचा हुआ है हाय सर, मैं सुरभि गोपालगंज से और मुझे भी सॉन्ग सुनना है, तो बिल्कुल सुनाने की कोशिश रहेगा। फिलहाल स्वागत है आपका भी। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि बहुत बहुत धन्यवाद सर जी आपको गाना प्ले करने के लिए, रक्षाबंधन की तरफ से हमारे तरफ से सभी श्रोताओं, और हम तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है और बधाई देंगे। तो चलिए देनी चाहिए। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि मैं अभिनंदन मिश्रा गणेश स्थान माझा से और मुझे गाना सुनना है राखी हर साल कहले समानवा में, बिल्कुल सुनाएंगे फिलहाल। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि सोनू बाबू आपकी आवाज़ और प्रस्तुति बहुत ही अच्छा लगा, आज खास दिन है भाई बहनों का, तो आज इधर उधर का गीत ना बजाए सिर्फ आज राखी का ही गीत सुनाए, आपसे आग्रह है और कार्यक्रम सुपर रहेगा। रूबी कुमारी गुप्ता, बड़े भैया वीरेंद्र गुप्ता खिखरी रक्सौल नेपाल बॉर्डर से मैसेज पहुंचा हुआ है, तो ये तो हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे कई श्रोतागण हैं और सबकी अलग अलग पसंद है, तो जैसी श्रोताओं की पसंद होगी वैसे तो हमें गाना प्ले करना है। आप ही लोग के माध्यम से कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता है, कैसे गाने की फरमाइश करते हैं, बशर्ते हम लोग आग्रह करते हैं कि आप पुराने गाने की फरमाइश करें। आगे कुछ मैसेज पहुँचे हो तो मैसेज शामिल करते हैं, तो हम ये नहीं निर्णय ले सकते हैं कि केवल आज रक्षाबंधन का दिन है तो रक्षाबंधन के ही गाने आप सुन सकते हैं। हमारा एक ही उसूल है कि कार्यक्रम रात्रि का है तो पुराने गाने की फरमाइश करें आप लोग, क्योंकि रात्रि में हमारे कई ओल्ड मैन जैसे दादाजी एज के लोग सुनते हैं, तो उन लोगों को पुराने गाने और मधुर आवाज़ में सुनने बहुत पसंद करते हैं, इसलिए यह कार्यक्रम स्पेशली पुराने गाने के लिए ही बनाए गए हैं, जिसकी वजह से पुराने गाने की फरमाइश करने की आग्रह की जाती है। इसमें कई भी श्रोतागण ऐसे भी हैं जो नए गाने को लेकर हाजिर रहते हैं और कहते हैं कि हमें इसी गाने को सुनना है, उनकी भी इच्छाएं पूरी की जाती है। ऐसा नहीं है कि किसी को नाराज़ रेडियो रिमझिम परिवार रखे, सबकी खुशी में शामिल रहता है, बस शर्ते निवेदन पूर्वक आग्रह करता है कि आप जैसे कार्यक्रम चले वैसे गाने की फरमाइश करें। आगे कई मैसेज पहुँचे हो तो समय हमारे पास बहुत कम है, क्योंकि यह बहुत कार्यक्रम छोटा समय का बना हुआ है, तो मैसेज को शामिल करते हैं, ढेर सारी चर्चाएं नहीं करेंगे। आगे मैसेज लिखा गया है कि नमस्ते सर, मैं सौम्या पांडे राजेंद्र नगर गोपालगंज से, और सर मुझे गाना सुनना है, गाने का बोल है तुझे दिल में कैसे, तुम्हें दिल से कैसे जुदा करेंगे। ये गाना मैं अपने परिवार को और आपको और जो रेडियो रमझिम सुन रहे हैं उन सबको सुनाना चाहते हैं, प्लीज़ ये गाना सुना दीजिएगा, बिल्कुल सुनाने की कोशिश रहेगा। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, सोनू भाई नमस्कार, आपको और सभी दोस्तों को रक्षाबंधन को शुभकामनाएं, और सोनू भाई आप पर्सनल बातें करते हैं तो ये आप खुद उनसे पूछ सकते हैं, एक कार्यक्रम में पारिवारिक और पर्सनल बातें नहीं की जाती है, ये सार्वजनिक बातें की जाती है। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हाय सर, हम राजू सोनी फरीदाबाद हरियाणा से, और मुझे गाना सुनना है माँ का दिल, बिल्कुल सुनाने की कोशिश रहेगा। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और अगले गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं राजू जी की, और इनके तरफ से गाने की फरमाइश पहुँचा हुआ है, तू कातिल तेरा दिल कातिल।

94.4 FM सुन रहे हैं आप सब, और राजू जी की फरमाइश अभी हम सुन रहे थे, तू कातिल तेरा दिल कातिल। और आगे में शीर्ष पहुंचा हुआ है, अगली गाने की फरमाइश हम प्ले करेंगे MD महमूद केरला से भेजे हुए हैं, और इनके तरफ से गाने के फरमाइश पहुंचा हुआ है, पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा, नासिक बे पर्दा ना कर लो। तो आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनेंगे। आगे मैसेज कुछ पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि सर जी रात को कितने बजे तक प्रोग्राम चलता है। राजू सोनी फरीदाबाद हरियाणा से पूछ रहे हैं। तो राजू जी आप नए हैं शायद, यह कार्यक्रम 9:15 से 10:15 यानी 9:15 से 20 की बीच स्टार्ट होता है इसका टाइम है, और कभी कभी लेट भी हो जाता है, लेकिन निश्चित समय 10:15 से लेकर 20 मिनट के बीच कार्यक्रम समाप्त हो जाता है। आदेशानुसार कभी कभार कार्यक्रम को बढ़ाया जाता है, और नहीं तो अपने समाप्ति का समय निश्चित रूप से समाप्त हो जाता है। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि तो सफरोज जी आपकी भी मैसेज हमारे पास पहुंची है, आपकी फरमाइश पूरा करने की कोशिश है। फिलहाल हम गाने प्ले करते हैं अगले और सुनते हैं।

रेडियो रेम जीम 94.4 FM सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का, और कवाली सुन रहे हम सभी, और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, और इस मैसेज को किए हुए हैं कमलेश जी लेज सव्या फील्ड से, तो इनकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। आगे मैसेज कहा जा रहा है कि सुनो सर मेरा भी गाना चला दीजिए, बिल्कुल चलाने की कोशिश है सबकी, एक एक करके, थोड़ा सा समय लगेगा। और आगे बढ़ते हैं अगले गाने और अगले श्रोताओं की फरमाइश प्ले करते हैं कमलेश जी की, सुनते हैं इनके पसंद के गाने हम सभी।

कभी प्यारा सॉन्ग रेडियो रिमझिम 94.4 FM पे सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का, और आगे मिसेज पहुंचा हुआ है और इस मिसेज को करती है शम्या पांडे राजेंद्र नगर गोपालगंज से, और गाने के फरमाइश करती हैं। तो चलिए आपकी भी फरमाइश हम प्ले करेंगे, और इंतज़ार करते हुए फिर से मैसेज किए हैं, तो चलिए आपकी फरमाइश ही प्ले करने ही वाले हैं। और कुछ मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि सर ये गलत बात है, हम बहुत पहले मैसेज किए थे। अब एक एक करके सबकी फरमाइश पूरी कर ही रहे हैं, आप लोग मैसेज कर देते हैं तो फिर से आगे बढ़ जाते हैं। और आप यदि जल्दी गाने सुनना चाहते हैं तो जो भी स्थान मिले उस स्थान को बनाए रखें, जब आप मैसेज करेंगे तो आपका स्थान भी बदल जाता है। तो अब इतना हम टाइमिंग के तो ध्यान नहीं रख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते हैं और उतने टाइम याद नहीं रख सकते हैं कि कितने बज के कितने सेकंड कितने मिनट पे आपका मैसेज पहुंचा। तो आपसे गुजारिश है कि जब आप जल्दी गाने सुनना चाहते हैं तो जहाँ पहले मैसेज किए उस स्थान को बनाए रखें, ताकि आपकी फरमाइश जल्द पूरी की जा सके। आगे बढ़ते हैं, ढेर सारी बातें नहीं करेंगे क्योंकि समय जो है समाप्ति के करीब है, तो हमें लगता है कि आज आप लोगों को एक्स्ट्रा टाइम भी देना पड़ेगा क्योंकि आज खास दिन है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देंगे और कुछ गाने प्ले करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल गाने प्ले करते हैं और सुनते हैं।

काफी प्यारा सॉन्ग सुन रहे हैं हम सब रेडियो 90.4 एफएम पे। शो चल रहा है, इसमें इस फरमाइश का रे आगे मिसेज पहुंचा हुआ है और इस मिसेज को करते हैं अभिनंदन मिश्रा गणेश स्थान माझा से, और इनके तरफ से गाने की फरमाइश पहुंचा हुआ है राखी हर साल कहले शवनवान। इसलिए आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे क्योंकि आज खास दिन है और खास गाने की फरमाइश किए हुए और सप्ताह का अंतिम दिन कार्यक्रम का भी, तो कुछ समय एक्स्ट्रा देते हुए आप लोगों की फरमाइश हम प्ले करेंगे। अगले मैसेज पहुंचा हुआ है कमलेश जी की तरफ से, लिखा गया है कि गाना बजाने के लिए थैंक यू सर जी, चलिए आपको धन्यवाद है। आगे बढ़ते हैं और गाने को प्ले करते हैं। ढेर सारी मैसेज अब शामिल नहीं करेंगे क्योंकि समय जो है बहुत कम है, तो इंजॉय किया जाए अगले गाने के साथ।

काफी प्यारा सॉन्ग रेडियो एमसीएम 94.4 एफएम पे सुन रहे हैं हम सब, और शो चल रहा है एसएमएस फरमाइश का, और यहाँ पे और लिखे हुए हैं कि सर नहीं बजा, नहीं सर नहीं बजाना है तो बता दीजिए, आगे से एसएमएस नहीं करेंगे, ऐसी नाराज नहीं होनी चाहिए, आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। अब क्या ही करे, सब कोई मैसेज एक ही करता है, तो आप मैसेज किए हुए हैं तो थोड़ा सा सब्र करने की क्षमता को बढ़ाए, और क्योंकि बहुत कम समय का कार्यक्रम है तो सबको मैसेज देखना पड़ता है, और मैसेज शामिल करते करते समय भी कट जाते हैं, और कई श्रोताओं की फरमाइश भी हम पूरी नहीं कर पाते हैं, और कम समय है तो खूब से खूब हम पूरी कर पाते हैं, तो 7-8 नए ही गाने फुल कोशिश करने के बाद भी प्ले कर पाते हैं। तो आप लोग इतनी नाराज़गी भरी बातें ना करें, और आपकी फरमाइश से तो हम पूरा कर देते हैं, और आगे इनके तरफ से गाने की फरमाइश पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि

दोस्ती करते नहीं आरजू मूवी से। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे और यहाँ पे गणेश जी मैसेज किए हुए हैं कि सॉन्ग सुनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आपको भी धन्यवाद है रेडियो रमझम सुनने के लिए, और आगे सुने इंजॉय करें दोस्ती करते नहीं आरजू मूवी से, सफरोज अली जी की फरमाइश।

रेडियो रेम छीम 94.4 FM सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का। और यहाँ पे आगे कई मैसेज है जो कई तो हम गाने प्ले नहीं कर पाएंगे, और इसी को अंतिम गाने हम मानते हैं। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ, लिखा गया है कि सर हम इसलिए बोले हैं कि हमारे बाद वाले लोग का सॉन्ग सुना रहे थे और मेरा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए गाने सुनने और सुनाने फरमाने के लिए आपको भी धन्यवाद है रेडियो रिमझिम सुनने के लिए। और थोड़ा सा सब्र की ज़रूरत होती है, और हम कोशिश करते हैं कि सबकी फरमाइश जितना समय मिला है उतना में जो भी हो सके उतना पूरा कर दें, लेकिन क्या ही करें, मेरा भी समय निर्धारित है, जितना समय मिला है उतना ही में हम कुछ कर सकते हैं। और आज तो कुछ खास दिन था तो कुछ समय एक्स्ट्रा भी दिए हुए, तो आगे अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी। आप सब सुनते रहें रेडियो रिमझिम 94.4 FM, और जो भी श्रोतागण की फरमाइश हम पूरी नहीं कर पाए उनसे क्षमा चाहेंगे, और गुजारिश करेंगे कि आप थोड़ा सा सब्र करें, अगले सप्ताह का इंतज़ार करें, फिर मुलाकात होगी। तो आप सब अपने ज़िंदगी में हंसते मुस्कुराते रहें और एंजॉय करते रहें। फ़िलहाल आज के लिए नमस्कार।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सौ सुनार की और एक लोहार की। अरे इसीलिए तो मैं कहता हूं और आखिरी बार कहता हूं कि प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज, अरे पड़ोसी

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।
1: मैं तुझे प्यार

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि नेपाल में बुधवार को अचानक आई बाढ़ के बाद 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि अन्य देशों के भारतीय मूल के लगभग 100 लोगों से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। श्री जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि तमिलनाडु के 21 भारतीय नागरिक बाढ़ प्रभावित इलाके से नई दिल्ली पहुंच गए हैं।
1: 21 भारतीय नागरिक जो फंसे हुए थे कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे गए थे, कल काठमांडू पहुंचे उस क्षेत्र से जहां पर ये हादसा हुआ, और कल हमारे राजदूत उनसे मिले, उनका हालचाल पूछा और हमारी एम्बेसी ने उनके लिए ये ट्रैवल अरेंजमेंट बनाया। आज वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। उसके अलावा 63 भारतीय नागरिक जो त्रिशूली हाइड्रो पावर में काम करते हैं, त्रिशूली 1, उनको भी वहां से बचाया गया है। 96 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल की तरफ आ चुके हैं और ये सभी लोग सुरक्षित हैं।
0: इस बीच भारत ने नेपाल को मानवीय सहायता बढ़ा दी है। 10 टन मानवीय सहायता लेकर तीसरी उड़ान काठमांडू के लिए रवाना हो गई है। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। 1545 लोग अब भी लापता हैं। दक्षिण पश्चिमी चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद फिर से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। यह देश में वित्तीय समावेशन की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत करेंगे। भारत और उज्बेकिस्तान ने 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। तब से द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं। परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्यबल ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों सहित सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। सुझाव 13 सितंबर तक वेबसाइट, व्हाट्सएप या फोन नंबर द्वारा भेजे जा सकते हैं। इस बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट 2026 की 84 विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के किसानों को आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार उनके हितों से कोई समझौता नहीं करेगी और किसी भी देश के साथ किए गए हर समझौते में किसानों के हितों को सर्वोपरि रखा जाएगा। अमृतसर जिले के बाबा बकाला में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी समेत विपक्षी दल यह झूठा प्रचार कर रहे हैं। देश में इस वर्ष जुलाई में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी द्वारा मापी गई औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर वार्षिक आधार पर 6.7% रही। इन आंकड़ों से संकेत मिलता है कि इस दौरान औद्योगिक गतिविधि में अच्छी गति से वृद्धि जारी रही। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज भारत में यूरोपीय संघ के निवर्तमान राजदूत हर्वे डेल्फिन को विदाई दी। डॉ जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने और दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत बनाने में निवर्तमान राजदूत के योगदान की सराहना की। मौसम विभाग ने ओडिशा के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, मैदानी पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज हल्की बारिश हुई। कल राजधानी में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। भारत के वेलवन सेल्थिन कुमार आज रात पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के फाइनल में हंगरी के खिलाड़ी बालाज फारकस से खेलेंगे। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. India has stepped up humanitarian assistance to Nepal affected by flash floods as the third flight carrying 10 tons of humanitarian assistance has departed for Kathmandu. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar informed this in a social media post. The minister said that the assistance includes portable generator sets, dignity kits, food packets and water purification tablets. Dr. Jayashankar said that an 11-member team of doctors, paramedics and Reiki team for tunnel rescue operations is also on board. He also reiterated India's support to Nepal's ongoing relief and rescue efforts. Earlier, India had sent more than 47 tons of emergency relief supplies in two flights. Meanwhile, the death toll from devastating flash floods in Nepal and Tibet has risen to 547, with 1,545 people still missing as rescue teams search riverbanks and isolated settlements for survivors and bodies swept downstream. Authorities have evacuated more than 800 people from affected districts and issued fresh warnings after a 5.1 magnitude earthquake struck southwestern China, raising fears of further flooding. India has launched a major rescue and relief operation. The Ministry of External Affairs has said that 320 Indian nationals remain uncontactable or are reportedly missing following the flash flood tragedy on Wednesday. External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said around 100 people of Indian origin holding other nationalities also remain uncontactable. Addressing the media in New Delhi today, Mr. Jaiswal said that 63 Indian nationals working at Trishuli 1 hydropower project were rescued from the affected area. Mr. Jaiswal informed the media that 21 Indian nationals from Tamil Nadu who had reached Kathmandu from the flood-affected area yesterday have arrived in New Delhi this afternoon. External Affairs Minister Dr. Jaishankar met the group of 21 pilgrims belonging to Tamil Nadu in New Delhi who were rescued from Nepal. Later, talking to the media, he thanked the government of Nepal and its army for the rescue efforts. On the Chinese side, External Affairs Ministry spokesperson Jaiswal said that around 400 Indian nationals are safe and in contact with their families. Mr. Jaiswal said that the government has set up a control room in the Ministry of External Affairs, which is working round the clock. He said both Indian embassies in Kathmandu and Beijing have also set up 24/7 helplines. Prime Minister Narendra Modi will embark on a four-day visit to Uzbekistan and Kyrgyzstan tomorrow. In the first leg of the trip, Mr. Modi will reach Uzbekistan's capital, Tashkent, tomorrow. During the visit, Prime Minister Modi and President of Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, will review cooperation in different sectors. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in the Mann Ki Baat program on Akashvani at 11 a.m. on Sunday. It will be the 137th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast across the entire Akashvani and Doordarshan network, the AIR news website and the News on Air mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashvani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. India's industrial output growth as measured by the Index of Industrial Production IIP expanded by 6.7% in July this year on an annual basis. The data, July data indicates that industrial activity continued to expand at a healthy pace, although the pace of growth moderated from the revised June level. The government has said that there is no shortage of sugar in the country and all necessary measures will be taken for adequate availability of sugar at reasonable prices. The Consumer Affairs Ministry said that ex-mill sugar prices have declined by around 20% in recent days, while retail sugar prices have also started coming down. And India's Velavan Saltal Kumar will take on Hungary's Balázs Farkas in the final of the PSA Budapest Squash Open tonight. Velavan stormed into the title clash with a thrilling 3-2 victory over compatriot Vichot Rani in the semi-finals last night. And that is the end of this news bulletin.
3: अब सुनिए आज शाम 6:30 बजे प्रसारित मार्केट मंत्र कार्यक्रम का पुनः प्रसारण।

0: This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak.
1: नमस्कार. मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है. आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं. हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए आज इस स्टूडियो में आमंत्रित हैं देश के आर्थिक मामलों के जाने माने विशेषज्ञ एके भट्टाचार्य. श्री भट्टाचार्य जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
2: नमस्कार, धन्यवाद.
1: आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से.
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट इंडिसेस राइज, सेंसेक्स एड्स ओवर 300 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स नियर 24,000.
3: रात्रि न्यूज के बाद रेडियो रिमझिम परिवार को दीजिए इजाजत केवल रेडियो से. आप हमें ऐप पर पूरी रात सुन सकते हैं. सो अगर आपने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो अभी गूगल के प्ले स्टोर में जाएं, रेडियो रिमझिम लिख के सर्च करें और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें. उसके बाद पूरी रात आप रेडियो रिमझिम का आनंद ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ऐप पर.

0: बुझला।
1: उत्तर बिहार का गौरव,
2: सारण प्रमंडल की शान,
1: गोपालगंज की धड़कन
2: और अपने भाषा की पहचान।
1: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
2: सुनो दिल से।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।
1: इतना सवाल एक बार पूछ ले बू, पहले आपन बताओ तो हम आपन बताओ तनी।
2: अच्छा तो सुन लो, खोल के ना बताए, इशारा के बाद इशारे में समझ ली है।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
2: वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
2: पहचान पट्टी सुपर गेम खुशी।
1: जी जी, क्या हाल चाल है आपका?
2: ठीक हूँ, आप बताइए।
1: हम सब भी अच्छे हैं।
2: नाश्ता हो गया?
1: हाँ, नाश्ता करके आते हैं।

0: आप बताइए, आप क्या कर रहे हैं?
1: कुछ फोन ही लगा रहे थे।
0: अच्छा, तो कौन सा गाना सुनना है आपको?
1: शाहरुख खान का बता दीजिएगा, हिंदी सॉन्ग।
0: शाहरुख खान का तो हिंदी सॉन्ग बहुत सारा अच्छा अच्छा है, आप कौन सा सुनना चाहेंगे?
1: तूने जो परफॉर्म मेरी जान, तुझे मर मिट जाऊंगा, वही वाला।
0: अच्छा, हाँ,
1: हाँ वही रख दे।
0: ओके, तो गाना प्ले करेंगे, सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4 FM।
1: थैंक यू मैम।
0: वेलकम।

0: हेलो
1: जी। बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
0: सलाम अलैकुम मैम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: क्या खैरियत है?
1: मेरा ठीक है, आप बताइए आप कैसी हैं?
0: मैं भी ठीक हूँ। खाना पीना हो गया?
1: जी खाना पीना तो हो गया है, आप बताइए आपका हो गया?
0: हाँ मैम, एक गाना सुनना था।
1: बता दीजिए कौन सा।
0: ये जो नहीं है दिल के अरमासूम बह गए, नया निकला है।
1: नया सॉन्ग दिल के अरमासूम बह गए?
0: हाँ
1: ये तो मतलब पुराना सॉन्ग है, फिर से इसको नया किया गया है।
0: हाँ नया सॉन्ग है।
1: अच्छा ठीक है, मैं चेक कर लूंगी और इसी को बजा लूंगी। ओके
0: हाँ।
1: और गाना सुनाना भी है?
0: हाँ सबसे पहले आपको और जितना रेडियो भी सुन रहे हैं सब।
1: ओके तो गाना प्ले करते हैं।
0: ठीक है
1: सुनते हैं रेडियो 90.4।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं hello.
0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
6: वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
5: जी मैम, मुझे गाना सुनना है।
6: बिल्कुल मैम, बता दीजिए गाने की।
5: मैं गुलाम हुसैन बोल रहा हूँ वेस्ट मुंबई से, मैं गोपालगंज के रहने वाला हूँ।
6: आज बहुत दिनों बाद।
5: जी मैम, थोड़ा टाइम नहीं मिलता था इसी के लिए।
6: अच्छा जी,
5: मुझे गाना सुनना है, कोई भी गाना अच्छा सुना दीजिए।
6: अच्छा, कोई भी गाना आज
5: ये गाना सुना दीजिए मैम। रब जैसा रूप तुम्हारा देता है सहारा, ये गाना।
6: और गाना सुनाएंगे भी किसी को?
5: हाँ जी, सबसे पहले आपको, मासूम, कौशर, जुनेद, कमरान भाई, अरमान भाई, नौशाद भाई, साकी भाई, फरहान भाई, जगदीप भाई, आयुष भाई, प्रिंस भाई, लकी भाई, रुबीना जी, जीती जी, हिना जी, गुड़िया जी, सज्जा जी, शबनम जी, गुलशन जी, रोशनी जी, सलेहा जी, अफरीन जी, अरीसा को।
6: अच्छा जी, तो गाना प्ले करें
5: जी।
6: सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4।
5: मैम बोल रही क्या मैम?
6: हाँ
5: जी मैम, बहुत अच्छा
6: जी जी।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेमिशन 90.4 एफएम में।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते,
1: वर्मा कुमार बोल रहे हैं कलामोटिया से।
0: हाँ जी, क्या हालचाल है आपका?
1: ठीक है जी, हालचाल अपना सुनाई।
0: मेरा भी ठीक है।
1: गोपालगंज का मौसम कैसा था?
0: गोपालगंज के तो मौसम अभी ठीक बावे।
1: गर्मी कैसे हो गया? बहुत धूप निकल रहा है पंजाब में के अंदर।
0: अच्छा ना, इन्हें तनी धूप नहीं है और थोड़ा थोड़ा गर्मी बा।
1: अच्छा जी, गाना सुनने के बाद गाना कॉल लगाओ तनी कब से
0: गाना
1: सुना दी हम को
0: बता दें।
1: अपने पसंद के सुना दे
0: हम तो रोज सुनाबे करनी रहो लोगन के आपका पसंद दिन भर तो हम
1: फरमाइशी तो हमको बना करी ला रहे सुना दे।
0: अच्छा तो कर दिया आज
1: गाना अपने पसंद से सुना दे।
0: आज हमारा रघु पसंद के सुने के बाबे।
1: हमारा पसंद के सुने के बा नहीं रघु अपने पसंद के सुना दे। भोजपुरी बजा दे।
0: भोजपुरी?
1: हाँ जी
0: रोवे बताई ना, आज हम कहा तो बनी रोवे बताए तब हम सुना।
1: आज हम मतलब दो रोवे सुना है।
0: हाँ
1: भोजपुरी में बजा दे कौन हो हमारा कौन सब अच्छा बताए उतना खराब भी ना।
0: अच्छा
1: खेसारी लाल के गाना बजा दे।
0: खेसारी लाल के ठीक बा।
1: और भारती के नंबर नहीं लगा लगा तो उठावत नहीं हुआ के नहीं का प्रोग्राम में।
0: हम तो भारतीय बोला था।
1: अगर रवि नंबर तो एक नंबर बता 6516 वाला जो की कॉल के माध्यम से नंबर बा का नाम बा
0: वो हम ही चलावे।
1: अगर रवि चलाई ली तो कॉल के माध्यम से लगा देता तो कॉल रिसीव नहीं करो।
0: ये तो कॉल
1: तो प्रोग्राम तो रोज रोज चलेगा प्रोग्राम न। अच्छा जी इतना तो हम रेडियो सुन नाम भी नहीं मालूम राहुल नाम बा की केकर नाम बा इसी हमारा नाम मालूम आज की नहीं। हाँ जी
0: ना इसमें हम कबू कबू मतलब हम रिकॉर्ड करें नहीं लेकिन ज्यादातर उसमें हम ही रहे।
1: अच्छा जी अच्छा वहाँ का छुट्टी बा
0: ना? वहाँ की छुट्टी नहीं सुनो के जीवन
1: ठीक बात। गाना सुना दे खेसारी लाल के रेडियो सुनने वाला के सबके रोजरा खातिर तीन आदमी के
0: ठीक बाबा। तो गाना प्ले करते नहीं?
1: हाँ जी कब तक सुनाएंगे? शाम के बाजी की काल बाजी?
0: आज ना तो काल तो बजबे करी यही दो दिन में बाजी।
1: अच्छा खेसारी लाल के बजाएंगे गाना।
0: ठीक बा
1: ठीक बा।
0: सुनाते रहिए रेडियो 90.4 FM।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो।
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो,
6: नमस्कार मैम।
5: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
6: जी, मैं सुधीर कर रहा हूँ, कोरी निवाई जिला देवघर झारखंड से मैम।
5: हाँ जी, क्या हाल चाल है आपका?
6: बिल्कुल ठीक हूँ मैम, आप कैसे हैं?
5: हम भी ठीक हैं।
6: और आप रेडियो रंजन के जितने आरजे सर हैं कैसे हैं?
5: सब कुछ अच्छा है।
6: आज सुना दीजिए मैम, रक्षाबंधन का गाना।
5: गाने की बोल बता दीजिए।
6: भोजपुरी फिल्म का ही गाना है, लता मंगेशकर की आवाज में, इसके बोल हैं रखिया बंधा ले भैया सावन आई, इसके बोल हैं।
5: और गाना सुनाना भी है
6: जी। सबसे पहले मैं आपको रेडियो रंजन के जितने भी लिसनर हैं सबको सुनाना चाहता हूँ दिल से।
5: बिल्कुल जी, तो गाना सही करते हैं
6: जी मैम,
5: सुनते रहिए रेडियो रंजन 91.4 FM।
6: थैंक यू मैम।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
1: नमस्ते मैम, राधे श्याम रतिया, रक्षाबंधन के हार्दिक शुभकामनाएं वह हमारा तरफ से पकिया।
0: जी जी, आपको भी रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।
1: जी तो कदम बढ़ाते हैं फरमाइश की तरफ।
0: बिल्कुल,
1: वो तिरंगा फिल्म का गाना है, इसे समझो न रेशम के तार भैया, यही गाना सुनना है।
0: जी और गाना सुनाना भी है।
1: जी सबसे पहले आपको और रेडियो रिमझिम के सुपर स्टार फैन है हुसनियारा मलिक है, संतरा कुशवाहा जी है और सभी गोपालगंज जिला वासियों को, सिवान जिला वासियों को और हम अपने पूरे परिवार के साथ सुनेंगे।
0: ओके जी, तो गाना प्ले करते हैं।
1: बिल्कुल।

0: is here. Now pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: The phone ring day bajti hai to kehte hain hello.
3: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80 29 94 911। जी हाँ, 80 29 94 911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
4: हेलो
5: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
4: जी नमस्कार भारती जी।
5: नमस्कार।
4: समाचार बा?
5: समाचार सर ठीक है बा।
4: काहे आवाज बोछा लेता नहीं दी?
5: थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है।
4: एगो गाना बटे कॉपी छलिया के, अलग मिठाइया बा, अलग अलग बा मिठाइया, अलगे बटे रखिया बहिन हमारा, ऐसे ही कुछ गाना बटे, दर्द भरा गाना बटे रखी।
5: छोटो
4: छोटो छाली। हाँ
5: अच्छा, गाना सुना बा?
4: गाना तो सबसे पहले रुआ का सुनावे के बा, ओकरा बाद बानी सोनू भाई, सबीर भाई, बानी महबूब वाला मुस्तफा गुलाम जी, राम कुमार पांडे भैया जी हैं, और अक्सरी जी हैं, अमर भाई हैं, कुशुम जी, तबीर अंसारी, जितनी तमाम श्रोता बन गाना सुनी उन सभी को तो गाना दे देते। नमस्कार।
5: नमस्कार। गाना सुनते रहें रेडियो।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
0: जी नमस्कार।
1: नमस्कार,
0: मैं साहेब राव पवार बोल रहा हूँ, ग्राम सामरपुर तहसील बिछुआ जिला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश।
1: हाँ जी, क्या हाल चाल है आपका?
0: बहुत बढ़िया है, एकदम मस्त है। आज का दिन है मुद्रा का कार्यक्रम। जी पहली बार लगाया हूँ फोन, आज ही सुना मैंने ये कार्यक्रम।
1: अच्छा,
0: कौन बोल रहे मैडम?
1: मैं तो भारती बोल रही हूँ।
0: जी जी,
1: तो गाना बता दीजिए, कौन सा गाना सुनना है?
0: ब्लैकमेल का है, पल पल दिल के पास।
1: और गाना सुनाना भी है?
0: गुनगुनाना नहीं आता वैसे, मगर फिर भी थोड़ा सा सुना देता हूँ। पल पल दिल के पार तुम रहते हो।
1: इतना अच्छा तो गा रहे हैं।
0: ठीक है, बस ऐसे ही आ जाता है थोड़ा सा।
1: आप अच्छा गा रहे हैं सच्ची में।
0: जी
1: अच्छा गा रहे हैं आप।
0: अच्छा अच्छा जी, थैंक यू।
1: और गाना ये सुनवाना चाहते हैं किसी को?
0: जो रंजन में जो सुनते हैं उन सभी के लिए रहेगा बहन जी, और आपके लिए।
1: जी जी बिल्कुल, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4 FM।
0: जी जी, थैंक यू।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
1: Pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
3: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो।
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: जी, सलाम मैम।
5: वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
6: जी मैम, कैसे हैं? हम सफरोज अली गोपालगंज से।
5: मैं भी ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
6: जी हम भी अच्छे हैं, लेकिन आपका आवाज कुछ चेंज लग रहा है, लगता है आपका तबीयत सही नहीं है मैम।
5: हाँ थोड़ा सा है,
6: लेकिन ये बता सकते हैं कि भारतीय मैम बोल रही है? फिर भी आप ही रिकॉर्डिंग कर रही है, मनोरमा मैम नहीं है आज?
5: है मनोरमा मैम।
6: आज तो बहुत ज्यादा लेट हो गया मैम, हम लगाते लगाते कॉल।
5: आधा घंटा लेट है
6: तो आज तो नहीं चलेगा।
5: देखिए आज नहीं तो कल चल ही जाएगा, क्योंकि सारा कॉल मैं ही रिकॉर्ड करूंगी।
6: अच्छा, आज सब आप ही करेंगी? मैम उस सोमवार वाला वो मनोरमा मैम रिकॉर्ड की थी क्या आधा के बाद, क्योंकि सुन रहे थे और रात में 12 बजे चलता है रिपीट हेलो माय चॉइस का। सुन रहे थे हम, 12 बजे चल रहा था।
5: अच्छा,
6: तो आज हमें 11 सा गाना सुनवाइए।
5: बता दीजिए
6: जी, गाने का नाम है मोहब्बत से ज्यादा।
5: अच्छा, और गाना सुनाना भी है?
6: गाना है
5: बोल रहे हैं, गाना सुनाना है।
6: सुनाना है आपको, सभी आरजे को, जितने भी हमारे दोस्त सुनने वाले हैं सभी को।
5: तो अब अभी क्या?
6: अभी तो मैम हम स्टेशन जा ही रहे थे, तब तक सोचे कि बात कर ले आपसे।
5: अच्छा, तो छपटा से निकल रहे हैं कि?
6: जी मैम हम निकल रहे हैं यहाँ से, तो सोचे कि इसी टाइम में मिल रहा है तो टाइम में बात कर ले और गाना का फरमाइश कर दे।
5: चलिए, वहाँ का काम खत्म हो गया?
6: जी मैम काम तो खत्म हो गया, इसलिए सोचे निकल जाए। अपना गोपालगंज का बहुत ज्यादा याद आ रहा है, गोपालगंज जैसा तो कोई मतलब जिला ही नहीं है,
5: कहीं लगता ही नहीं। अच्छा
6: जी मैम, कहीं अच्छा नहीं लगता है गोपालगंज के अलावा, गोपालगंज तो बात ही अलग। कहीं भी रहते हैं मैम रेडियो को सुनते रहते हैं और आप लोगों से बात करते रहते हैं। जी मैम, तो गाना फुल सुनाइएगा, बहुत अच्छा गाना है।
5: जी बहुत अच्छा गाना है, सुना दूंगी।
6: आपको भी अच्छा लगेगा उम्मीद करते हैं।
5: अच्छा लगेगा, क्यों नहीं, गाना ही अच्छा है इतना।
6: जी मैम एडवांस धन्यवाद, आज मनोरमा मैम से बात हो जाती तो अच्छा लगता, लेकिन उनसे बात ही नहीं हो रहा है आजकल।
5: होगा फिर कभी।
6: जी मैम धन्यवाद, बाय बाय मैम।
5: ओके बाय बाय, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
6: ओके मैम।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
0: जी नमस्कार, बहन प्रणाम।
1: प्रणाम।
0: राजू यादव ग्राम अपने का श्रीरामपुर डेरा सरीला राठ मुस्करा हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश।
1: कैसे हैं आप?
0: हम तो बहन बढ़िया हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, स्वर हैं बिंदा।
1: जी ऐसे ही होना चाहिए।
0: गीत सुना दीजिए बहन।
1: बिल्कुल बता दीजिए, कौन सा गीत?
0: अपने पसंद का कोई भी रक्षाबंधन गीत चला दीजिए या किसी गीत में शामिल कर दीजिए। और भोजपुरिया कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है, वो चलता है 3-4 बजे।
1: हाँ हाँ, तो भोजपुरिया केवल संडे को चलता है।
0: हाँ हाँ, भोजपुरिया एक्सप्रेस।
1: हाँ हाँ
0: जी जी बहन प्रणाम।
1: रेडियो रेंज में कॉल किए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी बहन प्रणाम, नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में।

0: आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: हेलो
2: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 94 FM में।
1: जी नमस्ते मैडम।
2: नमस्ते।
1: हेलो।
2: हाँ जी, नाम बता दीजिए अपना।
1: आपका छोटा भाई बोल रहा है, रामकुमार, चिंतापुर से।
2: अच्छा, बहुत दिनों बाद आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, इसलिए मिस्टेक हो गया पहचान। कैसे हैं आप?
1: और बढ़िया मैम, आप कैसे?
2: हम भी अजय हैं।
1: अच्छा, अब रक्षाबंधन आ रहा है ना?
2: राखी आ रहा है।
1: तो आपसे राखी भी बनवाना है ना मैं?
2: बिल्कुल आइए, बिल्कुल बांध देंगे।
1: अब मालूम ना कहाँ घर है आपका?
2: रेडियो स्टेशन नहीं आ जाइए, यहीं पे बांध दिया जाएगा, और क्या।
1: रेडियो स्टेशन में?
2: हाँ हाँ।
1: अच्छा, आएंगे तो आएंगे वहाँ।
2: बिल्कुल आइए।
1: तो कोई आने देगा हम? तो
2: ये तुम नहीं बता सकते, ये कृपा शंकर सर भी बताएंगे।
1: अच्छा, और सोनी सिस्टर कैसी है?
2: वो भी अच्छी
1: है। ये मुनारमा जी?
2: सब भी अच्छे हैं, ये भी अच्छी
1: है। अच्छा, आपसे बहुत काफी दिन हो गया था बात करने हुए।
2: हाँ,
1: मुनारमा जी से बात हो रहा था। हम उनसे पूछ रहे थे कि भारती मैम कहाँ चली गई, भारती मैम कहाँ चली गई। वो बोले कि उन लोग का अभी रिकॉर्डिंग नहीं चल रहा है।
2: नहीं तो बोला जो होता है ना उसमें अभी ना दीजिए।
1: और बताइए क्या हाल चाल है?
2: ठीक है।
1: मौसम कैसा है गोपालगंज में?
2: गोपालगंज का मौसम अभी बहुत ही सुहाना है।
1: अच्छा, रक्षाबंधन से हम 2-4 दिन पहले आ रहे हैं घर से।
2: आई बिल्कुल।
1: हाँ, आएंगे, राखियों से बनवा करके गिफ्ट उफ्ट दे करके फिर चले जाएंगे, फिर आ जाएंगे अपने नोएडा में।
2: मैंने बहुत खुश होंगी क्या इस बार आपके, मतलब आप जा रहे हैं उन लोगों के पास।
1: नहीं, मेरे को आए हुए आज 2 महीना दिन हो गया, पहुंचेगा रक्षाबंधन में तो जाना ही जाना है।
2: हमेशा कभी राखी में घर ही न रहे हैं कि कभी दूर भी रहे हैं?
1: हाँ नहीं, कहीं भी रहेंगे तो रक्षाबंधन में जाना ही जाना है, रक्षाबंधन में, छठ पूजा में।
2: ये सब बढ़िया है।
1: हाँ, मम्मी छठ करती है ना, तो छठ पूजा में जाना जरूरी रहता है।
2: हाँ। कौन सा गाना सुनना है बता दीजिए?
1: आज गाना सुनना है तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे, यही वाली सॉन्ग।
2: कितना अच्छा गाते हैं, फिर भी गाके नहीं सुनाते हैं कभी।
1: कितना अच्छा गाते हैं मैडम, मजबूरी में हम आए हैं ना दिल्ली में, यहाँ शौक से कमाते हैं।
2: अच्छा।
1: मेरे दो दो भाई विदेश रहते हैं दुबई, एक का नाम है राजन, एक का नाम है निरंजन।
2: अच्छा। हाँ हाँ।
1: छोटा वाला निरंजन है, निरंजन गुप्ता, और माझिल वाला है वो राजन गुप्ता है।
2: अच्छा।
1: और मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरा ही एक शादी हुआ है, उन लोग का अभी नहीं हुआ है, अभी उन लोग अभी कमा रहा है, खा रहा है, अभी उड़ रहा है, अभी अकेला मौज में रहा। अभी घर का प्लानिंग है, अभी घर और बनवा रहे हैं, उसके बाद उनको उन लोग को शादी करेंगे।
2: प्लानिंग के पास काम अच्छा होता है।
1: और सब मजे में है ना मैम?
2: सब मजे में
1: है। ये सॉन्ग आपको सबसे पहले आपको सुनवाना है। आज जितना रेडियो रंजन सुनने वाले हैं सब श्रोताओं का, जितना हिमतापुर को रेडियो रंजन सुनने वाले हैं सबको।
2: जी जी बिल्कुल।
1: हाँ,
2: कैसे गाना प्ले करते हैं सुन करेंगे रेडियो रंजन 90.4 FM।
1: ठीक है, ओके मैम।
2: ओके,
1: नमस्ते। नमस्ते
2: नमस्ते।

0: नमस्कार मैम।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
0: मधुर सर से राजू कुमार बोल रहे हैं।
1: हाँ जी, क्या हाल चाल है आपको?
0: ठीक है, गाना सुनना है।
1: बता दीजिए कौन सा
0: गाना सुनना है। शाम है धुआं धुआं।
1: हिंदी सॉन्ग है ना?
0: हाँ हिंदी सॉन्ग
1: जी बिल्कुल। और गाना सुनाना भी है?
0: अभी रेडियो सुनने वाले श्रोताओं को
1: गाना प्ले करेंगे। सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।
0: ठीक है।

आरजू झूठ है, कहानी है, आरजू का परे खाना नहीं। खुश जो रहना हो जिंदगी में तुम्हें, दिल किसी से कभी लगाना नहीं।

क्यों बनाते हो तुम रेत के ये महल जिनको एक रोज खुद ही मिटाओगी तुम। आज कहती हो इस दिल जले से प्यार है तुम्हें, कल मेरा नाम तक भूल जाओगी तुम।

0: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: Jab phone ki ghanti bajti hai to kehte hain hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029994911। जी हाँ, 80029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
5: मैं मोहम्मद यूसुफ अपना मेडिकल हॉल सिपाया ढाला से बोल रहा हूँ।
6: जी जी, क्या हाल चाल है आपका?
5: हाल चाल तो बहुत बढ़िया है। अपना सुनाइए।
6: मेरा ठीक है। तो आपसे बहुत दिनों बाद बात हो रही है।
5: चले गए थे उमरा करने, हज करने जाया जाता है ना।
6: हाँ,
5: इसमें मक्का मदीना चले गए थे, एक महीना उसी में लग गया
6: ना,
5: इसलिए बात वहाँ का सिम अलग है ना। हाँ, हमर प्रोग्राम आपका सुनते थे, वहाँ भी परेशान होता था तो लगता था आपका।
6: हाँ,
5: मर कॉल नहीं लग रहा था।
6: हाँ,
5: वहाँ भी सुन रहे थे। मौसम तो ठीक है, वगैरह पानी वगैरह हल्का फुल्का हो जा रहा है।
6: हाँ, पानी हो ही जा रहा है और अभी भी थोड़ा मौसम उतना धूप नहीं है
5: ना, हल्का धूप और छांव दोनों है। आपका कस्टमर इतना हो गया है रिव्यू के, बहुत देर तक करना पड़ता है तब जाकर लगता है। बहुत देर से लगा रहे
6: पढ़े हुए हैं थोड़ा।
5: और सब बढ़िया है, हमको गाना सुनाइएगा।
6: बिल्कुल बता दो।
5: ये नन्हे से फरिश्ते तुमसे ये कैसे नाता।
6: अच्छा, और गाना सुनाना भी है?
5: अपना मेडिकल हॉल के सभी स्टाफ और खासकर फौजी से रिटायर है कन्हैया प्रसाद गुमनिया के हैं।
6: हाँ।
5: तो सिपाया डाला तो इधर आप आई नहीं होगी, यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज, सैनिक स्कूल, बीटेक कॉलेज सब यहीं पर है, हमारे ही पास है। राजापुर मेला यहीं से जाया जाता है।
6: उधर रास्ते से कभी गए हुए हैं?
5: हाँ, राजापुर मेला आइए एक बार।
6: बिल्कुल आएंगे कभी।
5: हाँ, मेला लगता है तो आपको याद करेंगे कि मेला कल है या परसों है।
6: अच्छा जी, बिल्कुल।
5: हाँ, आइएगा हमारे यहाँ दुकान पर, रुकिएगा अपना मेडिकल हॉल। हाँ, यहीं पर रुकिएगा, नाश्ता पानी यहीं पर होगा, खाना भी आपको खिलाएंगे।
6: अच्छा।
5: आप लोगों से हम जुड़ गए, रेडियो रेडियो हमको लगा हो गया है।
6: हम लोग हो गया है।
5: हाँ, बराबर सुनते हैं आपका प्रोग्राम।
6: चलिए बढ़िया है,
5: ठीक है, सुना दीजिएगा। हो सकता है कि कल कहीं जाना आएगी।
6: अच्छा, आज नहीं तो कल आ जाएगा।
5: हाँ हाँ, ठीक है, शाम में सुनेगा।
6: ठीक है
5: ठीक है, धन्यवाद।
6: रेडियो रंजन में कॉल किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
1: जी मैम नमस्ते, मैं ग्राम धनौती पोस्ट कटिया थाना कटिया जिला गोपालगंज बिहार से हूँ।
0: जी जी
1: मैम कैसी हैं आप?
0: मैं ठीक हूँ, आप बताइए कैसे हैं?
1: सब आप लोगों का कृपा है, हम लोग भी बढ़िया है, बस काम काज चल रहा है। अभी फिलहाल मैं पुणे में है हम।
0: अच्छा
1: जी, और अपना गोपालगंज का बताइए कैसा है मौसम वहाँ का?
0: गोपालगंज
1: बारिश,
0: मौसम तो अभी सुहाना बना हुआ है, बारिश जैसा ही मौसम हो रहा है अभी।
1: अच्छा अच्छा, यहाँ भी तो बादल छाया हुआ है, कभी कभी रुक रुक के बारिश भी हो रहा है। यहाँ पहाड़ी इलाका है तो मौसम का हो रहता है, बारिश आता जाता रहता है यहाँ का।
0: चलिए उतना से गर्मी नहीं होता होगा ज्यादा।
1: हाँ मैम, अभी यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चल रही है, गर्म नहीं है, मौसम तो एकदम ठंडा है, सुहाना ही मौसम है लगभग मानिए तो।
0: आप क्या काम करते हैं
1: यहाँ पे? मैं फैब्रिकेशन का काम।
0: चलिए,
1: और एक गाना सुनना था मैम,
0: बता दीजिए।
1: मुझे लाख समझाया दिल ने मेरे, मगर मैंने दिल की न मानी, दीवानी में दीवानी सजन की दीवानी, गाना की बोल ही है। और मेरा दोस्त है प्रमोद और अमित ओम प्रकाश, इन्हीं लोगों को डेडिकेट करना चाहता हूँ, और खास करके रेडियो रिमझिम परिवार को और जितना भी श्रोता सुन रहे हैं उन लोगों के लिए भी।
0: बिल्कुल,
1: लगाते हैं कॉल लगता नहीं है, थोड़ा अफसोस होता है कि, लेकिन भाई अभी भी समझदारी होता है कि भाई कब अगर मेरा चांस मिल जाएगा तो देखा जाएगा, लगता है तो इतनी महसूस होता है कि चलिए मेहनत सफल हो गई तो कुछ अलग ही, मतलब
0: कुछ अलग ही
1: अपना। हाँ हाँ, आप लोग से बात होता है तो थोड़ा मन का सुकून मिलता है कि चलो रेडियो रंजन के माध्यम से दूर दूर तक कहाँ कहाँ जितना भी श्रोता सब सुनते हैं, एकजुट होते हैं। जब हेलो माय चॉइस प्रोग्राम जब चालू होता है तो इसका उस टाइम का पल ही कुछ अलग ही है कि हाँ भाई एक परिवार हो जाता है ना, सब जुड़ता है एक साथ तो अच्छा लगता है।
0: वहाँ पे जुटते हैं सब, कोई आपस में अपनी बातें करते हैं।
1: जी जी जी, तो मैं तो बहुत पुराना हूँ रेडियो रंजन का, बहुत कॉल लगाता हूँ लेकिन कभी लगता है कभी नहीं लगता है, तो फिर भी मैं जानता हूँ कि अफसोस करने की क्या बात है भाई, सभी दर्दों को सभी लोगों का मन का जितना मुझे खुशी होती होगी उतना ही और लोगों को भी खुशी होता होगा ना कि भाई हम भी बात करेंगे, हम भी अपना फरमाइश चॉइस में अपना गाना सुनेंगे। और सबसे हाल चाल जब मिलता है तो हम लोग पुणे में भी रहते हैं तो अच्छा लगता है कि अपना गाँव का अपने जवार का जो भी हम लोग का कटिया में चाहे कहीं भी कुछ भी होता है तो उसके माध्यम से मालूम पड़ जाता है, चाहे अपने जिला में कोई भी मतलब कार्य होने वाला होता है नया, चाहे कुछ नया नियम आने वाला होता है, तो रेडियो रिमझिम के माध्यम से सब मिलता है तो अच्छा लगता है। तो हम लोग पहले ही एक्टिव हो जाते हैं कि हाँ भाई अपने जिला में काम होने वाला है, ऐसा हो रहा है, यहाँ ये चीज होने वाला है, तो अच्छा लगता है कि पहले अपना यहाँ नहीं था लेकिन वो आप लोगों की कृपा थी कि हम लोग के लिए, हम लोग खातिर आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना सब कर रहे हैं, अच्छा लगता है। जितना भी अगर तारीफ करेंगे हमारे लिए तो कम है।
0: आपको रेडियो सुनना अच्छा लगता है, इसके लिए दिल से धन्यवाद है आपका।
1: जी जी जी मैम, आप ठीक है ना?
0: हाँ हाँ, हम सब ठीक है।
1: खाना वाना खाए?
0: हाँ, खाना खा के आते हैं।
1: अच्छा, हम लोग भी ड्यूटी है, लेकिन ड्यूटी के दौरान मेरे को याद आया कि भाई आज कॉल लगाते हैं तो फिर कॉल किया। बहुत देर से ट्राई कर रहे थे, लगभग 1 घंटा काम छोड़ दिए थे। जब काम होता है, जब ये दिन आता है तो सोचते हैं पहले कॉल लगाएंगे उसके बाद काम देखा जाएगा। बात आप लोगों से होता है तो लगता है कि हाँ, मतलब सुकून दिल का मिल गया कि हाँ मेहनत मेरा जो जारी था वो सफल लग गया तो अच्छा होता है।
0: चलिए, अच्छा लगा
1: आपसे भी बात करके मैम, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैं इसके पहले भी जितना भी पहले आपसे पहले जो भी, आपका मनोरमा नाम है ना?
0: नहीं।
1: अच्छा अच्छा, आपका नाम क्या है मैम?
0: मेरा नाम भारती।
1: अच्छा भारती, ठीक है मैम।
0: गाना प्ले करें?
1: हाँ मैम, गाना प्ले करिए। नमस्ते।

0: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माय चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029 94 911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाज़त। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: उत्तर बिहार का गौरव,
2: सारण प्रमंडल की शान,
1: गोपालगंज की धड़कन
2: और अपने भाषा की पहचान,
1: रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
2: सुनो दिल से।
0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029 94 911। जी हाँ, 8029 94 911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
3: हेलो
4: जी,
3: नमस्ते
4: मैम।
3: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो
4: सर। फोन कर ले रही
3: है,
4: प्रसाद बोल रहे गाना सुने बा
3: बता दें।
4: जा रे जा रे सुगना जा रे कहिदो सजनवा से
3: गाना सुनाऊं के बा।
4: हां ठाकुर बाबा हमर सार रिकॉर्ड करे की बहुत फन लगा होता रे इंगरा सुना बा इलेक्शन भाई बाड़े जितना रेडियो सुना सब कोई।
3: अच्छा जी, चल ठीक बा। सब ठीक बा ना?
4: हां सब ठीक बा, हवा भी बहुत ठंडा भी दिन बा।
3: हां हां चले फिर ठीक बा। गाना प्ले करते हैं।
4: नमस्ते
3: नमस्ते, सुनत रहे रेडियो रंजन 90.4 FM।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगटोन 91.4 FM में।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार,
1: मनोरमा मैम बोल रही है ना?
0: नहीं,
1: भारती मैम बोल रही है।
0: हाँ,
1: तो हम कैसी हैं?
0: मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
1: जी मैम, हम भी अच्छे हैं।
0: वैसे आपका नाम बता दीजिएगा।
1: जी मैं पप्पू कुमार साहब पढ़ रहा हूँ ना, बड़ अरिया से।
0: अच्छा जी, तो क्या हाल चाल है आपका?
1: जी मैम बढ़िया है, अपना सुनाइए, आप कैसे हैं?
0: हम भी अच्छे हैं।
1: और सब भारतीय लोग अच्छे हैं?
0: हाँ, सब कोई ठीक है।
1: तो मैम गाना सुना दीजिए।
0: बता दीजिए।
1: इरंगा फिल्म में जो राखी बंधन का गाना है वही गाना सुना दीजिए।
0: और गाना सुनाना भी चाहेंगे?
1: और मैम गाना जितना भी मेरे भाई बहन है सभी सुनेंगे, सभी श्रोता आप भी सुनिएगा, सभी आरजे लोग भी सुनेंगे।
0: बिल्कुल, तो गाना प्ले करते हैं।
1: थैंक यू मैम।
0: वेलकम।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: सीधा सीधी बताएं कि स्टाइल में बताएं।
3: सीधा सीधी क्या बताएं, स्टाइल में बताओ।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से। आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम एक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: हम हैं इस पल

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: All right.

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।